0: नवा नवा स्टार्टअप खड़ा कर सके। ओकर बारे में प्रदेश के हमारे युवा साथी, किसान भाई, ग्रामीण महिला साथी मन ला स्टार्टअप बनाए बार हमन मदद करथन। और जो 3 कार्यक्रम हमारे चलते, छात्र छात्रा मन पर भी कार्यक्रम है, मतलब 4 लाख रुपए तक स्टार्टअप बनाए पर मदद करथन। स्वाभाविक है कि जब सरकार के पैसा हमन देथन तो कुछ नियम रहते हैं, वैसे आपके पास अगर कोई विचार है तो विचार लेकर के अगर आगे बढ़ना चाहो था, कुछ उत्पाद बनाना चाहो था तो 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप। और जो तीसरा कार्यक्रम है हमारे उद्भव कार्यक्रम, ओमा हमन प्रति स्टार्टअप 25 लाख रुपए तक के वित्तीय समर्थन देथन। और ये कोई लोन नहीं है जो आपला हमला वापस करना है। पूरा भारत देश में पहली बार ऐसे होए हो है कि खेती में नवाचार ला बढ़ावा दे बर स्टार्टअप बनाए बर अतका अधिक जो भारत सरकार है और हमारे प्रदेश के सरकार है वित्तीय समर्थन देवत। अभी हमारे देश में तो आर्थिक परिस्थिति है बहुत तेजी से बदलत है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति में लगातार सकारात्मक बदलाव देखे बर मिलत है। आने वाला जो समय है और जो अभी के जो दौर है वो ऐसा दौर है कि एमा हमला हमारे युवा साथी मन ला खास करके जो पढ़त लिखत है और अपन आप ला कुछ योग्यता ग्रहण करते हैं कोनो क्षेत्र में हो, वो मन ला भी अपन नजरिया बदले की आवश्यकता है। नौकरी करे के बजाय नौकरी देने वाला बनने में ज्यादा अनुकूल माहौल है और ओमा बहुत कम समय में आप बहुत बड़े धन के निर्माण कर सकत हो, बहुत जन ला रोजगार दे सकत हो और सबसे बड़ी बात एक से सफल व्यवसाय खड़ा कर सकत हो जो न केवल समस्याओं का समाधान करे बल्कि अनेक उत्पाद के माध्यम से बहुत जन ला रोजगार भी दे। तो युवा साथी मतलब मैं कहना चाहूँ कि भी अपन बिजनेस अपन व्यवसाय करे की दिशा में काम करना चाहिए, वो स्टार्टअप कोनो क्षेत्र में। अगर आप कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हो तो बहुत स्वागत है, काबर के कृषि में देखो हमारे यहाँ 40 लाख किसान है छत्तीसगढ़ में, 10 करोड़ से ज्यादा किसान है भारत और हर किसान के पास सैकड़ों समस्या है। आप ये सर समस्या ला लेकर के समस्या मत समझो, इला समझो कि एक अवसर है कि कैसे इन समस्या ला मैं एक व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सका और उन समस्या लेके जाओ। काबर की वो समस्या है तो समस्या के समाधान पर बहुत जन इच्छुक है, जब वो एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो जाए तो आप ला एक सफल बिजनेस मिली ही, रोजगार आप पैदा करियो और खुद अपन व्यवसायिक प्रगति कर सकत हो। हमारे जो केंद्र है अभी मैं बताते रहे हूँ, वो केंद्र के माध्यम से हमन ऐसा समर्थन देथन और बहुत जल्दी यही महीना के आखिरी में हमन अपन 8वां कार्यक्रम शुरू करने वाला हन। वो कार्यक्रम में अपन आवेदन दे सकत हो, igkvrabi.com में ऑनलाइन आवेदन देना है और फिर छटाई होए के बाद आवेदन मन के सघन प्रशिक्षण देबो 1 महीना के और अलग अलग एक स्तर है और अंत में जाकर के अगर आप कार्यक्रम में सफल होते हो तो फिर आप 4 लाख, 5 लाख या 25 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप जोन भी श्रेणी में आपकी उपयुक्तता पाए जाही दिए जाही जेकर से आप अपन कृषि स्टार्टअप ला खड़ा कर सको। तो
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कृषि उद्यमिता स्टार्टअप, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हुलास पाठक। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन सुनिएगा रात 8:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें आप सुनेंगे प्लास्टिक और पॉलीमर टेक्नोलॉजी में करियर पर CIPET रायपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक साहू से खास बातचीत। साथ ही सुनिएगा छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 पर खाद्य नियंत्रक श्री भूपेंद्र मिश्रा से बातचीत और दीदी ई रिक्शा सहायता योजना पर श्रम पदाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार देवांगन से विशेष बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकुर शुक्ल। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम बाल वाटिका के आकर्षण होंगे बेरा के बाद। इसमें दुनिया एक कुटुंब आए इस पर चर्चा होगी। बेहतर कलबर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, इस विषय पर श्री खेमलाल साहू की वार्ता आप सुनेंगे और होगा प्रश्नोत्तरी और बाल गीत। सुबह 9 बजे कार्यक्रम प्रगति के सोपान में आप सुनेंगे लखपति दीदी योजना पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमाशंकर। सुबह 9:40 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मंतराम पटपरिया और साथ ही इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे अमर श्रीवास और साथ ही और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे जनक यादव और साथ ही। गैर

फिल्मी गीत, गजल और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा के कलाकार होंगे शिल्पा राव और जसपिंदर नरूला। प्रसारण समय सुबह 10 बजे। ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने। श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे आप सुनेंगे। दोपहर 12:30 पर लोक सुधा कार्यक्रम में सुनिएगा दोरली गीत। कलाकार होंगे कट्टम दुल्ले और साथी। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम बिंदिया के आकर्षण होंगे। आज की बात इसमें परिवार समाज के सुदृढ़ संस्था पर चर्चा होगी और होगा क्रम हेलो बिंदिया और टिप्स। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे अपन गोट। इसमें लक्ष्य के बिना जिंदगी दिशाहीन जिंदगी, इस पर चर्चा होगी। पहुना जोहार में आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गोट बात आप सुनेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा रबी फसल की कटाई बाद भंडारण प्रबंधन। किसानवाणी में आज की सलाह में पालतू जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां, सावधानियां एवं देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर संजीव राय की सलाह आप सुनेंगे। नाटक लौट आई खुशी आप सुनेंगे रात 9:30 पर। लेखक होंगे श्री महेश शर्मा, प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री सुरेंद्र पाटिल। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया 3 ताल। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, 1:05, दोपहर 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार

0: सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम। नमस्कार रायपुर, प्रस्तुत करता है अंकुर शुक्ला।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। दोस्तों, मई का महीना यानी तेज धूप, आम की मिठास और बच्चों की गर्मी की छुट्टियों का मौसम। इन दिनों घरों में रौनक कुछ ज्यादा ही होगी। कहीं नानी घर जाने की तैयारी चल रही है तो कहीं बच्चे सुबह सुबह क्रिकेट और मोबाइल गेम्स के बीच अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जरूरी है कि बच्चे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गर्मी में बच्चों को खूब पानी पीना चाहिए, ज्यादा धूप से बचना चाहिए और साथ ही छुट्टियों में कुछ नया सीखने की भी कोशिश करें। इसके लिए मैं बच्चों के माता पिताओं और परिजनों से भी कहना चाहूंगा कि बदलते समय के साथ बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी सीखने का मौका देना चाहिए। शायद यही वजह है कि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ आराम नहीं बल्कि परिवार और सीख का भी समय बन जाती हैं। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का सफर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: कविता वही है जो आपको हंसाए, रुलाए, सोचने पर मजबूर करे और कभी कभी चुप भी कर दे। कुछ ऐसे ही गहरे विचार रखने वाले महान कवि थे डायलन थॉमस, जिनकी याद में हर साल 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, डायलन थॉमस शब्दों के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने अपनी कविताओं में जीवन, प्रकृति, भावनाओं और इंसानी रिश्तों को बेहद खूबसूरती से पिरोया। उनकी कविताओं में संगीत जैसा प्रवाह था और शायद यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में साहित्य प्रेमी उन्हें बड़े सम्मान से याद करते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट शामिल है, जिसमें उन्होंने जिंदगी से हार ना मानने और अंत तक संघर्ष करने का संदेश दिया। साथियों, आज के दौर में जब मोबाइल की स्क्रीन पर शब्द बहुत तेजी से गुजर जाते हैं, ऐसे समय में डायलन थॉमस जैसे कवि हमें ठहर कर महसूस करना सिखाते हैं। वे बताते हैं कि शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना भी पड़ता है। और शायद यही वजह है कि कविता आज भी लोगों के दिलों तक पहुंचती है। चाहे भाषा कोई भी हो, भावनाएं हमेशा एक जैसी रहती हैं। तो आज के इस खास दिन पर क्यों ना हम भी कुछ पल किताबों, कविताओं और शब्दों के नाम करें।

0: दोस्तों, आज का दौर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री आधारित हो चुका है। हमारे आसपास इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें, जैसे मोबाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग मटेरियल और घरेलू सामान, कहीं ना कहीं प्लास्टिक और पॉलीमर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट और रिसर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। देशभर में कई संस्थान युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मोल्ड डिजाइन, रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी और पॉलीमर साइंस जैसे कोर्स के जरिए इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि अब इस सेक्टर में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और स्टार्टअप के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आखिर इस फील्ड में करियर की संभावनाएं क्या हैं, कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, एडमिशन की प्रक्रिया कैसी होती है और आने वाले समय में यह सेक्टर युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण बनने वाला है, इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपेट रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक साहू जी। आलोक जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में बताइए कि प्लास्टिक और पॉलीमर टेक्नोलॉजी आखिर क्या है।
1: जो प्लास्टिक और पॉलीमर एक ब्रॉड मटेरियल है, जैसे छोटे छोटे जो अणु बनके एक लंबी श्रृंखला बनते हैं वो उसको एक पॉलीमर बोलते हैं। जैसे नेचुरल आप एग्जांपल बोलो तो जैसे सिल्क है, वूल है, एक पॉलीमर है। परंतु प्लास्टिक पॉलीमर का एक प्रकार है जिसको हम हीट या और किसी माध्यम से प्रोसेस करके एक शेप दे देते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो जितने भी प्लास्टिक हैं वो पॉलीमर ही होते हैं। बट ऑल पॉलीमर्स आर नॉट प्लास्टिक्स, ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर।
0: सर, आज के समय में इस सेक्टर में इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है?
1: आज की सेक्टर में इस पॉलीमर और प्लास्टिक की बहुत डिमांड है। आप देखेंगे कि दिन ब दिन प्लास्टिक का उपयोग बढ़ते आ रहा है, जैसे पैकेजिंग है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस सभी इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक और पॉलीमर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है।
0: जी सर, इस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी माना जाता है?
1: वही, क्योंकि अभी जो मैं बताया कि जो इतने प्लास्टिक जो है अभी इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भी सेक्टर्स हैं उसमें प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और

0: अभी स्किल मैन पावर की थोड़ी कमी है, तो इसमें अगर हम स्किल मैन पावर प्रोड्यूस करें और मैंने लाएं तो उसमें अच्छा होगा, ताकि वो सेक्टर जो प्लास्टिक सेक्टर है उसको वो सपोर्ट कर सके।
1: जी सर, एक सवाल ये है कि छात्रों के लिए कौन कौन से प्रमुख कोर्स उपलब्ध हैं इसमें, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स की बात करें तो?
0: जी, छात्रों के लिए यहाँ पे जैसे सिपेट रायपुर और सिपेट कोरबा में डिप्लोमा कोर्सेस उपलब्ध हैं, जो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है। दो प्रकार के डिप्लोमा होते हैं सिपेट में, एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और दूसरा डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, और एक बीएससी के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है जो पीजीडी पीपीटी बोलते हैं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। 12th के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स है जो एनएसक्यूएफ के हिसाब से, जो स्किल मिनिस्ट्री के अंतर्गत 4 महीने और 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है।
1: जी सर, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या होती है? क्या किसी विशेष विषय या योग्यता की जरूरत होती है?
0: नहीं, इसमें जो डिप्लोमा के लिए है वो 10th पास होना चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसके लिए बीएससी होना चाहिए, बीएससी विद केमिस्ट्री, और बीटेक के लिए 12th होना जरूरी है। इसका एडमिशन अभी चल रहा है, इसमें लोग तो एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे।
1: जी सर, ये सवाल भी है कि इस क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल विजिट कितनी महत्वपूर्ण होती है?
0: देखिए, ये तो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है जो चलाता है। यहाँ पे पूरी मशीन जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन ही इंस्टॉल है, तो इनको प्रायोगिक प्रैक्टिकल तो पूरी दी जाती है, परंतु बीच बीच में उनको इंडस्ट्री विजिट भी करके दिखाया जाता है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन अच्छे से और आप समझना चाहें तो उसके लिए इंडस्ट्री विजिट की जरूरत है। हालांकि इसमें काफी कुछ तो सिपेट में ही कवर हो जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री विजिट होंगे बाकी एडवांस नॉलेज के लिए और इंडस्ट्रियल माहौल देखने के लिए जरूरी होता है।
1: जी सर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर आज कितना काम हो रहा है?
0: जी, ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है वो तो अभी आज की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक का सबसे अच्छी बात यह है कि उसको हम आराम से रिसाइकल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे तो आजकल सभी जगह जितने भी अगर हम स्टेट में देखें तो काफी रिसाइकलिंग प्लांट लगे हुए हैं, जिससे जो प्लास्टिक का जो सामान जो यूज कर चुके हैं उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और सस्टेनेबल प्लास्टिक जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हुआ, प्लस जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक हुआ, इसकी डिमांड भी अब धीरे धीरे बढ़ती आ रही है, ताकि एनवायरमेंटल को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हम रोक सकते हैं।
1: जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस सेक्टर में जॉब के कौन कौन से अवसर मौजूद हैं?
0: इस सेक्टर में जैसे प्लास्टिक की उपयोगिता तो सभी सेक्टर में आ ही रही है, ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग इलेक्ट्रिकल जो मैंने बताया है, तो इसमें क्या है कि ऑपरेटर लेवल पे काफी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद टेक्नीशियन लेवल पे रिक्वायरमेंट रहती है, देन इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स की बहुत अच्छी यहाँ पे डिमांड है, और ये कच्चा सेक्टर है, अगर कोई इसको सेलेक्ट करता है तो इसका ग्रोथ काफी अच्छा है।
1: जी आलोक जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें। हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें।

0: फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
1: दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में भी रसोई गैस और स्वच्छ ईंधन की सुविधा नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 लागू कर दी है, जिसके बाद घरों तक पाइपलाइन से पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाने और वाहनों के लिए सीएनजी नेटवर्क बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। नई नीति की सबसे खास बात यह है कि अब गैस कंपनियों को मंजूरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि 15 दिनों के भीतर विभाग कोई फैसला नहीं लेता तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, यानी काम में तेजी और लोगों को जल्द सुविधा। सरकार का दावा है कि इससे शहरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा और लोगों को सिलेंडर की झंझट से भी राहत मिलेगी। साथ ही नए मकानों में अब निर्माण के दौरान ही गैस पाइपलाइन फिटिंग अनिवार्य करने की तैयारी है। तो इस योजना के बारे में और विस्तार से जानने के लिए जुड़ते हैं सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी से। स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार
1: मैम, सबसे पहले आसान भाषा में बताइए कि छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 क्या है।
2: आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को, यदि जो हमारे ईंधन के साधन है, हम लोग यदि एनवायरनमेंट देखे तो उसके संरक्षण के लिए प्राकृतिक गैस नीति लाई गई है, या छत्तीसगढ़ गैस वितरण में जो प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए ये जो हमारे ऊर्जा के स्रोत है उसका जो प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण है उसमें उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के, उसका अर्थ ये होता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे स्रोतों को शामिल करना जो कि पर्यावरण के संरक्षण में उपयोगी रहेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ावा देंगे।
1: जी मैडम, पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क बढ़ने से आम लोगों को क्या फायदे होंगे?
2: अब देखिए, ऐसा होता है कि जो आप देख ही रहे हैं, जो एलपीजी है या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसकी किल्लत है और विश्व में जो पश्चिम एशियाई संकट है उसके कारण जो एलपीजी या पेट्रोकार्बन आधारित जितने भी ईंधन है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो और लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो, इसकी आपूर्ति के लिए जो हमारा देश है वो 60% तक इसको आयात करता है, तो इंपोर्ट करता है। इसलिए हमारी जो निर्भरता है वैश्विक बहुत सारी घटनाओं पर ये हम निर्भर रहते हैं। तो आम उपभोक्ताओं के लिए जब हम सीएनजी और पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस, ये बेसिकली कोल बेड मीथेन गैस होता है और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस से कई मायनों में सुरक्षित और स्वच्छ और सस्ता पड़ता है। तो आम उपभोक्ताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि पीएनजी सीएनजी के उपयोग से एक तो सबसे पहले उनके जेब पर जो है ये काफी हल्का पड़ेगा, इसके अलावा जो इसका संरक्षण सुरक्षा के मापदंड है उसमें भी ये खरा उतरता है, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस से ज्यादा सुरक्षित नैसर्गिक गैस को माना गया है।
1: जी मैडम, एक इसमें प्रावधान किया गया है कि 15 दिन में मंजूरी या डीम्ड अप्रूवल, यह व्यवस्था कैसे काम करेगी?
2: क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में भारत सरकार ने जो पश्चिम एशियाई संकट है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया है कि 2030 तक ये बहुत आवश्यक रहेगा कि जो हमारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण है उसमें वर्तमान में जो प्राकृतिक गैस और स्वच्छ स्रोत है ईंधन के, उसका जो 6.5% ही योगदान है ये बढ़कर 15% हो। तो इसके लिए उन्होंने ये निर्देश दिए, कंट्रोल ऑर्डर पारित हुआ मार्च 2026 में इसी साल, और इस कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो भारत सरकार ने निर्देश किया राज्य सरकारों को वो ये है कि जो शहरी गैस वितरण अधोसंरचना है उसकी निर्मिति के लिए आप शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करिए, आप जानती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में किसी भी शहर में पाइप्ड गैस सप्लाई

0: घरेलू उपयोग अथवा औद्योगिक उपयोग या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बहुत कम मात्रा में यूज है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग में पाइप सप्लाई निरंक है, जीरो है
1: जी।
0: तो इसको हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है या लाइसेंसधारी है, इनको 2020 से भारत सरकार ने लाइसेंस तो दिया हुआ है, परंतु ये अधोसंरचना आगे बढ़ नहीं पाई। वो इस वजह से कि जो गैस सप्लाई का जो मेन ट्रंक लाइन होती है उसका निर्माण गेल के द्वारा किया जा रहा था, और दिसंबर 2025 में जाकर ये निर्माण पूर्ण हुआ। अब इसके बाद जो इसकी ब्रांच सप्लाई लाइन से इनको सेटअप करना है, और इसमें हमें द्रुत गति से सेटअप करना आवश्यक है। तो जो डीम्ड अप्रूवल पॉलिसी है वो ये है कि इसमें लगने वाले समस्त प्रकार के एनओसीज, चाहे वो नगरीय निकाय से लगे, चाहे वो किसी भी विभाग के, इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे आवास पर्यावरण विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी विभाग हो, इसको एप्लीकेशन एक सिंगल विंडो पोर्टल पर अप्लाई करेगी ये जो लाइसेंसधारी संस्थाएं हैं, और फिर ये प्राधिकृत इकाइयों को यदि 15 दिवस में ये अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसे 16वें दिन जो है डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा।
1: जी मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में सवाल रहते हैं पाइप गैस की सुरक्षा को लेकर, तो इस व्यवस्था में सेफ्टी के क्या प्रावधान किए गए?
0: देखिए, जो सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्राकृतिक गैस का जो सुरक्षा मापदंड है वो बेसिकली लिक्विड पेट्रोलियम गैस से वो वैसे भी काफी सुरक्षित रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस से लाइटर होती है और हवा में इजीली डिस्पर्स हो जाती है, तो इतने आसानी से ये कम्बस्टिबल या ज्वलनशील नहीं होती है जैसे एलपीजी गैस होती है। और फिर भी जो निर्देश है उसके अंतर्गत हमने एक ऑडिट कमेटी बनाई है, और सुरक्षा संबंधी उपाय के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला प्राधिकारी अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में प्राधिकृत इकाई के साथ में एक प्रोएक्टिव आपातकालीन ड्रिल अवश्य रूप से करेंगे। एक बार ये अधोसंरचना निर्मित हो गई तो उसके पश्चात जो है ये रेगुलर ड्रिल रहेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपाय योजनाएं इसमें की गई है जिससे कि ये सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके।
1: जी धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: दोस्तों, आज के समय में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार भी है। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की दीदी ई रिक्शा सहायता योजना महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों और स्व सहायता समूहों को ई रिक्शा खरीदने के लिए सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है, यानी महिलाएं अब खुद का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। यह योजना सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और शहर की परिवहन व्यवस्था में नई भागीदारी भी दे रही है। खास बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आसान बनाई गई है। तो आखिर योजना का लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है, आवेदन कैसे करें और क्या यह योजना महिलाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खोल सकती है, इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे श्रम पदाधिकारी देवेंद्र कुमार देवांगन जी से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि दीदी ई रिक्शा सहायता योजना क्या है।
1: छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दीदी ई रिक्शा सहायता योजना श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जो बीओसी मंडल के अंतर्गत श्रमिक की श्रेणी में पंजीकृत है, उनके स्वरोजगार की सहायता के लिए शासन के द्वारा ई रिक्शा उनके द्वारा क्रय किए जाने पर सब्सिडी के रूप में 1.5 लाख रुपए जो है उनको प्रदान करती है। यह योजना महिलाओं के लिए संचालित है
0: जी। सर, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, और ऐसे कई श्रमिक वर्ग हैं जो अपने रोजगार के साधन ढूंढने में और प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनको एक सुविधा प्रदान करना था
0: जी। सर, किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
1: वैसी महिलाएं जो श्रम विभाग के अंतर्गत निर्माणी श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, वैसी महिलाएं जो है उनका पंजीयन 3 वर्ष पूर्व हुआ हो
0: जी,
1: और इसके अंतर्गत जो है बैंक का लोन ई रिक्शा से संबंधित प्राप्त होने के पश्चात 90 दिवस के भीतर आवेदन करने पर उनको लाभान्वित करने का प्रावधान है
0: जी। सर, योजना के तहत महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
1: अभी गत माह में फरवरी में 17 फरवरी से नई अधिसूचना के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक के सब्सिडी इन्हें प्रदान किया जाता है
0: जी। सर, एक और सवाल ये है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या ऑनलाइन आवेदन करना आसान है?
1: जी बिल्कुल, मैं सारे जो श्रोता है उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि समय जैसे एक के माध्यम से भी ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम विभाग में पंजीयन काउंटर है, वहाँ भी उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते हैं
0: जी। सर, आवेदन के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं?
1: आवेदन के समय उनको जो आवश्यक दस्तावेज है वो उनका जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड है
0: जी,
1: बैंक से जो लोन प्राप्त किया है उन्होंने उसे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रतियां
0: जी,
1: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक
0: जी,
1: आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन उन्हें करना पड़ेगा।
0: सर, क्या ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण या ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत है?
1: जी बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जो है सम्मिलित किया गया है। ये जो सम्मेलन है ये 23/1/2019 को किया गया था
0: जी। सर, क्या यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, कई महिलाएं जो है इस योजना का लाभान्वित करके आज की डेट में अपनी आजीविका का बेहतर उपाय विकल्प जो है वो खोज पाए हैं और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं।

0: जी सर, आखिरी सवाल है कि ई रिक्शा बढ़ने से पर्यावरण और शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर क्या सकारात्मक असर पड़ सकता है?
1: स्वाभाविक बात है, अगर ई रिक्शा जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रदूषण कम होगा, और प्रदूषण कम होने से न केवल स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो उससे हमें निजात मिलेगा, अपितु जो है अगर इसको निगम के माध्यम से सिस्टमेटिक रूप से डेवलप किया जाए और अधिक से अधिक ई वाहनों का परिचालन हम करें, तो वर्तमान में जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि ईंधन का उपयोग कम करें, तो इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता दूसरा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।
0: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: निगम के माध्यम से सिस्टमेटिक रूप से डेवलप किया जाए और अधिक से अधिक ई वाहनों का परिचालन हम करें। तो वर्तमान में जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि ईंधन का उपयोग कम करें, तो इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता दूसरा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका।

0: चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तिलीबांधा रायपुर।
1: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
2: तो साथियों, इसी के साथ आज के नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आज की चर्चा ने आपको कुछ नई जानकारियां दी होंगी और दिन की शुरुआत के लिए आपको थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा भी मिली होगी। अब आप लीजिए इस मधुर गीत का आनंद और अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई बातों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुतकर्ता थे अंकुर शुक्ल। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को

0: कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज

0: आज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी

0: है। सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, A special session

0: बच्चों
1: जय हिंद।
2: घाम के बेरा तपत है सुरुज तेजो तेज, और लइका मन के हो गए मजा रोजे रोज। काबर के स्कूल और पढ़ाई लिखाई ले मिल गए है ब्रेक। जम्मो संगवारी मन सकला थे नदिया तरिया तीरे, लपक थे आमा अमली और खाथे खीरा तरबूज। जतन करके बनाते लाटा और आमा के चटनी, कोनो अमली झर्रा थे तो कोनो नून मिर्चा के जुगाड़ करते। सब वो झंझुर मिर के जीवन के अनुभव ला पाते। संग माँ घूमे फिरे बर ममा कका बुआ फिर बाबा गाँव जाते, और घर परिवार के जम्मो बुजुर्ग और दादी नानी ले दुलार पाते। और जब जम्मो परिवार मिलजुल के अपन अपन गोट बातला बताते, त लगते कि हमर कुटुम हर पूरा दुनिया हावे। वैसनेच आप मन ले बने हैं हमर बाल वाटिका के कुटुम, और आज बाल वाटिका माँ आप मन के स्वागत है अंजु दीदी ढहले। संगी आज हमन गोट बात करबो दुनिया एक कुटुम आए। संग माँ हमर प्रकृति पर्यावरण के गोट बात हो ही ना बेहतर कल बर। पर्यावरण संरक्षण जरूरी है ये वार्ता आप मन ला सुनाही खेमलाल साहू मन। संग माँ अपन कापी पेन ला तीर माँ धरे रहू, काबर के आज हमन प्रश्न घलो पूछबो और गीत ता सुनबो भाई। तो संगी हो बताओ तो जब आप मन बाहर कहूँ घूमे भर जाता हो और अर बर दिन वहाँ रहे ले आप मन ला अपन घर अपन संगवारी मन के सुरता आयला धर लेते ना। और कहूँ दूर गांव जाए ले कोनो बताते कि तुम्हार संग पढ़ैया लड़का ता हमर सगा हावे, त आप मन ला कत्ते खुशी लगते ना। और आप पे आप हमर संगवारी मन के जो रिश्तेदार होते ना हमर कुटुम्ब कस लागे ला लगते। वैसने सोचो तो आप मन कहूँ भारत के आने आने राज्य माँ जाथो, मान ले वो आप मन छत्तीसगढ़ ले अपन स्कूल ढाल लेना कोनो पढ़ाई लिखाई के प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश फिर नागालैंड या फिर केरल राज्य माँ गे हवो। जे हर हमर छत्तीसगढ़ लेना अब बड़ दुहिया माँ हवे। फिर आप मन बहुत जल्दी वहाँ के बोली भाखा और लोगन मन के दिनचर्या खान पान और तीज तिहार के बारे में जानकारी लेना चालू कर दे।

था, है कि नहीं? आओ कहूँ कोनो वहाँ छत्तीसगढ़िया मिल जाही, छत्तीसगढ़ी बोली गोठियात मिल जाते तो कत्तेक अपन का सौ मया लागते, है कि नहीं? काबर के हमन एक एक कुटुंब के मनखे मन हवन, वैसने संगी हो हमर धरती मना 60 आने आने महाद्वीप हर हवे, और एक एक वहाँ महाद्वीप में अड़बड़ अकन देश घलुक हवे, और लगभग 195 देश ये सातों महाद्वीप में हवे, जेमा आने आने बोली भाखा पहनावा खान पान और रीति रिवाज के मनाने वाले जे देश मन हवे, फिर हमन घलुक एक दूसर ले एक कुटुंब कस बंधाए हवन, और हमर देश में तो कहते ना वसुधैव कुटुंबकम, और जैसे एक परिवार के मनखे मन ना अपन जरूरत बर और कोनो सहयोग सहायता बर एक दूसर ऊपर निर्भर रही थे ना, वैसने दुनिया के आने आने देश ले ना हमन अपन रोज दिन के जरूरत के जिनिस जे हमर देश मा नहीं हावे फिर कम थी हावे ओला हमन मंगाथन, जैसे ईंधन बर तेल और प्राकृतिक गैस हमन दूसर देश जैसे खाड़ी के देश ले आयात करथन, वैसने कतको प्रकार के खनिज और खाई पिए के फल सब्जी अनाज संग उद्योग व्यवसाय बर कच्चा सामान घलो दूसर देश ले हमन आयात करथन, कहे के मतलब हवे कि हमर धरती के आने आने देश संग एक दूसर ले कुटुंब के रूप में जुड़ाए हवन संगवारी हो। अब आप मन जानत हो हमर देश में ना आने आने देश के कार्यालय और दूतावास जेला एम्बेसी कहते घलो हवे, और हमर देश के राजधानी दिल्ली ना कभू घूमे बर जाहू ना तो ध्यान देहू कि वहाँ अड़बड़ अकन देश के राजदूत दूतावास देखे बर मिली। जी हाँ, आप उमन ना अपन देश के सभ्यता संस्कृति और अपन देश के उत्सव के मुताबिक ना वहाँ के परिधान माने पहनावा पहने दिख जाही, वहाँ के सजावट घलोक वो देश के परंपरा के अनुसार बना के रखते, जेखर ले वहाँ जवैया मनखे मन वो देश के बारे में और जानकारी पा सके। वैसने दुनिया के आने आने देश में हमर भारत के घलोक दूतावास हवे, जेखर पाए के दूसर देश घलोक हमर देश के संस्कृति और सभ्यता के जानकारी पाते, कहे के मतलब हवे ऐसा लगते ना कि जम्मो दुनिया एक कुटुंब कस हवे और एक दूसर के सुख दुख तीज तिहार ला संग मा मनावत अपन एका के संदेश ला देवत कहते कि दुनिया एक एच कुटुंब आवे, और जम्मो लैका मन एक दूसर के मितान हो। तस आवो सुनन लक्ष्मण भस्तुरिया और संगवारी मन के गाए ये गीत मुर संग चलो रे मुर संग चलोगा।

0: संगी हो, अतिक सुघर गीत के बाद अब ये बताओ था कि जब धरती के कोनो भाग माने कोनो भाग में रहिया मनखे मन एके छावे त धरती के पर्यावरण ला साफ और संतुलित बनाए रखना घलोक सब जन के जिम्मेदारी हरावे। त आवो सुनन वार्ता बेहतर कलवर पर्यावरण संरक्षण जरूरी और वार्ताकार हवे खेमलाल साहू मन।
1: जय जोहार संगवारी हो, हमन नाने नाने संगवारी मन ला खेमलाल साहू शिक्षा के डहर ले जय जोहार। संगवारी हो, आज मैं हाँ तुम्हार मन संग पर्यावरण के संरक्षण के बारे में चर्चा करूँ। मोर चर्चा के विषय आए बेहतर कल बार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। संगवारी हो, वैसे तो प्रकृति है मूल रूप ले शुद्ध पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक होते, पर कई ठन कारण ले जब पर्यावरण हाँ प्रदूषण हो जाते तब पूरा मानव जाति के विकास और स्वास्थ्य पर खतरा हो जाते। संगवारी हो, आओ जानथन पर्यावरण के मतलब का है। हमन के आसपास सबो चीज जौन जिंदगी ला चलाए रखते जैसे स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियर धरती, ये सब मिलके जिंदगी ला आसान और सुरक्षित बनाते। अर्थात हमार जौन चारों कोती घिरे हावन जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, जानवर और मन के ओकर संग मिल के जौन माहौल बनते ओलच पर्यावरण कहथन। आज हमार पर्यावरण हाँ प्रदूषित होवत जावत है, जेकर ले हमार मानव समाज और दूसर जीव मन के जीवन हाँ संकट में हावे। संगवारी हो, तुमन जानतो ये प्रदूषण का होते? आवो मैं तुमन ला ये प्रदूषण के बारे में विस्तार से बतावत हूँ। प्रदूषण के मतलब हवे आसपास के माहौल की बिगड़ जाना, जैसे गंदी हवा, दूषित जल और खराब माटी, जौन मनखे जानवर और प्रकृति सबो बर नुकसानदायक होते। संगवारी हो, एला हम ऐसन भी समझ सकथन जब हवा, पानी, माटी मा गंदगी या हानिकारक चीज मिल जाते और वो अपन शुद्ध रूप ला खो देते तो ओला प्रदूषण कहथन। संगवारी हो, आवो प्रदूषण के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा करथन और ये प्रदूषण ला हमन कैसे कम कर सकथन ओकर बारे में चर्चा करथन। सबले आगू हमन जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करथन, काबर की कहे गए है ना, जल है तो कल है। जल मानव जीवन पर सबले जरूरी संसाधन आए, बिना पानी के जिंदगी संभव नहीं है। फिर आज के समय में जल प्रदूषण हाँ एक गंभीर समस्या बन गया हावे। ये समस्या धीरे धीरे बढ़त जावत हावे, जेन ले मनखे जानवर और पर्यावरण सबो प्रभावित होवत हावे। संगवारी हो, जल प्रदूषण ओला कहे जाते जब पानी में गंदगी, जहरीला पदार्थ और बेकार चीज मन मिल जाते जेन ले पानी पीने लायक नहीं रहा और जिंदा जीव जंतु मन भर नुकसानदायक हो जाते। जल प्रदूषण के कई कारण हावे। सबसे बड़े कारण में कारखाना और फैक्ट्री ले निकले गंदा पानी आए जेन ला सीधे नदी नाला में छोड़ दिए जाते। ये पानी में जहरीला रसायन रहते जेन ले पानी खराब हो जाते। दूसर कारण हावे घर के गंदा

पानी अउ कचरा गांव शहर म लोगन अपन कचरा नदी तालाब म फेंक देथे, जेकर ले पानी ह दूषित हो जाथे। खेती किसानी म जेन रासायनिक खाद अउ कीटनाशक ल हमन उपयोग करथन वो ह पानी म मिलके ओकर गुणवत्ता ल बिगाड़ देथे। एकर अलावा नहाए धोए कपड़ा साफ करे अउ जानवर मन के नहाए के कारण घलो पानी गंदा हो जाथे। संगवारी हो, दूषित पानी पिए ले कई किस्म की बीमारी हो जाथे, जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड। जानवर और मछली घलो ये पानी में मर जाते। पर्यावरण में असंतुलन हो जाते और साफ पानी पिए की कमी हो जाते। संगवारी हो, जल प्रदूषण ला रोके बर हम अलग कुछ जरूरी कदम उठाए ला पड़ी। सबले पहली कारखाना ने निकले गंदा पानी ला साफ करके ही नदी में छोड़ा जाना चाहिए। घर के कचरा ला सही जगह में फेंकना चाहिए, नदी तालाब में झन फेंकाओ। खेती में रासायनिक खाद के बदला में जैविक खाद के उपयोग ला बढ़ावा देवन। लोगन में जागरूकता बढ़ाना घलो जरूरी है, ताकि सबो झन मिल के पानी ला बचा सके। संगवारी हो, जल है जीवन के आधार हवे। अगर हमन अभी ले ध्यान नहीं देवो तो आने वाला समय में पानी के भारी कमी हो जाही। एकरे सेती हम सब ला मिलके जल प्रदूषण ला रोकना पड़ी और पानी के संरक्षण करना पड़ी। काबर की कहे के है ना, जल है तो कल है। संगवारी हो, वायु प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गए है। हवा जौन हमन सांस लेथन वही में जहरीला गैस और धूल मिट्टी घुल गए, जौन ले मनखे जानवर और पर्यावरण के सबो जन प्रभावित होवत है। संगवारी हो, वायु प्रदूषण के वैसे तो बहुत से कारण हैं, जैसे कारखाना ले निकलने वाला धुआं। आजकल मोटर गाड़ी मन की संख्या मन भी बढ़ बढ़ गए हावे, जौन ले धुआं निकल के हवा ला दूषित कर देते। जंगल के कटाई घलो एक बड़े कारण हावे, काबर की पेड़ पौधा हवा ला साफ करके रखते। कचरा जलाना, फसल के ठूठला जलाना और फटाका फोड़ना, आतिशबाजी, ये घलो सब हवा में प्रदूषण बढ़ा देते। संगवारी हो, आप मन जानता दूषित हवा ले मनखे के सेहत में जो प्रभाव पड़ते उकर बारे में? इगर से सांस की बीमारी, खांसी, दमा जैसे रोग बढ़ जाते। एकर प्रभाव ले वैसे तो सबो जन ला पड़ते, पर हमर नान्हे नान्हे संगवारी और सियान मन ला ज्यादा असर पड़ते। पर्यावरण में बहुतेज बदलाव हो जाते, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में अनियमितता। संगवारी हो, आओ जानथन वायु प्रदूषण ला कम कैसे करे जाते, एकर बारे में का उपाय किए जा सकते, एकर बारे में चर्चा करथन। जैसे ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, मोटर गाड़ी के उपयोग ला जरूरी है तभेज करना चाहिए। हम मन ला कभू कभार साइकिल के उपयोग भी करना चाहिए या पैदल घलो चलना चाहिए। कारखाना में फिल्टर लगाना चाहिए और चिमनी मन ला ज्यादा ऊंचा करना चाहिए, ताकि धुआं कम निकले और अधिक ऊंचाई तक जाए। कचरा ला जलाए के बदला सही तरीका ले कर निपटान करना चाहिए। सरकार तो अपन काम करत हावे, हमू मन ला हमार सरकार के सहयोग करना चाहिए। संगवारी हो, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या आए, फिर अगर हमन समय रहा जागरूक हो जाबो और सही कदम उठाबो तो हमार साफ सुथरा रख सकथन। साफ हवा में जीना है हर एक के अधिकार आए और एकर जिम्मेदारी घलो हमार सबो जन के आए। संगवारी हो, आओ जानथन अब थल प्रदूषण के बारे में। थल प्रदूषण आज के समय में एक बहुतेज बड़े समस्या आए। थल प्रदूषण जमीन ला दूषित कर देते, तो ओकर असर सीधा हमर मन के जीवन में पड़ते। खेती बाड़ी, हवा, सब कुछ एकर से प्रभावित हो जाते। संगवारी हो, जब धरती में गंदगी, कचरा, जहरीला पदार्थ जैसन चीज मन ज्यादा हो जाते और जमीन खराब हो जाते, ओला थल प्रदूषण कहथन। संगवारी हो, थल प्रदूषण के बहुत से कारण हवे, जैसे कचरा ला कोनो भी जगह फेंक देना। शहर होवे या गांव, लोगन मन प्लास्टिक, पॉलीथीन बोतल और दूसर गंदगी ला जमीन में कोन भी जगह फेंक देते। ये चीज मन सड़े नहीं

और सालों साल तक जमीन ला खराब करत रहे थे। और दूसरा कारण हवे रासायनिक खाद और कीटनाशक के ज्यादा उपयोग। हमर किसान भाई मन फसल के उत्पादन ला बढ़ाए बर ज्यादा दवाई और खाद डालते, जेन ले जमीन के उपजाऊ शक्ति है कम हो जाते और मिट्टी खराब हो जाते। तीसरा कारण हवे उद्योग के कचरा, कारखाने ले बहुत से जहरीला पदार्थ निकलते जेला जमीन में छोड़ दिए जाते, जेन ले जमीन है दूषित हो जाते। संगवारी हो, थल प्रदूषण ला कम करे बर हमला कुछ जरूरी कदम उठा

0: करना चाहिए। कपड़ा या कागज के थैले उपयोग में लाना बढ़िया उपाय हावे। तीसरा कारण हावे किसान भाई मन जैविक खाद के उपयोग करना चाहिए, जेन ले जमीन की उपजाऊ शक्ति जो है बने रहे। थल प्रदूषण ला रोके बर हमन सब के सहयोग जरूरी हावे। अगर हमन आज ध्यान नहीं देबो तो भविष्य में जमीन खेती करने लायक नहीं रह जाही। कल के सुखमय जिंदगी भर आज के पर्यावरण ला बचावन बहुत जरूरी है। पेड़ लगाबो, धरती सजाबो और अपन भविष्य बचाबो। जंगल माटी ला बचाबो, अपन आने वाला कल ला संवारबो। संगवारी हो, ये तो रही बेहतर कल भर। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है संगवारी हो। अवैया 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस आए, जेमा हमला कम से कम एक पौधा लगाए के अवला बचाए के संकल्प लेन, तभी पर्यावरण हा बचही। और अंत में एक ठन संदेश मोर तरफ से हावे कि पर्यावरण के रखवारी हम सब के जिम्मेदारी। जय जवाहर संगवारी हो।
1: कत्तिक सुघर वार्ता ना बेहतर कल बर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, जिला बतात रहीन खेमलाल साहूमन। तब फिर आवाओ सुनन ये गीत ला, और गीत सुने के पहली ना अपन कापी पेन ला ना सोझिया ले वो काबर के प्रश्नोत्तरी घलो गो ही। तो आवाओ सुनन ये गीत जे दिन कुआं के पानी अटा जाही, चतुर राम साहू और संगवारी मन के गाए ये गीत ला।

पानी के संरक्षण महत्ता बतावत ये एक संदेश ला देवत ये गीत जे दिन कुआं ले पानी अटा जाही आप मन सुनियो संगी हो। अब तो बेरा हवे जेखर आप मन ला अगोरा है तो सबले पहली हमन प्रश्न क्रमांक 385 के प्रश्न जो रही से ना ओका सही उत्तर ला जानन और जिन संगवारी मन ना सही उत्तर पठो है ओखर नाव घलो। तो प्रश्न क्रमांक 385 के पहली प्रश्न रही से बैसाखी के तिहार कौन राज्य में मनाए जाते तो उत्तर हवे पंजाब राज्य में। दूसर प्रश्न रही से जलिया वाला बाग कौन राज्य में हवे तो वो तो हवे अमृतसर में। और तीसर प्रश्न रही से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती कब मनाए जाते तो जयंती मनाए जाते 14 अप्रैल के। और चौथा प्रश्न रही से स्वतंत्र भारत के पहली कानून मंत्री के नाम बताओ या कौन रही से तो वो रही से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पांचवा और आखिरी प्रश्न रही से गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में हवे तो वो तो हवे हमर धमतरी जिला में। अब जानन संगवारी मन के नाव अड़बड़कन संगवारी मन हमन ला सही जवाब पठोए हवे त ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी ले खुमेंद तुसारिणी कामेज अनिरुद्ध साकेत पायल करीमा काजल मेघा वर्षा और रुद्र कुमार मसियामन। ग्राम खैर झिट्टी कला साजा बेमितराले वैष्णवी मधु शगुन रीना रूपाली हिमांशी दिव्यांशु और अर्जुन मन आप मन सही जवाब पठाए हुए वो। और ग्राम सलोनी धुमका जिला राजनांदगांव ले वेदांत वैभव रश्मि प्रियांशु गौरव और आयुष्मन। कर्मा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा ले खुशांत और निशांत साहूमन। लच्छनपुर ले शिवम और निम्मी श्रुति साहूमन। ग्राम बंगला मटिया बालोद ले त्रियंबिका लीना लुशिया अंगारेमन। कांके संबलपुर ले ओजस्वी और इशिका यादवमन। भिलाई जिला छत्तीसगढ़ ले गौरव और गरिमा शर्मा मन घलोक सही उत्तर भेजे है। वैसने छमर संगवारी नीतेश देवांगन हाँ तो सही जवाब भेजे पर अपन पताला नहीं दे है तो संगवारी आप मन घलो अपन पताला सही सही लिख के दहू हमनला। और पलारी ले हमर संगी ईशान देवांगन सही उत्तर लिख के भेजे हवे तो संगी हो एकरे संगे संग ग्राम कोलियारी ले मुकुन पूर्णेन्द्र साहिल और भव्या चंद्राकर मन सही जवाब भेजे है। ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबन ले योगेश्वरी डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान हर्षिता पूर्वी और नयन साहूमन घलोक सही उत्तर भेजे है। और ग्राम पथरिया भरेवाले नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौलमन। वैसने ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान ले गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन मन सही सही उत्तर भेजे हैं। और ग्राम खमहार मुड़ा ले सतीश गिरी श्रेयांश गिरी शिवायगिरी और एकांशी गोस्वामी मन घलोक सही जवाब भेजे हवे। वैसने लोरमी गाँव चचेड़ा ले पुष्पराज ऋषभ नेहा चमन सुमित और रिंझा राही मरावी मन। और साल्हे भाटा महासम मुंडले केवल दिव्यांशी खेमू पूरब टामीन और खुमेंद्र धूमन। डोंगरगांव ले तन्मय बेबी अनिष्का गजबिये कोयल और याशिका लाउत्रे। देवरी भट्टा ले युवान हाव्या तन्नू तानिया नित्या मानसी नंदनी और उमेश रजकमन। और ग्राम पंचायत पलारी रे पूजा यशस्वी अन्नपूर्णा मन। और गांव ढोंडरी घोटिया कला मोहला मानपुर ले नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल निखिल निखिल और डिम्पल निषाद कत्तिक संगवारी मन भेजे हैं। अब जल्दी से लिख ले वो प्रश्न क्रमांक 386 के प्रश्न ला। तो पहली प्रश्न हवे हमर भारत देश कौन से महाद्वीप में हवे तो हमर देश कौन से महाद्वीप में हवे आप मन ला बताना है। दूसरा प्रश्न भारत के उत्तर दिशा में कौन से पर्वत हर हवे ओखर नाव बताओ आप मन ला बताना है भारत के उत्तर दिशा में कौन से पर्वत हर हवे। तीसरा प्रश्न है हमर देश के सीमा ले लगे कौन से देश हर हवे और कौन कौन देश हवे ओखर नाम ला बताना है। हमर देश के सीमा ले लगे कौन कौन से देश है ओखर नाम ला आप मन ला बताना है। चौथा प्रश्न है हमर छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन जिला में हवे तो आप मन ला बताना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन जिला में हवे। और पाँचवा और आखिरी प्रश्न है तेंदू चार आमा लीची तरबूज खरबूजा ये कौन से मौसम के

0: कल हरावे त संगी हो प्रश्ने घौ फेर हमर भारत देश कौन से महाद्वीप में हवे, भारत के उत्तर दिशा में कौन से पर्वत हवे, हमर देश के सीमा ले लगे कौन कौन से देश हवे उखर नाव ला बताओ, हमर छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन जिला में हवे, और आखिरी प्रश्न तेंदू चार आमा लीची करबूज तरबूज खरबूज कौन से मौसम के फल हैं। एक संगे संगी जाए के मेरा हुआ थे पर पता है ईमेल पर राय लैका मन के चिट्ठी 14@gmail.com और पाती बरहे द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97492100001 आकाशवाणी रायपुर। तो हुआ थे जाए के मेरा देश दुनिया के समृद्ध संस्कृति विरासत ला जानो, प्रकृति के संरक्षण करो और नवा नवा अपन अनुभव ला जुड़ाओ गर्मी के छुट्टी में, और देवो विदा अपन दीदी अंजुला।
1: बच्चों जय।

ये था ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रगति के सोपान। इसमें सुनिए लखपति दीदी योजना पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत करता है रमाशंकर।

0: महिलाएं घर की धुरी होती है। इनके सशक्तिकरण से एक पूरा समाज सशक्त हो जाता है। भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सामाजिक परिवेश और समाज के विभिन्न आय वर्गों के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी तरह समाज में महिलाओं को उनके सशक्तिकरण की दृष्टि और समाज में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से भी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं के लिए सहायता समूह एक वरदान के रूप में आया है, जिससे जुड़कर वे अपने क्षेत्र में रहकर समूह बनाकर आर्थिक समृद्धि की राह में आगे बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद कर सशक्त किया जा रहा है। योजना में महिलाओं को कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसमें कई सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिलाओं को खेती और गैर खेती से संबंधित गतिविधियों में सहायता प्रदान किया जा रहा है। बीते वर्ष सरकार ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाती है, इसमें लखपति दीदी योजना भी उसी के लिए एक प्रयास है। यह योजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए चलाई जाती है। इस योजना के जरिए महिलाओं की इनकम बढ़ाने में सहायता की जाती है और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग दी जाती है और फिर खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए बिना ब्याज के 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं, जो उन्हें पूरी करनी होती हैं। इस योजना में जो सबसे जरूरी शर्त है कि कोई भी महिला अगर इस योजना के तहत आवेदन करती है तो उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत सिर्फ वही महिला आवेदन कर सकती है जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम हो। 3 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम वाली महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होती। लखपति दीदी योजना में आवेदन के लिए महिलाओं को एक स्व सहायता समूह के तहत व्यवसाय बिजनेस प्लान बनाना होगा। जैसे ही उनका बिजनेस प्लान बन जाएगा, उस प्लान को वो स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा सरकार को भेजा जाता है। सरकार के आधिकारिक एप्लीकेशन इस आवेदन को रिव्यू करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उन्हें सूचना दिया जाता है और सूचित कर योजना का लाभ दिया जाता है। तो श्रोताओं, ऐसे ही एक महिला जिनका नाम हिरोंदी देवांगन है, वे बताती हैं।
1: सर, मेरा नाम हिरोंदी देवांगन।
0: ठीक, कहाँ के रहने वाले हो आप?
1: ग्राम मेढ़ा, ब्लॉक डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
0: तो ये योजना से कैसे जुड़े आप?
1: लखपति दीदी योजना से जुड़े हैं सर। कि क्या है, हम पहले समूह में जुड़े ना, तो हमको सब एक एक चीज पता चला, तो हमारे लोन लेकर और अपने आजीविका को बढ़ाए और आजीविका को बढ़ाकर हमारे यहाँ ऑनलाइन से

0: अंदर बिहान बाजार में खुले उनसे जुड़े हैं सर।
1: तो इसके लिए कहाँ से पता चला आपको?
0: अपने महिला समूह से।
1: क्या नाम है महिला समूह का?
0: अपना महिला समूह तो हमारा समूह है जय माँ गायत्री।
1: तो समूह में कितनी महिलाएं हैं आप?
0: हमारे समूह में तो 13 महिला है सर।
1: अच्छा, तो ये जो 13 महिलाएं हैं सब आप मेढ़ा के हैं?
0: जी जी हाँ।
1: अच्छा, तो ये तो योजना में
0: गाँव में बहुत महिला लोग जुड़े हैं।
1: अच्छा,
0: लगभग 400 महिला जुड़े हैं।
1: अच्छा, तो ये इसके लिए आप लोग को कहाँ अप्लाई किए? सरकार से क्या मदद मिल पा रही है?
0: सरकार से ही तो मदद मिले है सर हमको। पहले समूह में जोड़ने के लिए दीदी लोग आए, सीआरपी राउंड वाले लोग, उन लोग जोड़े, फिर हम लोग को 15,000 नहीं मिले, अनुदान राशि मिले आरएफ के नाम से। उसके बाद 3 महीने बाद आरएफ मिले हमको 15,000। उसके बाद 6 महीना के बाद हमको 60,000 एमसीपी के माध्यम से मिले। और फिर लोन लेते गए अपने महिला समूह से ही हमारे एफएलसीआरपी दीदी आए, वो हमारा लोन का फॉर्म भरे, लोन लिए, ऐसे धीरे धीरे करके अपने आजीविका बढ़ाए, फिर बुनकर का कार्य किए। बुनकर का कार्य करते करते अपना बिहान बाजार जब मुरमुंदा में खुला तो एक गरीब महिला लोग के लिए बिहान बाजार खुला, उसमें कम दाम में मतलब 300 महीना में हम लोग को चाल मिला। उसी चाल से मतलब ऑनलाइन सेंटर खोला, लोक सेवा केंद्र
1: जी। तो इसमें जब आप लोगों को अच्छी आमदनी हो जाती है, कुछ थोड़ी जितनी भी आमदनी हो जाती है, तो उसके आप घर चलाने में कितनी मदद मिलती है?
0: घर चलाने में तो मदद मिले ऐसा नहीं, तो पहले तो रोज बनी मजदूरी करते थे तभी अपना घर चलते थे।
1: अच्छा जी,
0: अभी ऐसा हुआ कि ज्यादा मजदूरी के लिए जाना नहीं पड़ते है, दुकान से ही आय मिल जाते हैं, और कुछ हमारे बुनकर कार्य करते उसमें मिल जाते हैं। तो बहुत मदद मिले सर।
1: अच्छा, तो जितने आप लोग लखपति दीदी आपके समूह में हैं, तो आसपास के गांवों में जब आप देखते हैं तो इसके लिए और महिलाएं जो घर में रहती हैं, जो मतलब इस समूह से नहीं जुड़ पाई हैं, तो उनके लिए आप उनको कैसे समझाती हैं कि समूह से जुड़ के कैसे आप लोग आत्मनिर्भर बन रही हैं?
0: बताते हैं सर योजना के पूरे जानकारी। तो पहले तो समूह में जुड़ने के लिए बिहानी योजना को बताना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि समूह में जुड़ने से जो मतलब हमको लखपति दीदी बनाने में पहले समूह में जुड़ना पड़ेगा। समूह में जुड़ेंगे तो हमारे 15,000 जो अनुदान राशि मिलेंगे, 3 महीना बाद 6 महीना बाद एमसीपी मिलेंगे, फिर आप लोग को लोन मिलेंगे, फिर क्या है हमारा ग्राम संगठन मदद करते हैं, उसमें 2% अब तो 1% हो गए सर, पहले तो 2% थे, उनसे हम लोग को मदद मिलते हैं, उससे अपना आजीविका बढ़ाना है, आजीविका बढ़ा के आप लोग को भी लखपति दीदी बनना है ऐसे करके।
1: तो हिरोदी देवांगन जी, आप महिला हैं और जैसे आप डोंगरगढ़ के मेंढरा गांव में हैं, तो जो आप बोल रहे हैं बुनकर भी कुछ वहां पे बनाते हैं, क्या क्या सामान है, तो जो लखपति दीदी बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपको आर्थिक तौर पे कितना मजबूत हो पाई है?
0: आर्थिक तौर पे तो मजबूती हुए सर। पहले तो हम 2 दिन खेत नहीं जाते तो हमारे घर स्थिति ऐसे हो जाते कि हमको सब्जी लेने के लिए पैसा नहीं होते थे। अब ऐसा है, हमारा स्थिति बहुत सुधार हो गया, हम अब अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और हमारे परिवार भी खुशहाल से चल रहे हैं।

लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसका उद्देश्य उन्हें 1,00,000 से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास के साथ साथ अन्य स्किल्स में निपुण बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें लखपति दीदी योजना के बारे में तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। महिलाओं को स्थायी आजीविका के माध्यम से 1,00,000 से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में मदद करना। यह योजना वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास पर आधारित है, ताकि महिलाएं उद्यमिता की ओर बढ़कर विकसित हो सकें। स्व सहायता समूह को सामूहिक कार्यवाही और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न मंत्रालय और विभाग इन स्व सहायता समूहों की मदद करेंगे, जिसमें कृषि, पशुपालन और सरकार के विभाग भी शामिल हैं। साथ ही क्रेडिट गारंटी, महिला व्यक्तिगत उद्यमियों को

0: अधिकतम 5 वर्षों के लिए लोन के लिए क्रेडिट गारंटी की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक और महिला अमीला देवांगन जो इस योजना का लाभ ले रही हैं, वो आज एक सफल लखपति दीदी हैं, वे बताती हैं।
1: मेरा नाम अमीला देवांगन, ग्राम मेढ़ा, पोस्ट मेढ़ा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। समूह में जुड़े हों मला 2016 में जुड़े हों समूह में। समूह में जुड़े उस समय मोर पास कुछ नहीं रही, छोटा सा किराना दुकान रही से, वो दुकान मोर चलत नहीं रही से। शुरुआत में तो हम लोग ना समूह में जुड़े, शुरुआत में ना समूह में जुड़े ना तो मोर पास कुछ नहीं रही, छोटा सा दुकान रही से। फिर 10-10 रुपया करके हम ना समूह बनाए 11 जन के, और 10-10 रुपया जमा करें, 6 महीना तक जमा करें। उखर बाद में हमारा खाता खुली, खाता खुले के बाद में 15,000 अनुदान राशि आई, अनुदान राशि आई 15,000, उसमें 5,000 उठाओ, 5,000 उठा के मोर दुकान ल बढ़ाओ। ओकर बाद में भी मोर दुकान चलते रही से, छोटा सा दुकान रही से। ओकर बाद में मैं सोचे हूँ और ज्यादा पैसा निकालू, मोर धंधा ला जाऊं, तो मोला ग्राम संगठन से मोला 60,000 पैसा मिली, 60,000 पैसा लुठाओ, फिर आगे बढ़े हूँ, दुकान ला आगे बढ़ाओ। ओकर बाद में मैं यहाँ अच्छा पटात रहे हूँ, तो मोर आदत व्यवहार देख के समूह के महिला लोग फिर मोला ना 50,000 लोन दी, बैंक लोन। बैंक लोन लभी मैं यहाँ 12 महीना में पटाऊ, फिर मोर धंधा बढ़ाओ। वो समय में कुछ नहीं रहे, मोर धंधा धीरे धीरे बढ़त गई। ओकर बाद में मैं फिर बैंक से 2,00,000 निकाले हूँ, ओला भी साल भर में पटा हूँ, 2,00,000 निकाल के मैं किराना दुकान ला मोर बढ़ाया हूँ। ओकर बाद में फिर दूसरा साल में फिर 5,00,000 लोन निकाले हूँ, 5,00,000 लोन निकाले हूँ। और मोर घर में कुछ और रायता रही से, ओकर वजह से मैं यहाँ आरा मशीन ला खरीदे हूँ 12,00,000 में, 12,00,000 में आरा मशीन खरीदे हूँ। और मैं लकड़ी का व्यवसाय करता हूँ, दरवाजा, खिड़की, सोफा, पलंग, और मोर अच्छा धंधा पानी चलत है, और मैं अच्छा हूँ। समूह जुड़े से मोर बहुत कुछ आगे बढ़े हूँ, और घर से बाहर नहीं निकलते हूँ। पहले तो समूह जुड़े से मैं अच्छा बाहर तरफ निकलता हूँ, बैंक जाता हूँ, क्लस्टर जाता हूँ, ग्राम संगठन के अध्यक्ष भी हूँ मैं यहाँ, और बोले भर भी सीखे हूँ। मैं पहले बोला भी नहीं सीखे रहे हूँ, अभी मोर व्यवसाय अच्छा चला थे।
0: अच्छा, तो अभी आप लखपति दीदी समूह बनाए हैं, तो आपके समूह में कितनी महिलाएं और साथ में
1: हैं? 11 महिला हैं हमारे समूह ना। हाँ, हमारे लखपति दीदी समूह में ना 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य में ना 10 सदस्य पूरा धंधा कर रहे हैं। किसी का होटल है, किसी का पान ठेला है, एक का अंडा दुकान है, एक का किराना दुकान है। हमारे समूह में बहुत आगे बढ़े हैं, हमारे समूह में जुड़े से 10 महिला आगे बढ़े हैं,
0: तो
1: और अभी सब अच्छा चला था, अब अच्छा चला थे हमारे समूह।
0: तो आप महिलाओं से क्या बोलना चाहेंगी कि समूह में जुड़ के आप लोग कैसे आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं और अपना कैसे आजाद हुए हैं, मतलब घर के खर्चों को संभालने के लिए?
1: अब समूह में जुड़े हो, धंधा आगे बढ़ा हो, वही में मोर घर के खर्चा, मोर परिवार के खर्चा सब चला हूँ मैं यहाँ, और मैं खुद घर के खर्चा में मैं खुद अपन जिम्मेदारी से करता हूँ। मोर यहाँ बेटा नहीं करे, मोर पति नहीं करे, मोला हर चीज के मोला ना सीधा देकर अपन इच्छा से किसना, मैं अपन हर चीज ला मैं अपन ऐसे करता हूँ, और मैं आगे बढ़े हूँ। अभी मोर घर वाले भी खुश है, और गांव वाले भी मोला ना अच्छा धंधा पानी बढ़ाए करके मोर ग्राम संगठन के अध्यक्ष बनाई से। समूह वाले दीदी मन है 31 समूह है हमारे यहाँ, ओमे से मोला ग्राम संगठन के अध्यक्ष बनाई से। अभी मोर हर चीज ला मोर देखी, मैं यहाँ पैसा कमाए वाले इसे बात नहीं रखो, मैं यहाँ सेवा टाइप के करता हूँ मैं यहाँ, इसलिए ना मोर गाँव में अभी सरपंच में जीता है।
0: सरकार के विभिन्न प्रयासों के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का क्रियान्वयन भारत के हर राज्य के हर जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूर्ण होने में कुछ समय जरूर लगेंगे, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्तिकरण की ओर ले जाना है।

कार्यक्रम प्रगति के सोपान में अभी आप सुन रहे थे लखपति दीदी योजना पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, हमारे कई हिंदी फिल्मी गीतों में विदेश के शहरों के नामों का जिक्र है। अक्सर शूटिंग हमारे देश के अलावा विदेशों में भी की जाती है। तो चलिए कुछ ऐसे ही गीत सुनें जिसमें विदेश के शहरों के नाम हों। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की आवाजों में। अभी आपने सुना फिल्म पतंगा का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत था सी रामचंद्र का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए अब सुनिए फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत, आवाज किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत सचिन देव परमन का।

0: में प्यार हो गया ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा
1: ये

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो गया।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले करने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई।

को इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं, देखो वो गोरी गोरी राएं, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां।

लव इन टोक्यो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की थी। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज़ में फिल्म सिंगापुर का गीत। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मंतराम पटपरिया और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए कर्मा गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: लीजिए अब सुनिए मंदराम पटपरिया और साथियों के स्वर में श्रम गीत।
4: अपन हाथ ले श्रम के पुजारी,

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: लीजिए अब सुनिए मंतराम पटपरिया और साथियों के स्वर में राम महिमा।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे मंतराम पटपरिया और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। सरकार ने इस साल सितंबर महीने या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबी जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वाकाथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वाकाथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचारवाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकाथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वाकाथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और ओसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1,880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। चांपा रेलवे स्टेशन पर 4थी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। दुर्ग जिले के पुराना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के नीचे खेल रहे 18 वर्षीय किशोर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। आरोपी इस गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे थे।

0: इस गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है और संस्कार भारती द्वारा कल से राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। कलाकार हैं शिल्पा राव और जसपिंदर नरूला। पहले सुनिए शिल्पा राव की आवाज में ये गीत।

स्वरधारा कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शिल्पा राव और जसपिंदर नरूला। लीजिए अब सुनिए जसपिंदर नरूला के स्वर में इरशाद कामिल की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत गज़ल और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। कलाकार थे शिल्पा राव और जसपिंदर नरूला। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कल आज और कल का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था शंकर जयकिशन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म कभी कभी का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत खयाम का।

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले करने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सागर का गीत। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

लीजिए अब सुनिए फिल्म काला पत्थर का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत है साहिल लुधियानवी का, संगीत है राजेश रोशन का।

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले करने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म रोमांस का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की थी। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 15 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 15 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें। आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं सौम्या रिजवी। आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म ब्लैकमेल से, आवाज किशोर कुमार की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, पसंद आप सभी की है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। लोरमी ग्राम जचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। भिलाई 3 पदुमनगर चरौदा से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। रसीड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। भाटापारा से दान सिंह रावत, तानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। कर्मा चौक लोहारीडी से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत और निशांत साहू। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके। अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती और मयंक मरावी। ग्राम पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। भानपुरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव, विदेशी, होमेश्वर, मनीश्वर, लाक्षी और तुलसी यादव। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। और समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपा गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बेताब से, आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देवपरमन का, फरमाइश किया है आप सभी ने। ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान से राजकुमारी मरावी, श्याम सिंह मरावी, रानी रजनी, राहुल पूजा मरावी। कोई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई फिरतराम, मालती धुर्वे। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमरता ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। धरसीमा बस स्टैंड से छेदू लाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नू लाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव, अनुराग, अभिषेक, डुक्कू और कान्हा यादव। ग्राम बाघमुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, पुनेश्वर रजक। सिनेमा लाइन भाटापारा से रामकुमार सेन, विक्की सेन। देवरी भाटापारा से फानेश्वर रजक, उमेश रजक। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। अमलीरी साजा से खिलेश्वर सिंह चौहान, मालती देवी चौहान और अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म सिलसिला का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत जावेद अख्तर का, संगीत शिव हरि का। पसंद किया है रमेश नगर नई दिल्ली से डगेश कुमार साहू, धनेश्वरी देवी साहू, भोज केकती सृष्टि और मानवी साहू, बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू, योगेश्वर साहू, हेमलता साहू, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, गर्रापारा बांधा बाजार से मानवेंद्र साहू, सुलोचना और राकेश साहू, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, राहिल बिट्टा बजाज, लोरमी ग्राम चचेड़ी से मोहन सिंह मरावी, सविता मरावी, रिंझा तनु, राही मरावी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से ही जगदीश सिंह मरावी, सावित्री मरावी, चमन अमन, सुमित मरावी, पांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा और विपुल कांबड़े, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय कुमार ठाकुर, घटारानी फुलझर से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी मुस्कान और हर्षिता साहू, ग्राम जैसा कर्रा चारामा से असाड़ू राम निषाद, खिलावन निषाद और ऋषभ निषाद, और दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा।

ईमेल भेजे हैं फिल्म संकेत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सरगम से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सभी की है। बाजार वार्ड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्यदास, सोंगा मगलरोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, खमारमुड़ा से सतीश गिरी।

गोस्वामी, श्री अंशगिरी गोस्वामी, गांव तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार निषाद, देविका, भूषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर और किशन, ठेठवारपारा कनेरी से सनत कुमार यादव, ग्राम सिंगारपुर पहली मीटा से चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज, शानू धुर्वे, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली क्षत्रिय, भैंसमुंडी मगरलोड से पूजा, तुलेंद्र, पूर्वशी साहू, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णिमा, साहिल चंद्राकर, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा, लोचन कुमारी, विद्यार्थी, गिन्नी, लल्ली, चंद्रिका, निर्मलकर और चोवरा, उवरेठी भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, ग्राम सहिया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश चंद्रवंशी, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी और देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और पुनेश्वर रजक।

लीजिए अब सुनिए फिल्म कुर्बानी का गीत, आवाज मनहर उदास और कंचन की, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, पसंद किया आप सभी ने। ग्राम गुढ़ा सोनपुरी से दिलीप पाठक, रेखा पाठक, दीप्ति और दादू, ग्राम गुढ़ा राज से मनोज साहू, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखीलाल वर्मा, नरगोड़ा से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, कोरासी से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई, मोतिमबाई मानिकपुरी, मगलोड से मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, हियांश कुमार चंदन, हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि बघेल, साहिल भारती बघेल, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन, ग्राम डोंगरिया मलाजखंड से मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, याचना और दीपांशु पटले, ग्राम पंचायत बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, दुर्ग से सुनीता यादव, सुमन यादव, डमरू यादव और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।

गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए, आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण और निहार रेस की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत उत्तम सिंह का। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी साथी आरीनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, बाजारपारा बेमितरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रोहांसी पलारी से श्यामलाल, रामदास, युवराज साहू, भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, भूत कछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक मरकाम, ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन, जयंत, कुनिका देवांगन, शांतिनगर भाटापारा से पुनियाबाई नारायण यदु, हथनीपारा भाटापारा से दुलारीबाई चोवाराम वर्मा, पलारी से नीलू देवांगन, संजू देवांगन, ओम देवांगन, वैभव देवांगन, निधि देवांगन, ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांव से वीरेंद्र गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, यहीं से अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, ग्राम पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास, शांति, ऋचा, गायत्री वैष्णव, हरदेव लाल पारा वॉर्डसिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी, कोमल यादव, ग्राम भोईनापार लाटाबोड़ बालो से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई, गंगाराम साहू, चांदनी चौक गंडे पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन, ग्राम मेचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, निखिल और तरुण दीपनाग, ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू, अड़ार नांदघाट से राहुल गोपी वर्मा, ग्राम पंचायत भदरसी से घनाराम सेन, गीतेश सेन, दीपेश और निर्मल सेन।

लीजिए अब सुनिए फिल्म आखिरी रास्ता का गीत, आवाज़ें एस जानकी और मोहम्मद अजीज़ की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाहते हैं आप सभी साथी लोरमी मेघापार से नोहर राम पटेल, भानु पटेल, शोभा तुलाराम, पूना भरत बिसाहू, राधेश्याम पटेल, आप सभी हैं लोरमी मेघापारा से, लोरमी सारिस्ताल उराई कछार से, रमेश पटेल, राहुल देवराज, रामजी, जंगबाई, सीमा, अंजू, अनुष्का पटेल, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से, रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपक, दीपांजलि, दिव्या, दीपांशु, टेकलाल पटेल, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, किकिर मेटा बिल्हारी दुर्ग से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद साहू, सतीबाई और रामकुमार साहू, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, शारदा और जीत वर्मा, ग्राम बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, काजल और पूर्वी साहू, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम, तुषार, वंशिका वर्मा, सिवनी खुद रेंगाखार से मंशाराम पटेल, बुधियाबाई पटेल, भानु प्रताप कुमारी पायल पटेल, ग्राम धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कृष्टि पटवा, गंडे टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, हिमांशी देवांगन, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, शहीद नगर खमतराई से हीरा साहू, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, ग्राम पुरैना खपरी बलौदा बाजार से केशव प्रसाद साहू, अनीता, अनुष्का, उषा साहू, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रचक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, और ग्राम पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर और चंद्रकिरण बंछोर।

इस गीत के साथ ही आज का ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सौम्य रिस्वी का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से।

0: केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। राज्यपाल रमेश डेका से आज लोकभवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने कल नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबीजी रामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में थाना सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया। मामले की जांच जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम दौंजरा के बिझरवार में पारिवारिक जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार पैतृक जमीन पर लगे बांस के पेड़ों की कटाई को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। कहासुनी बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर टंगिया जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकेथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स से होगी। ये वॉकेथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और उसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी और पश्चिम से पूर्व तक बनी एक द्रोणिका के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर, रायगढ़ और जशपुर के कई इलाकों में कल बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों,

0: हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।

0: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
1: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
2: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
1: आजा खेलते हैं।
2: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
3: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
2: अच्छा वो क्या?
3: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
2: हाँ
4: दूसरा क्या?
3: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
1: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज में होताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट।

0: दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: और मुश्किल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ,
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे हो, आगे हो। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: ही नहीं यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे

0: पर दौड़ते तो कभी उस पर स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए, तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इसमें आज सुनिए दोरली गीत। कलाकार हैं कट्टन दुल्ले और उनके साथी। पहले सुनिए कट्टन दुल्ले और साथियों के स्वर में ये दोरली गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार यानी 15 मई 2026 कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। आप अपनी जिज्ञासा

और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर से 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और तीसरा फोन नंबर है 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। ये फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। फोन नंबर से 400-3482, दूसरा फोन नंबर है 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 15 मई यानी कल दिन में 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल यानी शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद लोक सुधा कार्यक्रम में आइए सुने कट्टम दुल्ले और साथियों के स्वर में ये दोरली गीत।

लोकसुधा में लीजिए अब सुनिए ये दोरली गीत कट्टम दुल्ले और साथियों के स्वर में।

ಸೆಲ್ಲಲ್ಲ.

செல்லலாம்.

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं दोरली गीत। कलाकार हैं कट्टम दुल्ले और उनके साथी। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सुनिए दोरली गीत कट्टम दुल्ले और साथियों के स्वर में।

0: आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज आपने सुने दोरली गीत, कलाकार थे कट्टम दुल्ले और साथी। ये आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों का प्रसारण है। 1 बजने को है, आइए अब समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग

0: सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जैग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जैग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म पैडमैन का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था कौसर मुनीर ने, संगीता में त्रिवेदी का था। आइए अब सुने मोहित चौहान की आवाज में कौशल किशोर का लिखा गीत। संगीत विशाल मिश्रा का है, फिल्म का नाम है नोटबुक।

मोहित चौहान और विशाल मिश्रा की आवाजों में फिल्म नोटबुक का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था कौशल किशोर ने, संगीत विशाल मिश्रा का था। चित्रपट संगीत में आइए अब सुनिए एक विलन। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत और संगीत मिथुन का है।

अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एक विलन का ये गीत अभी आपने सुना। गीत और संगीत मिथुन का था। चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुने एक था टाइगर। इस फिल्म का गीत मोहित चौहान और तरन्नम मलिक की आवाज में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत सोहेल सेन का है।

फिल्म एक था टाइगर केस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनेंगे शाम 4 बजे, रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात में सुनिएगा चर्चा, परिवार समाज की सुदृढ़ संस्था। साथ ही आप सुनेंगे क्रम हेलो बिंदिया, जो केंद्रित होगा विश्व परिवार दिवस 2026 पर। दोपहर 2 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट होगा शाम 5 बजे। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन कोट का विषय होगा लक्ष्य के बिना जिंदगी दिशाहीन जिंदगी। क्रम पहुना जोहार में आप सुनेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गोट।

बाद और साथ ही होगा क्रम हमरगांव भी। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे अमर श्रीवास और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे जनक यादव और उनके साथी। चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में चर्चा रबी फसल के कटाई बाद भंडारण प्रबंधन। 7:30 पर किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में डॉक्टर संजीव राय बताएंगे पालतू जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां, सावधानियां और देखभाल। रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक लौट आई खुशियां। लेखक महेश शर्मा और प्रस्तुतकर्ता होंगे सुरेंद्र पाटिल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा सत्य रंजन गंगेले का तबला वादन। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत होगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर भी। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ आप सुनेंगे दोपहर 2:00, शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:10 पर युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में। इसमें आज अपन गोठ का विषय होगा लक्ष्य के बिना जिंदगी दिशाहीन जिंदगी। क्रम पहुना जवाहर में आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गोठ बात सुनिएगा और होगा क्रम हमर गांव भी। रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक लौट आई खुशियां। लेखक महेश शर्मा और प्रस्तुतकर्ता होंगे सुरेंद्र पाटिल। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बिंदिया की श्रोता बहनों को पारोमिता का प्यार भरा नमस्कार। आज बिंदिया में सुनिए हेलो बिंदिया, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि असली मजा तो परिवार के साथ ही आता है। आप श्रोता बहनें हमारे बिंदिया परिवार का एक अटूट हिस्सा हैं, और जब भी आपसे मिलते हैं हमेशा कुछ खास ही लेकर आते हैं। जी हाँ बहनों, 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार को समाज का सुदृढ़ संस्था भी कहा जाता है, क्योंकि समाज में हम जो कुछ भी लेकर आते हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, परंपरा हो, उत्सव हो, सबसे पहले हम उसे अपने परिवार में ही सीखते हैं। तभी तो आप देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा साहित्यकार है, या फिर नृत्यांगना है, या फिर समाज सेवी है, या फिर रसोइया है। अपने परिवार में हम जो कुछ भी देखते हैं वही सीखते हैं। पहले परिवार बड़ा हुआ करता था, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ में रहते थे, इसलिए बच्चों की परवरिश आसानी से हो जाती थी। अगर माँ बाप व्यस्त हैं तो बाकी लोग बच्चों को संभाल लेते थे। ऐसे में बच्चों को अपने परिवार से ही सीखने को मिलता था। लेकिन आजकल एकल परिवार का चलन है और मियां बीवी दोनों को अक्सर कामकाजी होना पड़ता है। ऐसे में बच्चे या तो आया के पास, नहीं तो क्रेच में बड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे या तो मोबाइल से सीखते हैं या फिर अपने दोस्तों से। उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो उन्हें आगे चलकर उनके समाज से जोड़ सके। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज के माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। उनके साथ वक्त बिताएं और वो सब करें जो उनका परिवार उनके साथ करता था। मसलन कहानियां सुनाना, परिवार की

0: कहानियां सुनाना, परिवार के वंशावली के बारे में बच्चों को बताना, अपने परिवार के इतिहास को बताना, या फिर पूजा पाठ साथ में करना, उत्सव मनाना, खेलना, ये भी परिवार की विशिष्टता होती है। बच्चे जब आपको ये सब करता देखेंगे तो सीखेंगे भी। ये सब एक परिवार को जोड़ता है और एक मजबूत संस्था बनाने में सहायक होता है। तो बहनों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्रम की ओर चलते हैं और सुनते हैं हेलो बिंदिया। आज का क्रम विश्व परिवार दिवस पर आधारित है। वाचन है पारोमिता गोस्वामी का, संपादन है बीरभान साहू और प्रस्तुति है रमा शंकर की। परिवार हो जहां खुशियां हैं वहां, साथ हो तो मुट्ठी समान, किसी भी समस्या का हो जाए समाधान, समाज में मिले पहचान, मेरा परिवार महान। बहनों, 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं और हमारे लिए हमारे श्रोतागण भी परिवार समान ही हैं। तो सबसे पहले पारोमिता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं हमारी पहली कॉलर कौन है। नमस्कार, हेलो बिंदिया।
1: नमस्कार, मैं महावीर नगर से बोल रही थी, देवजानी अधिकारी।
0: देवजानी जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मैम?
0: बिल्कुल ठीक हैं। तो ये बताइए देवजानी जी कि क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ, प्लस एक बिजनेस भी करती हूँ, किचन, क्लाउड किचन का है। मैं घर से ही खाने का जैसे ऑर्डर वगैरह लेती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, जैसे कि जी
1: छोटा मोटा घर से काम कर लेती हूँ।
0: वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है, एक परिवार को आप अपना सपोर्ट भी कर रही हैं। तो 15 मई हमारा जो है इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो इस अवसर पर आप से कुछ जानना चाहते हैं कि परिवार का आपके जीवन में क्या स्थान है, मतलब आप परिवार को कैसा समझती हैं, आपके जीवन में परिवार का क्या महत्व है?
1: परिवार तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम परिवार के बिना तो जी नहीं सकते। भाई बहन, माँ बाप हो, पति बच्चे, सब मिला के एक परिवार होता है, जो अपने खुशियों में भी परिवार ही आते हैं, दुख में भी हमें परिवार ही साथ देते हैं। तो एक समाज में रहने के लिए परिवार का तो रहना बहुत, उसके साथ दोस्त लोग भी, वो भी एक परिवार हम लोग का, आस पास पड़ोस के, तो सब मिलके ही हम लोग का, सबको मिला के ही एक परिवार होता है। तो उसके और खुद का जो माँ बाप भाई बहन हो तो है ही, बच्चे, उनके उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना हम आगे तो चल ही नहीं सकते।
0: एकदम सही कह रहे हैं। तो आप जो अपना बिजनेस कर रही हैं घर से, उसमें भी आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिल ही रहा होगा?
1: हाँ हाँ जी जी, बहुत। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनका भी जब रहते हैं तो बहुत हेल्प करते, मदद करते। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत मदद करते, मेरा बेटा, सब मिल के मदद करते करके मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, कर लेती हूँ इतना। इन लोगों का प्यार सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी अकेले।
0: वाह, सही में ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा परिवार आपको इस काम के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो देवजानी जी, जैसे कि हम लोग अपने इस कार्यक्रम में गीत की फरमाइश लेते हैं आपसे, तो आज आप कौन सा गीत जो है सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं 1978 का गोलमाल मूवी का आने वाला पल जाने वाला है, तो इस मूवी का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: नमस्कार, हेलो बिंदिया।
1: हेलो,
0: हाँ जी।
1: हाँ जी, मैं रुमा सेन गुप्ता बोल रही हूँ, ये आकाशवाणी रायपुर से है।
0: जी जी, हेलो बिंदिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है रुमा जी। तो क्या करती हैं रुमा जी आप?
1: मैं एक सिंगर हूँ और मैं गाने को बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, दिल से गाना चाहती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ।
0: अरे वाह, आप सिंगर हैं तो कुछ गुनगुना दीजिए आज हमारे श्रोता के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बताइए कैसा मैंने सुनना चाहेंगे आप?
0: अभी क्या है कि 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय
1: जी,
0: परिवार दिवस है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो
1: जी।
0: जैसे आप संयुक्त परिवार में रहती हैं या एकल परिवार में?
1: संयुक्ति बोलिए मैम।
0: अच्छा, तो ज्वाइंट फैमिली
1: जी
0: में जब आप रहती हैं तो परिवार से मतलब किस प्रकार का आपको लाभ मिलता है?
1: एक दूसरे का सहयोग मिलता है हर चीज में ही, दुख में हो या सुख में, बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, तो जैसे कि अभी आपने बताया रुमा जी कि आप एक गायिका हैं, तो मुझे
1: जी
0: आप एक अपने परिवार के लिए, जैसे कि आज के कार्यक्रम में हम लोग गीत की फरमाइश लेते हैं, तो अपने
1: जी
0: परिवार के लिए अगर आप कोई गीत गुनगुनाना चाहती हैं तो एक दो लाइन सुना दीजिए।
1: आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी मम्मी के ऊपर ही ये गाना गाऊंगी, गाना चाहूंगी।
0: जी
1: एक बहुत ही प्यारा गीत है, लता लता जी ने गाया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के उसमें वो शब्द है,
0: जी
1: तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह,
1: जी
0: दो
1: हाँ,
0: एक लाइन दो लाइन
1: दो
0: सुना भी दीजिए।
1: तो कितनी

0: हेलो बिंदिया, में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं मैम?
1: मैं हेमलता देवांगन बोल रही हूँ, कांकेर से।
0: हेमलता जी कांकेर से बोल रही हैं आप?
1: जी।
0: हेमलता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ में सिलाई भी करती हूँ।
0: अरे वाह, तो सिलाई का काम आप घर से ही करती हैं या कहीं जाती हैं करने के लिए?
1: नहीं, घर पे ही आते हैं ग्राहक, उनका सिलती हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, तो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ परिवार के ऊपर। आप एकल परिवार में रहती हैं, संयुक्त परिवार में?
1: संयुक्त ही है।
0: अच्छा,
1: माँ बाबू जी हैं।
0: हाँ हाँ, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जैसे कि हम जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इसमें हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश के लिए संयुक्त परिवार कैसे अच्छा रहता है, थोड़ा बताएंगे?
1: इसमें क्या है, अकेले रहने में जो परिवार में जो मिलता है, मतलब कहने का मतलब है जो आभार, साथ में रहने के लिए सास ससुर सब रहते हैं ना, तो बच्चे लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं अपने साथ रहने के लिए, प्रेमिकता मिलता है उनको।
0: तो जैसे कि आपने बताया कि परिवार जब साथ में रहता है तो बच्चों को काफी समय मिल जाता है, तो जैसे कि आप सिलाई का काम करती हैं तो कैसे फिर मैनेज कर पाती हैं अपना समय बच्चों के साथ?
1: ऐसे हो जाता है, मैं कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालती हूँ, थोड़ा बहुत सिलती हूँ, फिर उनको मतलब कुछ भी होमवर्क कराना है। मेरा बच्चा अभी छोटा है,
0: अच्छा
1: 3 साल का है,
0: अच्छा,
1: अभी स्कूल में अभी एडमिशन की हूँ, तो उनके लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ, थोड़ा सा उनके साथ खेलना, कुछ बनाना,
0: अरे वाह,
1: पेंटिंग वगैरह करना।
0: जी, तो जैसे कि हम अपने इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: लता मंगेशकर जी का गाना सुना दीजिए, कोई भी अच्छा प्यारा सा।
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी आपका।

0: हेलो, बिंदिया में आपका स्वागत है।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं मैम?
1: मैं गिरा से बोल रही हूँ, रुक्मिणी निषाद।
0: अच्छा रुक्मिणी जी, क्या करती हैं आप?
1: सिलाई करती हूँ दीदी।
0: अच्छा, क्या क्या सिल लेती हैं बताएंगी जरा?
1: ब्लाउज, सूट,
0: अच्छा
1: ड्रेस।
0: अरे वाह, तो अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो
1: हाँ
0: कहीं जाना हो रहा है आपका?
1: कहाँ?
0: अपने मायके घर?
1: मैं मायके में दीदी अभी।
0: अच्छा मायके में ही हैं आप?
1: हाँ अभी रिश्ता जुड़ने वाला है, शादी
0: अच्छा रिश्ता
1: से
0: आपका होने
1: जाऊंगी।
0: वाला है, अरे बधाई हो। तो मुझे एक बात बताइए,
1: धन्यवाद।
0: परिवार के साथ रह करके अभी
1: हाँ
0: आप दूसरे परिवार में जाने वाली हैं, तो किस प्रकार का
1: हाँ
0: परिवार आप अपने लिए चाह रही हैं, मतलब सोच रही हैं जीवन साथी के साथ?
1: कैसे बताऊं दीदी,
0: नहीं जैसे बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हो या
1: अपने माँ
0: एकल
1: बाप
0: परिवार हो?
1: जैसा हो,
0: हाँ
1: सबको लाड़ प्यार से रखने वाला।
0: हाँ अच्छा, भरपूर प्यार मिले आपको, ऐसा आप अपना ससुराल चाह
1: हाँ
0: रही हैं
1: हाँ
0: जी। और अपने आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे भैया हैं, टीचर है, और भाभी हैं, और दो मेरे भतीजी, माँ बाबू जी,
0: अच्छा, तो ये
1: और दो
0: बताइए,
1: और बहन।
0: बहन भी हैं?
1: हाँ दो बहन हैं जो उड़ीसा में गई है,
0: हाँ
1: और एक दीदी दमका दी गई है।
0: अच्छा, तो रुक्मिणी जी जैसे 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते
1: हाँ
0: हैं, तो
1: हाँ
0: आप अपने परिवार के साथ किस प्रकार से समय बिताना पसंद करती हैं, थोड़ा बताएंगी हमारे श्रोताओं को?
1: खुशी के साथ, अपने परिवार के साथ।
0: हाँ, पिकनिक वगैरह जाती हैं क्या?
1: नहीं दीदी नहीं जाते हैं, क्या
0: पिकनिक नहीं जाती हैं?
1: है घर नहीं
0: हाँ
1: जाते हैं घर में ना, माँ बाबू जी अब बहुत उम्र के हो गए हैं, तो उन लोगों को अभी घर से अकेला छोड़ते ही नहीं बनते।
0: वाह, ये भी सच में बहुत बड़ा एक काम है, और मैं कहूंगी कि
1: हाँ
0: अगर परिवार के सदस्य ऐसे हों जो अपने वृद्ध माता
1: हाँ
0: पिता को समय दे पाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप कौन सा गीत
1: हाँ
0: सुनना पसंद करेंगी?
1: महबूब की मेहंदी।
0: आहा, महबूब की मेहंदी, कौन सा गीत उसमें से?
1: हाँ जो लग जाती है महबूब की मेहंदी, हाथों वाला।

0: हेलो बिंदिया में आपका स्वागत है
1: जी। थैंक यू। मैं शिप्रा हूँ, रायपुर से बोल रही हूँ।
0: शिप्रा जी रायपुर से बोल रही हैं आप?
1: जी
0: जी। शिप्रा जी क्या करती हैं आप?
1: मैं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी हूँ कृषि विभाग से। मेरी उम्र 72 साल चल रही है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, तो एक सवाल आपसे करना चाहेंगे इसी विषय पे। परिवार जो है वो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक को किस प्रकार मतलब महत्व बढ़ाने में किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, आप हमें हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे?
1: परिवार से ही तो किसी भी बच्चे का जो परवरिश है परिवार से ही शुरू होता है। जैसा उसको घर में संस्कृति संस्कार मिलेंगे वो फिर उससे समाज का निर्माण करेगा, उससे वो समाज का निर्माण यदि अच्छा होगा तो उससे राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। तो परिवार से ही तो शुरू हो, एक पौधा जो है वो वृक्ष के रूप में फलता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार को परवरिश जो है वो पौधा छोटा सा वहीं से पनपता है। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। तो जैसे आप जॉब करती थीं और अपने परिवार में आप अपने बच्चों को भी जरूर अच्छे से संभालती होंगी, तो किस प्रकार से बैलेंस करती थीं ये थोड़ा बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ, नहीं, उसमें तो माँ की भूमिका बहुत ही मुख्य होती है, क्योंकि अभी तो फिर भी लोग नौकर चाकर के भरोसे फिर भी कर सकते थे, लेकिन हमारे समय में तो वो सुविधा भी नहीं थी। तो अकेले बच्चों का परवरिश करना, उनका पढ़ाई लिखाई, मैं उसको टाइम एक एक मैंने थोड़े थोड़े समय में सबको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने बच्चों को भी समय दिया। मैं ऑफिस में भी अच्छे उसमें थी, शाखा में मतलब मैं कार्यरत रही।
0: अच्छा।
1: मैं ऑफिस भी मेरा बहुत अच्छा चलता था।
0: जी जी।
1: घर आकर मैं घर का भी सब काम और टाइम पे सब मैं अपने बच्चों को उसी तरह से, और मेरे ईश्वर की दया से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही सबल और सक्षम है आज के समय।
0: वाह, ये सच में।
1: इसीलिए अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैंने नौकरी करते हुए अपने बच्चों को इतने अच्छे तरह से परवरिश दे पाया।
0: सही में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही आप जैसे नारियों की, कि वक्त जो है जैसे जैसे भी बीतता जाता है लेकिन परवरिश में जो है कभी कोई कमी नहीं आती है और अपने काम पे भी जो है वैसा ही
1: जरूरी है परवरिश।
0: जी जी जी,
1: अनुशासन रहता है ना उसमें। हाँ। बच्चे भी जानते हैं कि ये कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है। बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं, उनको तो हमको ढालना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे हमारे इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को गीत सुनाते हैं, तो आप अपनी फरमाइश का कोई गीत हमें बताइए जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएं।
1: हाँ, अभी पिछले दिनों हम लोग ने मातृ दिवस मनाया।
0: जी,
1: लेकिन मातृ दिवस तो कोई एक दिन के लिए नहीं होता। मातृ दिवस तो वो तो जब तक माँ माने बच्चों के लिए वो माँ, चाहे बूढ़ी भी हो जाए फिर भी वो माँ ही होती है।
0: जी जी, और किसी तो भी दिन मातृ दिवस
1: मना
0: सकते हैं।
1: मैं स्थान देती हूँ जिसने हमको सबसे पहले गुरु बताया कि ये आपके गुरु हैं। गुरु ने हमको बताया कि ईश्वर कौन है। तो भाई मैं तो यही माँ को ही पहला अपना सब कुछ मानती हूँ।
0: जी,
1: और मैं नहीं मानती कि माँ के लिए सिर्फ एक ही दिवस होता है मातृ दिवस।
0: बिल्कुल,
1: माँ का दिन तो हर दिन 24 घंटे 365 दिन ही होता है।
0: जी जी जी।
1: तो मैं हमेशा माँ को याद करके ये वाला गाना मैं सुनना चाहती हूँ।
0: जी जी जी,
1: छोटा भाई फिल्म का।
0: जी,
1: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, क्योंकि अभी तो मेरी माँ नहीं है, शायद इसलिए बहुत याद आती है उनकी।
0: जी,
1: तो मैं ये वाला गाना सुनना
0: जी। तो आप ही के फरमाइश पर ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिप्रा जी।

और बहनों, इसी के साथ अब हेलो बिंदिया में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, यही हमारी दिली तमन्ना रहती है। और परिवार हमें एकता, खुशहाली और समाज में एक पहचान देता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो विश्व परिवार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पारोमिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे हेलो बिंदिया, और अब अपने आपसे अब विदा लेने का समय आ चुका है। खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गोठ सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारियों को चंदा
1: और सूरज के तरफ ले
0: जय बिहान।
1: ये काय कर सा चंदा,
2: क्या हुआ दीदी?
1: ओहो, व्हाट्सएप या दिगर माध्यम ले आए कोनो भी ऐप ला इंस्टॉल नहीं करना चाहिए।
2: नहीं भूली हूँ दीदी, ठग नई नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों को धोखा दे रहे हैं।
1: हाँ?
2: और खासकर महिलाओं को और स्व सहायता समूहों की दीदियों को निशाना बना रहे हैं।
1: हो काकी फोन आ रही गई।
2: हाँ?
1: हाँ? वो फोन कर रही है खुदला बैंक अधिकारी बताई।
2: अच्छा,
1: वो बता के भरोसा जीते को कोशिश करत रही।
2: इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक और डिजिटल रूप से भी जागरूक किया जा रहा है।
1: तो दीदी हो, आज हमारे दीदी के गोट कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार ले जानकारी देवर पधारे हमें श्री कवि गुप्ता जी, AIG टेक्निकल सर्विस छत्तीसगढ़ शासन।
2: जय बिहान सर जी, आपका स्वागत है।
3: सभी दीदियों को जय विहान।
2: सर, जैसे आज हम लोग साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम जो है वो किस प्रकार के होते हैं?
3: देखिए दीदी, वैसे तो साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम रिपोर्ट करते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं, तो इस दृष्टि से इसे तीन प्रकार से समझा जा सकता है
2: जी।
3: पहले श्रेणी में जो भी साइबर अपराध महिला एवं बच्चों के साथ होते हैं वो साइबर क्राइम आते हैं। दूसरा, ऐसे मामले जहाँ पे पैसे का नुकसान हुआ है या फिर ऑनलाइन वित्तीय धोखा।

0: भी जिसे बोला जाता है
1: जी।
0: और तीसरा अन्य सभी प्रकार के साइबर क्राइम इस श्रेणी में रखे जाते हैं। चूंकि ऑनलाइन जगत में महिलाएं एवं बच्चों को काफी संवेदनशील माना गया है, इसीलिए इनसे संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं इसे विशेष कैटेगरी में रखा गया है।
1: अच्छा।
0: इसमें महिला एवं बच्चे संबंधित कोई अश्लील सामग्री का प्रसारण या ऑनलाइन उत्पीड़न संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी तरीके से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ऐसे मामले आते हैं जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन ठगी के उपरांत पैसे का नुकसान हुआ हो।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम है, जैसे हैकिंग है या सोशल मीडिया संबंधित साइबर क्राइम है, इसे अन्य साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों प्रकार के साइबर अपराध की शिकायत आप साइबर क्राइम पोर्टल यानी cybercrime cybercrime.gov.in यहाँ पे इस पोर्टल में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने एक प्रकार बताया कि वित्तीय अपराध, तो वर्तमान में किस प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय अपराध हो रहे हैं?
0: दीदी देखिए, ऐसे तो ये जो वित्तीय अपराध है इसके तरीके लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस प्रकार के वित्तीय अपराध चल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी साझा करें।
1: जरूर।
0: इसमें किसी व्यक्ति के जान पहचान या रिश्तेदार बनकर या सरकारी किसी योजना का लाभ देने के नाम पे किसी व्यक्ति को कोई एपीके फाइल, ओटीपी या लिंक भेज करके भी ठगी की जा रही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को निवेश में ज्यादा पैसे का लालच देकर या ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन नौकरी या शॉपिंग के नाम पर भी ठगी काफी की जा रही है।
2: जी, तो सर जी, आजकल वित्तीय धोखाधड़ी मामला तो बहुत बड़ा था वह, तो का हमन ला ऑनलाइन बैंकिंग, UPI या फोन पे जैसे डिजिटल माध्यम के उपयोग बंद कर देना चाहिए का?
0: देखिए सुरु दीदी, ये सही है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है
1: जी।
0: लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें डर कर ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग नहीं करना चाहिए। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अज्ञानता, लालच, डर और लापरवाही ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन जगत में यदि कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कभी भी किसी प्रकार के ऑनलाइन ठगी के शिकार नहीं होंगे और डिजिटल बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं।
2: अच्छा।
0: जैसे OTP पिन कभी शेयर ना करें, किसी भी अनावश्यक लिंक पर क्लिक नहीं करें।
1: अच्छा।
0: फोन पर कोई भी अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें, फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करें। याद रखें कि ऑनलाइन दुनिया में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह फोन के माध्यम से यदि कोई आपको अनावश्यक डराकर या धमका कर पैसा मांगता है,
1: हाँ।
0: तो ऐसे व्यक्तियों के बातों में बिल्कुल ना आए। अपना मोबाइल हमेशा अपडेट रखें और शासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई साइबर अपराध के शिकार नहीं बनेंगे।
1: तो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उनसे बचने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए दीदी, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनसे आजकल देखा गया है कि शासकीय योजनाओं का लाभ देकर ठगी की जा रही है। शासन के विभिन्न योजना जैसे जननी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सिलाई मशीन योजना या शिशु के जन्म में सरकार द्वारा सहायता दी जाती है उसका लाभ देने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। ऑनलाइन जगत में अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना व निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है, अतः मैं सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना निजी कोई भी जानकारी, फोटो या वीडियो ऑनलाइन जगत में साझा करने से बचे।
2: सर जी, कहूँ कोनो संग साइबर अपराध हो जाते तो ओला का उपाय करना चाहिए तेन ना बताते हो?
0: दीदी, सबसे जरूरी बात है यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी दीदी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध हुआ है तो तुरंत एक नंबर है 1930। सभी दीदियों से अनुरोध है कि ये नंबर ला नोट कर लें, 1930। ये सरकार द्वारा चलाए गए एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें डायल करके अपना शिकायत दर्ज करें।
1: अच्छा।
0: या तो फिर इसके अलावा दूसरा विकल्प है, नजदीकी साइबर पुलिस थाना चले जाएं या फिर साइबर क्राइम पोर्टल में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ दीदी कि ठगी के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी के केस हुई से तो ठगी के बाद यदि तुरंत

0: बिना समय गवाए अगर अपन रिपोर्ट लाते हैं दर्ज करवे तो पैसा मिले के संभावना प्रबल हो जाते है। इसीलिए बिना समय गवाए अपना रिपोर्ट अपनी शिकायत 1930 नजदीकी थाना या साइबर क्राइम पोर्टल में दर्ज कराएं। यदि आपको कोई भी आपका निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो ऐसी शिकायतों को खास तौर पे साइबर क्राइम पोर्टल में महिला एवं बच्चे संबंधित शिकायत की का सेक्शन है, वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने के लिए दो विकल्प है, आप नामजद अपना नाम दे करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या नाम बताए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों पे जब पुलिस कार्रवाई करती है तो महिला की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है।
1: सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है, अपने मोबाइल के माध्यम से आप 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, लिंक के माध्यम से ठगी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग, ऐसे अपराधों से बचने के लिए जो डिजिटल जानकारियां, सावधानियां और कानून के संबंध में आपने विस्तार से जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुने ना दीदी हो, सतर्कता और सही जानकारी ले साइबर अपराध ले बचे जा सकते। तो दीदी हो, सजग रहो और जागरूक रहो।
3: सजग

0: वर्तमान में समूह की महिलाएं आजीविका संवर्धन हेतु विविध गतिविधियां संचालित कर लखपति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसित हो रही हैं। ऐसे में दीदियों द्वारा वित्तीय सहायता और लेन देन अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।
1: सही कहे चंदा, आज डिजिटल जमाना में मोबाइल और इंटरनेट ले बैंकिंग, पैसा के लेन देन और सरकारी योजना मन के फायदा सरलता ले मिल जाते। अब गवई गाँव मन में घलो माई लॉगिन मन और स्व सहायता समूह के सदस्य मन मोबाइल के माध्यम ले बैंकिंग सेवा के उपयोग करत हवे।
0: ऐसे में डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता के साथ साइबर सुरक्षा जरूरी हो जाती है। तो आइए हमारी जागरूक बीसी सखी दीदी श्रीमती गुलची सिदार जय माँ अम्बे स्व सहायता समूह ग्राम अमलडीहा जिला शक्ति से मिलते हैं।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
1: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
3: मैं 2019 में समूह से जुड़े ओकर बाद मोला बीसी सखी के रूप में चयन किया गिस। मोला बैंकिंग समावेशी के ट्रेनिंग दिया गिस, जिन में मैं एक सप्ताह आरसीटी में ट्रेनिंग लेके आईआईबीएफ के एग्जाम फाइट करें और उसमें उत्तीर्ण रहे। आज वही सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं भारतीय स्टेट बैंक के कियोस्क शाखा ले हूं और साथ में मोर सीएससी सेंटर भी है जिन में मैं ई डिस्ट्रिक्ट भी चलाता हूं और आईआरसीटी रेलवे टिकट बुकिंग ऑनलाइन के सारा काम मैं कर लेता हूं।
0: तो दीदी जैसे बैंकिंग के जिन फ्रॉड होते ओखर ले बचे बर आप मन हमर दीदी मनला कैसे सिखाते हो?
3: के लिए बैंकिंग साक्षरता अभियान चलाया जाता है जिसमें हम लोग कैंप लगाते हैं गांव में और दीदियों को बताते हैं अनजान व्यक्ति कोई ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल भी मत बताइए। यदि आप ओटीपी बता भी देते हैं तो तुरंत तो आप अपने लिंक शाखा में जाइए, अपने खाते का जो लेन देन है वो तुरंत निष्क्रिय कर दीजिए। और जैसे मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, तो उसका पिन कोड चेंज कर लीजिए या तो बैंकिंग ऐप से है उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। कई लोगों को कॉल आता है कि आपको लोन दिया जाएगा जिसके लिए आपको 1500-1000 रुपया आपको हमें देना पड़ेगा करके, जो बैंक आरबीआई के पास पंजीकृत है आप उन्हीं से लीजिए।
0: दीदी दीदी के गोठ में हमारी दीदियां हमसे प्रश्न पूछती हैं टोल फ्री नंबर पर फोन करके। ये जो प्रश्न है ये है पलारी कला की पुष्पा साहू जी का। इन्होंने सवाल पूछा है कि महतारी वंदन का पैसा मिलता है जिसके लिए महिलाओं के मोबाइल पर ओटीपी आता है, कभी कभी फ्रॉड ओटीपी भी आता है, कभी एपीके फाइल्स आती हैं, तो इनमें से सही और गलत की पहचान कैसे करें और ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है?
3: महतारी वंदन का जो पैसा है उसके लिए कोई ओटीपी नहीं आता किसी भी प्रकार से।
0: अच्छा।
3: महतारी वंदन का पैसा सीधा आपके खाते में डाल दिया जाता है और यदि किसी प्रकार का मैसेज आए तो आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 1000 रुपए जमा कर दिया है करके। और जैसे एपीके आप टच कर लेते हैं तो

0: तो उसके लिए यह है कि आप तुरंत अपने साइबर सेल को शिकायत करें 1930 पर कॉल करके बताएं और एक घंटा के लिए तो फिलहाल मोबाइल बंद ही कर दीजिए। और पब्लिक प्लेस में जो वाईफाई होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कैफे में हो गया, उसका वाईफाई कनेक्ट करके आप कभी भी बैंकिंग लेन देन ना करें।
1: दीदी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, जागरूक किया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुना था चंदा?
1: हाँ दीदी।
2: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम ले स्व सहायता समूह के दीदी मन आर्थिक रूप से सशक्त बनत दीदी मन डिजिटल रूप ले भी जागरूक हवें।
1: स्व सहायता समूह की दीदियों के स्वरोजगार को बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से नया आयाम मिला है।
2: हो
1: जानती हो ऐसे में वे कैसे साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ रही है?
2: कैसे
1: आइए जानते हैं। आप हैं ग्राम कंडोरा धनी टोला जिला जशपुर से श्रीमती सुमन एक्का।
3: जय बिहान दीदी।
0: जय बिहान दीदी।
2: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
0: मैं सक्रिय महिला का काम 2019 से करती थी। बिहान से जुड़कर FLCRP का प्रशिक्षण लेकर ग्राम संगठन मीटिंग होते हैं, मैं उसमें जाती हूँ और दीदियों को बैठा कर मैं वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूँ, कैंप लगाते हैं।
1: दीदी बैंकिंग जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में कैसे जानकारी देती हैं?
0: उदाहरण को लेके मैं लोगों को बताती हूँ। मेरे से भी खुद ऐसी हो गया है, मेरे हस्बैंड से ही। उनको एक फ्रॉड कॉल आए थे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके KYC अपडेट नहीं है इसीलिए मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, OTP को आप बताना करके बोले। तो मेरे हस्बैंड को लगे कि सही में बैंक वाले हैं, फिर वो अपने डिटेल रूप से बताना स्टार्ट कर दिया। फिर OTP आया, उन लोग वो दो बार बता दिए OTP को, फिर उनका पैसा 9,700 रुपया ले गए। साइबर क्राइम के बारे में मेरी दीदी का ही उदाहरण दे दे कि मैं अपने गांव में जब जाती हूँ तो उनको बताती हूँ। मेरे परिवार में ही ऐसे कॉल आ गया था, मेरे दीदी के बेटे को गिरफ्तार कर लिए हैं ऐसा करके, तो मैं उस समय भी मैं सामने ही खड़ी थी, तो मेरे को जानकारी था, मैं इसके बारे में बार बार ट्रेनिंग ले चुकी थी। तो मैं अपनी दीदी को मैं मना करी कि ये फ्रॉड, ये साइबर क्राइम वाले हैं, आप इनसे बचिए, यही जागरूक करती हूँ।
2: दीदी जागरूकता अभियान के बारे में बताया, एक खातिर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: तो सुरता रखो दीदी हो, OTP और पासवर्ड कोनोला नहीं बताना है।
1: किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प बंद रखें और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें। पहले उसे वेरीफाई करें। व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आए किसी भी ऐप को इंस्टॉल न करें। रोजाना अपने ट्रांजेक्शन की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें।
2: जागरूकता और सुरक्षा के संग तरक्की की ये यात्रा बढ़त रहे, यही कामना संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के नवा कहानी लेके फिर मिलवो। तब तक बर देव विदा। जय जोहार। जय
4: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता VD सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ S. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से

0: प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा से बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान,

0: जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ YIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: जावेद अली की आवाज़ में यह था जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीत यार रहमान का था, फिल्म थी जोधा अकबर।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

अंग्रेजी में कहते हैं। इस फिल्म का गीत सुनिए, शान और वैशाली मढ़े की आवाजों में साथ दिया है प्रवीण कुमार ने। गीत लिखा है योगेश ने, संगीत प्रवीण कुमार का है।

0: शान वैशाली मढ़े और प्रवीण कुमार की आवाज़ों में योगेश का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत प्रवीण कुमार का था। फिल्म थी अंग्रेजी में कहते हैं।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वो ऐसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

अमाल मलिक, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना कुमार का लिखा गीत। संगीत अमाल मलिक का था, फिल्म थी एयरलिफ्ट। आइए अब सुनें एक पहेली लीला। इस फिल्म का गीत तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजूमदार की आवाज़ों में। गीत लिखा है कुमार और उज़ैर जायसवाल ने।

एक पहेली लीला। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना तुलसी कुमार, आलम खान और ऐश्वर्या मजूमदार की आवाज़ों में। गीत लिखा था कुमार ने, संगीत उज़ैर जायसवाल का था। चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार यानी 15 मई 2026 कल प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा फसलों में समेकित कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के लाभ। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, दूसरा नंबर है 4003483 और तीसरा नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 15 मई 2026 को यानी कल 11:30 से 12 बजे तक दिन में की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही यानी कल ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आइए अब आपको सुनवाए चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जय हो से। आवाजें शान और श्रेया घोषाल की हैं, साथ दिया है शबाब साबरी ने। गीत लिखा है समीर अंजान ने, संगीत साजिद वाजिद का है।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 4 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा में कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स सुनवाने इसी मीटर पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति तथा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान

0: एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. India has asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS Foreign Ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al Marar and Ronald Lamola from South Africa, among others. India and the UAE are set to take their already robust partnership to the next level as Prime Minister Narendra Modi meets UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi tomorrow. The visit

0: जिंदगी उस बेहतरीन किताब की तरह है जिसमें कई खूबसूरत पन्ने हैं और उस किताब को पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, कहीं खुशी होती है और कहीं तकलीफों से भरा सफर और कहीं कुछ इतना अच्छा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी को खुश होकर बिताना चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और हम सबको पता है कि हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम वर्ष, आकाशवाणी के संग यादों के रंग। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका एक अनोखा रिश्ता रहा है रेडियो से। करीब 40-45 साल का जो वक्त है मैम ने रेडियो को दिया, और मैं आपका तारुफ करवा दूं कि मैम हमारे साथ हैं ललिता चतुर्वेदी मैम हैं, जो कि पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका और वक्ता। मैम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद नसरीन
0: जी। मैम तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा जो वक्त आपने रेडियो के साथ गुजारा है वो कैसा रहा और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: सबसे पहले तो मैं सभी एफएम गोल्ड के श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
0: जी,
1: और एक शेर सुनाना चाहती हूँ। फिर नजर में फूल महके जी, दिल में फिर शमय जली, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज्म में आने का नाम।
0: बहुत खूब।
1: और इस बज्म में आके किसको बुरा लगा?

0: जाता है, जहां आपके जीवन के, आप तो 45 साल कह रही हैं, मैं 50 साल का अपना अनुभव बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरा पहला ब्रॉडकास्ट 2026 आज चल रहा है, 1976 में हुआ था।
1: बहुत खूब।
0: जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, स्टूडेंट थी, और शुरुआत में वार्ता के माध्यम से मैंने रेडियो से शुरुआत की। हालांकि रेडियो की शुरुआत तो बहुत बचपन में ही हो गई थी। मेरे फादर बहुत रेडियो सुना करते थे और उनको क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था। तो सुबह जो समाचार आते थे 8 से 8:15, उसके बाद 8:15 से 9 बजे तक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता, तो वो नियमित सुना करते थे। संडे के दिन वो कार्यक्रम नहीं आता था, रविवार को उसकी जगह बच्चों का कार्यक्रम आता था 8:15 से 9 बजे तक, जयपुर से जो रिले होता था मुकुल कार्यक्रम, तो वो हमें कहते थे इसको सुनो, और हम सुनते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, एक अनोखी सी दुनिया लगती थी वो।
1: तो कहते हैं कि वो रेडियो बचपन से ही रग रग में पहले से ही कायम था, उसके लिए ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बिल्कुल।
1: और वो शौक है और वो हमें फिर यहाँ तक ले आया, ये चीज है।
0: हाँ, रेडियो मुझे खींच के लाया। मैं रेडियो तक नहीं खींची, यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा, रेडियो ही मुझे खींच के ले आया।
1: बहुत खूब। मैम, बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कि बहुत सा प्यारा सा गीत है किनारा फिल्म से, इसको सुन लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें होंगी।

0: जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि आकाशवाणी में या रेडियो से जुड़ी किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ आवाज का ही कमाल होता है। और यकीनन बिना देखे ये कैसे हो पाता था मैम कि बिना देखे रेडियो के पीछे कौन है, आवाज के जरिए कभी मिल जाए तो पहचान लेते थे लोग?
1: बहुत बहुत ऐसा कई मर्तबा हुआ
0: जी जी,
1: क्योंकि आप अनाउंसर हो और आप कार्यक्रम कर रहे हो तो नाम तो उस जमाने में हम बोला नहीं करते थे
0: जी, जी।
1: पर कहीं आवाज का लहजा, उसका ठहराव, कहीं भी जाते थे तो कोई ना कोई पकड़ ही लेता था
0: कि ये रेडियो के पीछे जो आवाज है ये यहाँ पे सामने। बिल्कुल जी। तो ऐसी और कौन सी यादें हैं जो लगता है कि हमें मतलब वो पीछे वाले एरा में खींच के लेकर जाती हैं, और वो बहुत खूबसूरत सा दौर था जब हमें लगा कि भाई ये रेडियो है, एक कमाल की चीज है, और कितना प्यार करते थे लोग जब मिलते थे तो।
1: असल में देखो, मैंने तो विज्ञान की पढ़ाई की
0: जी,
1: एमएससी किया मैंने जूलॉजी में। मेरी बड़ी सिस्टर इंग्लिश की लेक्चरर थी तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी लेक्चरर बन जाऊं।
0: अच्छा।
1: और उस दौर में संजोग ऐसा बैठा कि मैं डिबेटर बहुत अच्छी थी
0: जी,
1: और अपने शहर में मेरा बहुत नाम था
0: जी जी।
1: शहर के तमाम कॉलेज में कहीं भी डिबेट का कोई कॉम्पिटिशन हो तो मैं फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी भी लाती थी
0: जी।
1: तो रेडियो के लोग कवरेज के लिए आते थे तो उन्होंने देखा बार बार यही लड़की हरे नाम ले जा रही है
0: जी।
1: तो जो कवरेज करने आते थे उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की बहुत बोलती है, अच्छा बोलती है
0: जी जी।
1: और उसका उच्चारण बहुत शुद्ध है, क्योंकि रेडियो में बुलाकर अगर किसी को कुछ काम देते थे तो उच्चारण भी उसका
0: बहुत इम्पोर्टेंट चीज
1: सुधारा जाता था
0: जी जी।
1: तो प्रोड्यूसर बोले अच्छा उसको लेके आओ। तो संजोग से मेरे ही कॉलेज में था एक फंक्शन और उसका मैं संचालन कर रही थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटा शहर है और बहुत पारंपरिक लोग रहते थे वहाँ पे, रेडियो का इतना ग्लैमर नहीं था
0: जी जी।
1: कि लोग रेडियो में जाएं या दूरदर्शन में जाएं
0: जी।
1: तो वो जो थे कवरेज करने वाले अनाउंसर थे उन्होंने मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा इस लड़की को हम अपने रेडियो में ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाएं? उन्होंने कहा कि भाई इसके पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। बोले हम इससे बात करें? बोले कर लीजिए। उन्होंने पूछा कहाँ रहती हो, किस जगह रहती हो? तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम से हमारी लेन का नाम था
0: जी।
1: उसमें दो तीन ही बड़े बड़े मकान थे, उसमें एक मेरा भी था
0: जी।
1: और एक मंदिर था, एक उसके बाद उनका था। मैंने बताया कि मैं वहाँ रहती हूँ उनके गली में। तो बोले कि वहाँ तो मेरे एक मित्र भी रहते हैं। तो वो संजोग से उन्होंने जो नाम लिया वो मेरे पापा का निकला। मैंने कहा हाँ वो तो मेरे ही पिताजी हैं। तो बोले कि अच्छा तुम उनकी बेटी हो, तो फिर तुम रेडियो आओ, मैं तुम्हारे पापा से शाम को बात कर लूंगा
0: जी। ये हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं?
1: ये बीकानेर।
0: बीकानेर
1: एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, राजस्थान का। बहुत खूबसूरत सा,
0: बहुत रेत में शहर
1: जुड़ा हुआ जी। तो जी उन्होंने बात किया और कि भाई उसको भेज दो रेडियो। और अगले दिन मैं रेडियो गई, वहाँ प्रोड्यूसर मिले, बोले हाँ हाँ तुम तो बहुत डिबेट करती हो,

0: को एक वार्ता लिखनी है तुमको जी। हमने कहा अच्छा, उन्होंने पहली वार्ता दी और वो मैंने थोड़ी सी अपने से लिखी, थोड़ी पापा से मदद ली, थोड़ी बड़ी दीदी से मदद ली, और वो जब ब्रॉडकास्ट हुई तो उनको बहुत पसंद आया मेरा बोलना। और वहां पर वो एडिट भी करते थे साथ में, मैन्युअली रिकॉर्डिंग होती थी उसको मैन्युअली करते थे, अब तो बहुत आसान हो गया है कंप्यूटर पे एडिटिंग करना। तो मैंने उनको देखा वो एडिट कर रहे हैं, फटाफट आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं, मेरे को ये बड़ी रोमांचक बात लगी जी। मैंने कहा आप ये कैसे कर लेते हैं? बोले ऐसे ही कर लेते हैं, सीख गए। तो जब जब मैं रेडियो जाती थी मैं एडिटिंग जरूर देखती थी उन लोगों का, और सच बताऊं रेडियो में बोलने से ज्यादा मुझे प्रोडक्शन अच्छा लगने लगा, उसमें मैं माहिर भी हो गई
1: जी जी।
0: और उसी के कारण से मुझे आकाशवाणी में 5 बार एनुअल अवार्ड मिला।
1: माशाल्लाह बहुत खूब।
0: 5 अलग अलग विषयों पर मैंने फीचर बनाए
1: जी।
0: तो वो मेरी स्ट्रेंथ थी। बाद में मैं अनाउंसर हो गई 82 में, और वो भी राजस्थान में ही, बीकानेर से 132 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ स्टेशन है
1: जी,
0: जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही सटा हुआ है। वहां मैं 82 से 88 तक अनाउंसर रही
1: जी।
0: तो वहां छोटा स्टेशन था, हर तरीके का काम करने का मुझे मौका मिला। वहां पे अगर कहानीकार नहीं आया तो आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि ये कहानी भी लिखनी है क्योंकि डेविएशन नहीं हो सकता। युववाणी हो रही है, कवि गोष्ठी में एक कवि नहीं आया तो आपको कविता भी लिखकर सुनानी है और कभी कभी नाटक भी तैयार करते थे और रूपक भी तैयार करते थे। तो अनाउंसर रहते रहते मैंने बहुत काम किया वहां पे।
1: मतलब इतनी सारी खूबियां ऑलरेडी मौजूद हैं कि किसी भी वक्त कोई भी काम दिया जाए तो हम कर सकते हैं।
0: दिया जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे तानपुरा प्लेयर नहीं आए, और मैं शौकिया तानपुरा हिलाती थी म्यूजिक स्टूडियो में जाके, तो जो बांसुरी वादक थे वो मेरे ही स्टाफ के थे
1: जी,
0: वर्मा जी, विजय वर्मा जी, उनका उस दिन बांसुरी वादन होना था और तानपुरा प्लेयर आए नहीं है, तो उन्होंने कसकर मुझे बताया पहली उंगली से ये और फिर दूसरी उंगली से ये 3 तार छेड़ना है। मैं बड़ी शौक से कर रही हूँ, और मैंने उनका वो लाइव आधे घंटे तानपुरा बजाया जो कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं अनाउंसर थी।
1: बहुत खूब जी।
0: उसके बाद तो मैं रेगुलर पकड़ी गई, जब कोई नहीं आता था मुझसे तानपुरा बजवाते थे।
1: मतलब ये खूबी भी पता लगी कि आप ये भी कर सकती हैं, और अगर
0: तो शौकिया छोटी स्टेशन पे आपके पास कुछ करने को नहीं तो बहुत कुछ करते थे
1: जी।
0: बिल्कुल,
1: बहुत खूब मैम, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ हो रही हैं, और यकीनन ये जो जर्नी है इसमें इतना लंबा वक्त जो गुजारते हैं हम रेडियो के साथ में, वाकई में ये काबिले तारीफ है कि इतना काम जो आपने पीछे किया। हम और बातें करेंगे, लेकिन एक बहुत प्यारा सा ये गीत है, आंधी फिल्म का ये गीत है, चलिए उसको सुन लेते हैं फिर।

0: FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त बेहद अच्छी पर्सनालिटी मौजूद हैं। ललिता चतुर्वेदी मैम हमारे साथ हैं, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी की। और मैंने तो आपको बहुत कम इंट्रो बताया कि मैम लेखिका भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, और मैम ने खुद बताया कि रेडियो के पीछे और उन्होंने कितने कितने काम किए हैं और कितने टैलेंटेड हैं मैम, ये हमें अभी पता चला। तो मैम ये बताइए कि सूरजगढ़ में जब ये आपका प्रोग्राम चलता था, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, उसके आगे का सफ़र फिर कैसा रहा?
1: सूरतगढ़ में तो तमाम तरीके के कार्यक्रम करे, मतलब एक तरीके से हमें ट्रेनिंग मिली हर तरीके के कार्यक्रमों की।
0: जी जी।
1: और एक दिलचस्प वाक्या बताऊं मैं आपको कि सुबह की ड्यूटी मुझे अक्सर सर्दियों में मिल जाती थी। ड्यूटी चार्ट बनाने वाले सीनियर अनाउंसर होते थे
0: जी जी।
1: और मैं सबसे यंगेस्ट थी, तो सारी सर्दी मुझे सुबह मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट करनी होती थी। और सुबह के समय ही 8:30 से 9 बजे तक पंजाबी गीतों का एक कार्यक्रम होता था, क्योंकि वहाँ पर 60-40 का रेशियो है। 60% अगर राजस्थानी भाषी हैं तो 40% पंजाबी भाषी लोग भी थे
0: जी, जी।
1: तो उनका भी ध्यान रख करके हमें पंजाबी कार्यक्रम कुछ प्रसारित करने होते थे। तो एक पंजाबी गीतों का कार्यक्रम होता था 8:30 से 9 बजे तक
0: सुबह में।
1: और सुबह क्योंकि रोज मैं कर रही हूँ तो मैं ही उसको ब्रॉडकास्ट करती थी।
0: बिल्कुल।
1: और उस जमाने में क्या गायिकाएं होती थी, प्रकाश कौर हैं, सुरिंदर कौर हैं, आशा सिंह मस्ताना हैं, और टेप से हमें वो गाने निकाल कर बजाने होते थे, क्योंकि पंजाबी फिल्में भी उतनी नहीं थी और लोगों की फरमाइश भी होती थी कौन कौन से गाने सुनाने
0: हैं।
1: तो वो नियमित कर

0: कार्यक्रम मैं करती थी, धीरे धीरे मुझे पंजाबी भाषा में भी रुचि होने लगी, मैं वो भी समझ गई किस तरीके से करना है। तो एक बार क्या हुआ कि सूरतगढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर पे लोग गए हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, देखने की हमारी जो रेंज है वो कितनी है, क्योंकि 300 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर था, बहुत पावरफुल था। तो वहाँ सुनने के लिए गए कि भाई वहाँ सुनाई देता है कि नहीं, तो हमें भी कुछ लोगों को ले गए कि वहाँ इंटरव्यू कर लेंगे आसपास के गांव में ग्रामीण जनों से। खेती बाड़ी का भी कार्यक्रम होता है तो उन किस तरीके से खेती करते हैं। मैं सबसे छोटी और थोड़ी सी मेरे में उत्सुकता थी कि मैं पाकिस्तान का बॉर्डर देखूं, तो आज की तरह उसमें कोई बाड़बाड़ नहीं लगी थी, सिर्फ चौकोर एक सफेद एक पिरामिड सा बना रहता था, उसी सफेद पिरामिड के इस पार लिखा हुआ है भारत और इंडिया और उस पार पाकिस्तान हिंदी और अंग्रेजी में। तो हम देखते देखते वहां एकदम बॉर्डर तक चले गए और चेक पोस्ट वाले लोग साथ में थे, सामने से पाकिस्तानी चेक पोस्ट वाले भी उतर के आ गए, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर पे आपको हलचल होती है वो लोग भी आएंगे, तो तुरंत आए कि भाई कौन है क्या है ये लोग कैसे आए, तो मालूम पड़ा कि रेडियो के लोग हैं,
1: रेडियो के लोग हैं।
0: तो जैसे ही मैं बोलने को हुई उसमें से एक ने बोला कि आप पंजाबी गाने नहीं बजाते हो? मैंने कहा हाँ बजाती तो हूँ। बोले बीवी मैं तो आपको रोज सुनता हूँ।
1: बहुत
0: खूब। और मैं इतनी चकित और थोड़ी अच्छा भी लग रहा है, मैंने कहा अच्छा आप सुनते हैं? बोले कल आपने वो गीत सुनाया था, फलाने दिन वो सुनाया था, वो गाना बहुत दिन से नहीं सुनाया, आप सुनाइएगा। क्या था वो, लट्ठे दी चादर ऐसे करके गाना था, वो आपने बहुत नहीं सुनाया, वो भी सुनाइएगा। मैंने कहा अच्छा आपकी बार जाऊंगी सुनाऊंगी। अब वो लोग भी बड़े वो हो रहे कि कोई आया है,
1: कोई आया है रेडियो से, कोई आया है,
0: कुछ कर नहीं सकते वहां पे वेलकम या बातचीत। तो थोड़ी दूर पर चने के खेत थे, वहां से खूब सारे चने उगे हुए थे, हरे चने जिसे छोलिया कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो उखाड़ करके जितना उनके अंक में भरा गया लेकर आ गए। बोले हम चाय पानी तो नहीं पिला सकते आपको, ये चने खाइए।
1: एक स्वीट गेस्चर उन्होंने,
0: एक उन्होंने स्वीट जेस्टर दिया। तो मैंने उसमें से एक तो चने के दाने तोड़कर खाया, और जैसे हमारे हिंदुस्तान का होता है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदुस्तानी चना होता है। सारे लोग ठठाकर हंस पड़े। फिर मेरे सीनियर बोले कि सीमाओं में खेती को थोड़ी बांध सकते हैं, है ना, ये तो एक ही जमीन है इधर की उधर की, अब हम वो चना लेके आने को तैयार नहीं। और मैं अकेली रहती थी, मुझे क्या करना है। मेरे एक इंजीनियर आंख से इशारा कर रहे हैं, ले लेता हूँ इसको घर में बनाएंगे। मैंने कहा ले लीजिए, मुझे क्या है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि हमारे वहां से लेके बहावलपुर तक आपके गाने बजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो में पंजाबी गाने नहीं बजते थे। तो हमारे रेडियो को वहां सुना जाता था। जब ये जाना तो जो हमारे इंजीनियर सर्वे करने गए थे वो तो गदगद हो गए। उनको लगा कि वाह क्या हमारा रेडियो
1: वहां तक
0: पहुंचा है।
1: और ज्यादातर ये लगता है मैम जो फौजी भाई हैं यकीनन उन मतलब वो रेडियो बहुत शौक से सुनते हैं,
0: और कुछ साधन नहीं है उनके पास
1: नहीं है। और मुझे याद है कि एक पहले एक कार्यक्रम आता था फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम, उसमें उनके पसंद के गीत बजाए जाते थे और वो उसी से बड़े खुश हो जाते थे।
0: और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि कुछ पाकिस्तान से फरमाइशें आने लगी, पोस्ट कार्ड आते थे बहुत उस जमाने में, तो हम उनके नाम भी ले लिया करते थे कि पाकिस्तान से इस गीत की फरमाइश आई है। तो ये बहुत ही मतलब रोमांचक
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात है अपना नाम सुनकर रेडियो पे, अच्छा लोगों के दिलों में जो सुनने वाले हैं हमारे, इतनी खुशी होती है ना कि उसको बयां करना वाकई में मतलब मुश्किल है उनके लिए। बहुत क्योंकि रेडियो से प्यार करते हैं, रेडियो के पीछे जो आवाजें हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, और बड़ी खूबसूरती से
0: आजकल तो हर कार्यक्रम में नाम बोला जाता है।
1: जी जी,
0: हमें आदेश नहीं था उस जमाने में, पर हमारी आवाज सच में ऐसी होती थी कि जिसको लोग पहचान लेते थे।
1: अच्छा यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है। जैसा कि उन्होंने एक वो दिखाया कि आपको वो प्यार कैसे शो ऑफ करें अपना, तो उन्होंने वो चने दे दिए, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती है। जी तो मैम ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, रेडियो के माध्यम से हम ना जाने कितने लोगों से जुड़ते हैं, और बहुत लोगों के बीच में इस चीज़ का क्रेज़ है, शौक शुरू होता है। एक बहुत प्यारा सा गीत है, इसको सुन लेते हैं लता जी की आवाज़ में, फिर आगे बहुत सारी बातें करेंगे।

0: जी यकीनन ये साथ यूं ही बना रहे हमेशा हमेशा। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैम से पूछते हैं कि दिल्ली कैसे आना हुआ?
1: जब मैं अनाउंसर थी उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हुई
0: जी,
1: और 88 में मुझे दिल्ली आना था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं थे
0: जी।
1: तो अब दो रास्ते थे, या तो मैं दिल्ली में एज ए अनाउंसर ही आऊं, उसमें मुझे थोड़ी ये लग रहा था कि शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, आपके पास बच्चा छोटा है
0: जी,
1: शहर बदला, आपका जॉब ऑफ नेचर बदला, आपकी अपनी व्यक्तिगत मातृत्व की भूमिका भी बदली, तो कैसे संभाल पाऊंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि अप्रैल मई के बीच में एक डेपुटेशन की पोस्ट निकली भारत सरकार के प्रकाशन विभाग
0: जी,
1: की
0: जी।
1: उसमें उनको कुछ एडिटर्स चाहिए थे, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया और संजोग से मैं मैटरनिटी लीव पे गई। अभी मेरी पूरी छुट्टियां भी नहीं मैंने उनको बिताया था
0: जी,
1: कि वो आ गया कि मुझे
0: सिलेक्शन हो गया
1: आना है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है
0: जी।
1: और सिर्फ लिखा था डीपीडी। अब मुझसे उस समझ में नहीं आया कि डीपीडी क्या होता है, पीआईबी को तो फिर भी जानते थे
0: जी जी।
1: तो फिर यहाँ जी पता किया तो मालूम पड़ा डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसमें आज तक आजकल पत्रिका थी, बच्चों की पत्रिका भी छपती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी छपता था और आईएएस ऑफिसर्स के लिए इंडिया छपता था। तो जी मैंने ज्वाइन कर लिया आकर के। अब मेरा जॉब ऑफ नेचर बदल गया, रेडियो में मुझे 6 दिन काम करना पड़ता था, यहाँ 5 दिन का उन दिनों लागू हो गया था
0: जी, जी।
1: और 10 से 5 काम करना है, तो मुझे लगा ये सुविधाजनक है और मैंने वो शुरू किया। अब रेडियो में रहते रहते आपको बोलने पर ज्यादा ध्यान देना होता है, उच्चारण सही हो, सही स्वर, दीर्घ स्वर लगे, किस तरीके से आपको एक्सेंट देना है
0: जी।
1: यहाँ बिल्कुल उसका उलट, आपको लिखना है, लिपि कैसी होनी चाहिए, छोटे ई की बड़े ई की मात्रा, हलंत कहाँ लगना है, चंद्र बिंदु कहाँ लगना है, मतलब जो भी आलेख है उसको संपादन करना है, उसको सुधारना है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। जॉब ऑफ नेचर बदल गया, पर मुझे नया काम लगा और अच्छा लगा, तो मैंने वो
0: एक्सेप्ट किया
1: और 3 साल जमकर किया। उसमें बहुत टाइम मिलता था मुझे, तो वहां के प्रकाशन विभाग की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, मैंने समझ लो आधी लाइब्रेरी तो पढ़ ली होगी,
0: यकीनन पढ़ ली होगी
1: क्योंकि बहुत फुर्सत रहती थी और बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तकों का संपादन करने का अवसर मिला मुझे। मस्तराम कपूर की बाल कहानी, बहुत बड़े वो बाल कथाकार थे, विजयदान देथा उनकी एक पुस्तक का मुझे संपादन करने का मिला। इस तरीके से बहुत सारे लोगों
0: के साथ
1: काम करने का मौका मिला और उसी दौरान यूपीएससी से आकाशवाणी के लिए वैकेंसी निकली थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गई क्योंकि दिल्ली में थी तो मैं चली गई।
0: ये कौन सी ईयर की बात है?
1: ये 90 की बात है।
0: अच्छा जी,
1: 1990 की।
0: 1990
1: मेरा ऑफिस था पटियाला हाउस की बिल्डिंग है, उसमें प्रकाशन विभाग का
0: जी।
1: और इंडिया गेट को क्रॉस करिए और उधर आप पहुंच जाइए पंडारा, वो जो यूपीएससी का ऑफिस है
0: जी।
1: वहां पर
0: जी।
1: तो पास ही था, तो मुझे और उसके आगे से ही मैं रोज जाया करती थी, लक्ष्मीबाई नगर में रहती थी तो उसके आगे से ही जाती थी, तो मैं उसको बड़े हसरत भरी नजरों से देखती थी। मुझे कॉल आई, फिर मैं गई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया संजोग से
0: जी।
1: तो फिर मैं यूपीएससी से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे दिल्ली में नहीं रखा गया, मुझे आप अपनी चॉइस बताइए नहीं तो हम पोस्टिंग कर देंगे, और उन्होंने देखा और मुझे आकाशवाणी बीकानेर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में पोस्ट किया। अब वो तो मेरा अपना शहर, वहीं पली बड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहां रही 91 से 94 तक, मैं बीकानेर में रही,
0: 2 साल का वो वक्त गुजारा,
1: हाँ 2-2.5 साल का वक्त गुजारा
0: जी।
1: और उसके बाद मेरा दिल्ली

0: आकाशवाणी में, आकाशवाणी दिल्ली में नहीं, मेरे को DTPS एक हमारी विंग है
1: जी जी,
0: वहां मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मैं अप्रैल 94 में यहाँ आ गई थी और 2-3 महीने बाद मैं आकाशवाणी दिल्ली आ गई थी अगस्त सितंबर में। तब से मैं दिल्ली स्टेशन पे रही और बहुत लंबे समय तक रही। बीच में 2006 से 2008 तक जरूर मैं आकाशवाणी रोहतक गई थी। उसके बाद रिटायरमेंट तक मैंने आकाशवाणी दिल्ली में अपनी सेवाएं दी हैं।
1: बहुत खूब। और आज ये खूबसूरत मौका है मैम कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में दोबारा से मौजूद हैं। चलिए एक बहुत प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, फिर हम और जानेंगे।

0: FM गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सरला मैम। और अभी जब हम गाना सुन रहे थे तो मैम ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए।
1: नसरीन
0: जी,
1: मेरा नाम ललिता है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं सरल स्वभाव की हूँ इसलिए तुम्हें सरला लगी।
0: मैम बहुत बहुत माजरत, आप यकीन माने आपकी बातों में मैं इतना खो गई कि मुझे नाम, आप बहुत इतनी प्यार से बात कर रही हैं, इतनी सरल हैं, इसलिए मुझे वो दिमाग में सरला रह गया। बहुत बहुत माजरत। लेकिन मैम यकीन माने जो आपने अभी एक्सपीरियंस शेयर किए और जो इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले भी सुने। यहाँ पर जो

0: स्टूडियो में कोई ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी आई कि वो कभी आप भूल नहीं पाए, ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिनका इंटरव्यू आपने किया हो? और
1: बहुत सारी
0: जी।
1: मैंने लंबे समय तक हिंदी वार्ता विभाग में अपनी सेवाएं दी
0: जी।
1: तो हिंदी के तमाम दिग्गज आते थे, राष्ट्रीय स्तर के कवि साहित्यकार, उनसे भी भेंट वार्ताएं की मैंने
0: जी।
1: नामवर सिंह जी थे, मैनेजर पांडे जी थे, संस्कृति कर्मी कपिला वात्सायन जी थी
0: जी।
1: उसके अलावा कई जो हमारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते थे उनके इंटरव्यू

0: सिंह जी थे, मैनेजर पांडे जी थे, संस्कृति कर्मी कपिला वात्सायन जी थी जी। उसके अलावा कई जो हमारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते थे उनके इंटरव्यू किए, लोकसभा अध्यक्षा थी हमारी सुमित्रा महाजन जी, उनका भी इंटरव्यू किया महिला जी, दिवस जी, पे जी। और सबसे मजेदार इंटरव्यू मुझे लगा मैंने देवानंद साहब का किया है। देवानंद साहब को जब फाल्के पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो हम लोग विज्ञान भवन में उस कवरेज में गए थे, तो वहाँ उनकी असिस्टेंट से बात किया तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, कटन रेजर में आई थी तो उनसे बात की थी कि इनको हम बुलाना चाहते हैं, बोले हाँ हाँ मैं प्रबंध करूंगी। और उस दौरान क्या हुआ कि करूंगी ये कहा था, कब करूंगी ये नहीं कहा
1: बताया
0: था।
1: जी
0: तो उसके अगले दिन ही सुबह सुबह उन्होंने मुझे 10:30 बजे फोन कर दिया कि मैं लेकर 11 बजे देवानंद साहब को आ रही हूँ। अब मैं तुरंत भागी अपने डायरेक्टर साहब के पास, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी होते थे मेरे डायरेक्टर, कि वो आने वाले हैं, उनकी भी उपस्थिति चाहिए। तो मालूम पड़ा वो तो मंडी हाउस गए हुए हैं किसी
1: काम
0: मीटिंग में, मीटिंग में कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है
1: जी।
0: फिर उनकी पीए को कहा कि भाई अर्जेंट मैसेज तो भिजवाइए किसी भी तरीके से। और हमने यहाँ थोड़ी सी तैयारी की, स्टूडियो कौन सा लेंगे कैसे करेंगे, कुछ प्रश्न बनाए इंटरव्यू करने के लिए। वो बोले कि तुम लोग तैयारी करो और शुरू करो। और मेरे डिप्टी डायरेक्टर थे एक मिश्रा जी, देव कुमार मिश्रा, बोले हाँ हाँ हम तैयारी करते हैं। और हम लोगों ने इंटरव्यू किया और यकीन मानिए इतना बड़ा इंसान और इतना सरल इंसान,
1: इतने हम्बल,
0: इतने सहज कि मैं उनको देखती रह गई। और वो इंटरव्यू जो था, मेरे साथ बैठे थे राजीव सक्सेना भी जो FM में
1: जी
0: अनाउंसर थे,
1: जी।
0: तो उनको साथ में बैठाया गया और हमने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया उनका। सारे पक्ष उनके पूछे थे, उनके चिर युवा होने का राज भी पूछा था कि क्या कारण है कि आप आज तक
1: इतनी फैन
0: दिलो दिमाग से जवान हैं। और वो आनंद लेने लगे। तो वो कार्यक्रम बाद में FM गोल्ड पर ही बजा, FM गोल्ड पर कई किश्तों में बजा, उसके बीच में गाना लगा करके, और बहुत लोकप्रिय हुआ। और उसको फिर कई बार बजाया गया। तो
1: कितने घंटे का वो कार्यक्रम था, कितना
0: मतलब रोज उसमें से 2 घंटे का कार्यक्रम तैयार करके वो लोग बीच में गाने भी लगाते थे
1: जी।
0: और वो बजा था
1: तो काफी लंबी बातचीत रही होगी।
0: बातचीत लंबी
1: सारा
0: थी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में सारे अनुभव बताए, फिल्मों के बारे में बताए, कुछ वो सामाजिक मुद्दों पे भी बोले। सिर्फ ये नहीं कि फिल्मी बातें हो रही हैं, सामाजिक मुद्दों पे भी बातें हुई
1: जी।
0: यूं समझ लो जैसे आज हम कहते हैं ना कि रेडियो भारतीय चेतना में बहता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वैसे ही उनकी चेतना में भी रेडियो था
1: जी।
0: और रेडियो के साथ वो ऐसे घुल मिल गए, नहीं तो फिल्मी हस्तियां रेडियो पर आने से थोड़ा गुरेज भी करती हैं और आ भी जाती हैं तो वो थोड़ा रेडियो को कमतर ही समझती हैं। पर उन्होंने इतना सम्मान दिया रेडियो को, इतना दिल से जैसे अपनाया हो, हमें भी बड़ा अच्छा लगा।
1: मैम यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही हम्बल होते हैं। और हम ऐसे महान कलाकार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके बारे में तो हम जानते ही रहते हैं कि हाँ वो किस तरह की पर्सनालिटी हैं पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा यकीनन। एक गाना सुन लेते हैं।
0: ज़रूर।

मीडियम वेव 305.1 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 4 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी

0: प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन के तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन है। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक

0: लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुमने अगर तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज़ जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नज़रों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे

0: है जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है.
1: जी
0: सो दैट इज़ दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए.
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं. तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज़ अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है.
0: जी.
1: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज़ है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं,

0: बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं, आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपनी इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफ़ी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक
1: डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है।

0: और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाए, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन्ड पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। हाँ हाँ हाँ। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ।
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
1: ओह माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे। क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहाँ पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ।
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं।

0: तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी.
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी.
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो.
0: हाँ,
1: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
0: बहुत सुंदर.
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
0: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजन्स हैं. कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी.
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आप

0: आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे. क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: कलाम साहब ने ये बात कही जी, बहुत सुंदर. और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी.
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से.

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों

0: एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है।

0: ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये मैं करूँगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज़ वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेज से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफ़ी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें
1: जी,
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमारे कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, कंडराजा, बैरडांड, दातीढाब, घड़गांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या

0: 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट, तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मुहकोट, बहीगांव, लिखमा, जोगी बिरदो, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दें आज के शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम में अपन गोट का विषय होगा लक्ष्य के बिना जिंदगी दिशाहीन जिंदगी। पहुना जोहार में सुनिएगा आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गोट बात और होगा क्रम हमर गांव। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे अमर श्रीवास और साथी। रात 8:15 पर कलाकार होंगे जनक यादव और साथी। शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा रबी फसल में कटाई बाद भंडारण प्रबंधन। किसान वाणी में आज की सलाह में पालतू जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां, सावधानियां एवं देखभाल विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव राय। रात 9:30 पर सुनिएगा नाटक लौट आई खुशियां, लेखक महेश शर्मा, प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र पाटिल। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया 3 ताल। रात 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। चित्रपट संगीत सुनिएगा शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी दें कल के कार्यक्रमों की।

स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर और करेंट अफेयर्स कल रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 8:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें सुनिएगा अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से भेंटवार्ता, भेंटकर्ता दीपक हटवार। नमस्कार रायपुर सुनिएगा सुबह 7:05 पर। सुबह 9:00 नवा बिहान कार्यक्रम में सुनिएगा योग से नशा मुक्ति विषय पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा से भेंटवार्ता का दूसरा भाग, भेंटकर्ता नेमीचंद साहू। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे पवन।

चंद्राकर। कल दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे उदित नारायण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10 बजे सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहीर भैरव, और रात 10 बजे सुनिएगा इन्हीं का बजाया राग हेमंत। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में कल दोपहर 1:30 पर सुनिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर बजाया ताल पंचम सवारी। कल सुबह 11:05 पर अनुराग धारा कार्यक्रम में गुजराती गीत की कलाकार होंगी जिगीशा किराड़िया। कल शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम में आजकल का विषय होगा परिवार हमारी ताकत है। जश्न आवाज में सुनिएगा शीला श्रीधर से भेंटवार्ता। ये थे कल के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युववाणी।

0: मन मार लक्ष्य बनाओ, हर दिन कदम बढ़ाओ,
1: रास्ता खुद बन जा ही, बस हिम्मत कबू झन हारो।
0: रेडियो के तीरमा बैठे जम्मो संगवारी मल्ला थनेश्वरी बघेल
1: और वर्षा गोस्वामी के
0: राम राम, राम जय जोहार। और वर्षा, सब बने बने?
1: हाँ थनेश्वरी, मैं बढ़िया हूँ, तय बता।
0: महू बढ़ा बढ़िया हूँ वर्षा। वैसे इधारी भारी गर्मी हवा है ना?
1: हाँ अब्बड़ गर्मी हवा है, घर ले निकले के ही मन नहीं करे।
0: सीतोन में ऐसे लगते दिन भर घरेच में रहा, खास कर मंझनिया माँ भुइया माँ पाँव पड़ते ही गोड़ हाथ जरे लग जाते भाई।
1: हाँ फिर का करबे, काम बूता करे बर तो घर ले निकले ही पड़ते। फिर ना थनेश्वरी, मोला ना स्कूल के दिन ही बढ़िया लगत रही से, बने गर्मी छुट्टी मिले।
0: हाँ सही केस वर्षा, मोला तो गर्मी छुट्टी के इंतजार रहा है भाई, कि छुट्टी है बने बने जिनिस मन मा हमन हा मेहंदी सिलाई कढ़ाई पेंटिंग और आने आने जिनिस सीखे पर जावन।
1: फिर मोला ना गर्मी छुट्टी में ये सोचा हूँ कि कब स्कूल खुली तो स्कूल जाऊँ, नवा नवा पुस्तक पढ़े मिली, संगी संगवारी मन संग मिलना होई, कतेक मजा ही।
0: हाँ अच्छा, तो तोला स्कूल जाना हा बड़ पसंद रही से?
1: हाँ रोज नवा नवा सीखे बल मिले ना थनेश्वरी, और नवा जानकारी जाने बल मिले तो अच्छा लगत रही से। स्कूल ले ही तो हमारा लक्ष्य तय होते कि आगू हमन ला का करना है।
0: बिल्कुल भाई, पोट के ईश्वर सा, स्कूल में ही हमन अपन लक्ष्य तय कर लेथन कि आगू का क्षेत्र में अपन नाव ला बना सकत हन।
1: हाँ।
0: कोनो लइका अपन शिक्षक ला देख के शिक्षक बनना चाहते, कोनो डॉक्टर त इंजीनियर, गायक, पत्रकार और अलग अलग क्षेत्र में काम करे के बारे में सोचते।
1: सिरतोन में जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, फिर तय का सोचे वर्षा, अगर जिंदगी में लक्ष्य नहीं होतीस तो का होतीस?
1: बिल्कुल वैसे थनेश्वरी, जिसे बिना पतवार के नाव, जो लहर के सहारा कहूं भी बहत रही थे फिर मंजिल तक नहीं पहुंचे।
0: नहीं पहुंचे सिरतोन में, लक्ष्य हमन ला दिशा देते और जब लक्ष्य नहीं हो तब मनखे हा भटकत रह जाते, कभी एती त कभी होती, फिर संतोष नहीं मिला। एखर सेती जिंदगी मा सही लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है।
1: हाँ आजकल की युवा मन भी कई बार यही समस्या जूझते, मतलब समझ ही नहीं आए कि का करना है।
0: वो तो है संगवारी, और भटकत भटकत मन हा निराश घलो हो जाते। एक सेती जिंदगी मा लक्ष्य जरूरी है।
1: लक्ष्य हमन ला अनुशासन सिखाते, समय के कीमत समझाते।
0: बिल्कुल संगवारी हो, बिना लक्ष्य के समय हा ऐसने ही ठलहा निकल जाते, फिर लक्ष्य होए तो हर मिनट के अहमियत हा समझ आते, काबर की हमन हा हर मिनट हाँ। बोरथन
1: अब देख थनेश्वरी, कुछ दिन पहले ही 10वीं-12वीं रिजल्ट आए है। अब जम्मो छात्र मन हा अपन पसंद के अनुसार विषय और कॉलेज के चुनाव कर अपन लक्ष्य पाए बर आगू बढ़ी और खूब मेहनत करी।
0: बिल्कुल हाँ वर्षा, ए समय हा बहुत कीमती होते, यही हमार जिंदगी ला सुघर बनाते और हमार भविष्य के निर्माण करते, काबर की हमार लक्ष्य ही मेले तय हो जाते।
1: तो हमार जम्मो पढ़ैया युवा संगवारी मन ला यही

0: यही कहना चाहबो कि अपन जिंदगी में लक्ष्य तय कर लो और सोचो हो कि आप मन ला का बनना है, का काम में रुचि हवे और अपन हुनर ला चिन्हो और ओमा काम बूता करो।
1: बिल्कुल, कावर की लक्ष्य है सिर्फ सपना नहीं है बल्कि ओला पाए बर मेहनत और लगन हरे।
0: तो हमर मयारू संगवारी हो, आओ अपन जिंदगी ला एक दिशा देवन, एक लक्ष्य तय करन और ओला पाए बर
1: बड़ मेहनत करन।

0: संगवारी सुघर गीत ल अपन सुर में सजाए रहिन जवाहरलाल बघेल और साथी मन
1: अवे गीत ल सुने पर चाहे रहिन हमारे संगवारी मन कोटना पानी डोंगरगढ़ ले खिलावन मंडावी परमेश्वर प्रणय ईशांत मन पीपरलोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश वर्मा पहांदा पलारी ले नीतीश कुमार लखनलाल सावित्रीबाई ईशान तनुजा देवांगन पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन पांडे अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयसा सबीहा अनस रेहान खान बलौदा छत्तीसगढ़ ले दिलहरण गौतम अंजलि आनंद समृद्धि पटेल कन्या जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ले अखिलेश कुमार यादव ज्योति अंकित श्रद्धा सौरव यादव मेघापारा चिल्फी ले शुभम पटेल दिव्या दीपांजलि दीपक संतोषी रामकुशल दीपांशु पटेल मनहा
0: संगवारी हो आज ही दिन बृहस्पत और आज होते क्रम पहुना जुहार तो आवा सुनथन आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गुड़ बात।
2: बीमारी से लड़ना है तब पहली अपन आदत मतलब बदलना पर ही
3: सेहत के कोनो शॉर्टकट नहीं हो सिर्फ सही आदत नियम ही एक रास्ता है
2: और यही जानकारी मतलब विस्तार ले जाने पर मैं हूँ थनेश्वरी बघेल
3: और मैं हूँ नीलेश साहू तो जो कहो हमर जोहार। आज हमर संग स्टूडियो में हवे आयुर्वेद के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर गुलशन सिन्हा मन जिन्हा लगभग 7 बच्छर ले आयुर्वेद चिकित्सक के माध्यम ले लोगन ला स्वास्थ्य लाभ देवत हवे
2: और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाए बर लोगन ला घलो प्रेरित करत हवे। आज के बदलत जीवन शैली और युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य ले जुड़े विषय में हमन उकर संग बातचीत करबो तो डॉक्टर गुलशन सिन्हा जी आप मन के हमर विशेष कार्यक्रम क्रम पहुना जोहार मा आप मन के बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।
2: डॉक्टर साहब आज के युवानी कार्यक्रम मा जुड़े हमार जम्मो संगवारी मन घलो आप ला जानना चाहत हो ता अपन परिचय बताओ।
4: युवानी मा जुड़े मोर जम्मो संगवारी मन ला जय हिंद जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम डॉक्टर गुलशन कुमार सिन्हा हरे और मैं जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर जहाँ से उड़ीसा बॉर्डर लगते गरियाबंद जिला के लड़का हूँ और मोर विकास खंड जो है छुरा है और मोर जो जन्म हुआ है वो गांव हरे नरतोरा और नरतोरा मोर प्राथमिक स्तर के पढ़ाई लिखाई हुआ है और ओकरे आसपास है दुल्ला करके गांव तो दुल्ला में मोर माध्यमिक से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई हुआ है और बाद मोर कॉलेज जो है राजनांदगांव कॉलेज से आयुर्वेदिक कॉलेज से। अभी कुछ वर्ष से मैं रायपुर में आयुर्वेद की चिकित्सा करत हूँ।
3: तो सबले पहली आपले ये जानना चाहबो कि आज युवा मन जो जीवन शैली अपनावत है तेला आप कैसे देखते हो का स्वास्थ्य लाभ ले जुड़े जो समस्या है तीकर एकर ले कुछ संबंध हवे।
4: आज युवा मन जो जीवन शैली अपनावत है तेला हमन ऐसे मान सकथन कि बहुत युवा मन तो नहीं जाने कि मतलब जागरूक नहीं है लेकिन अधिकांशतः युवा मन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से बहुत सारा चीज जानते खासकर कोरोना के बाद से और ये जो जनरेशन है तेहा ज्यादातर मोबाइल ही देख देख के सब चीज जाना थी लेकिन एक गलत प्रभाव भी पड़ा थे। आप ज्यादा वो चीज करत हो तो गलत प्रभाव भी पड़ा थे तो युवा मन से फायदा भी लेते से नुकसान भी बहुत सारे युवा मन हो थे तेका कारण का है ज्यादा मोबाइल आजकल देखा थे युवा मन जो है तो वो में का है कि रात में ढंग से सो नहीं पाते मन स्क्रीन टाइम के कारण तो जो नहीं सो पाते तो वहां से मन के पेट खराब होते जो डाइजेशन वाला प्रॉब्लम है ना तो वहीं से खराब होते और पेट से सब बीमारी जुड़े हैं। आपके मोटापा हुई तो फिर आपका शुगर हुई फिर बीपी हुई फिर दिल की बीमारी हुई वो सब बीमारी थायराइड वायराइड सब होते।
3: हाँ।
4: तो युवा मल्ला ये सब चीज से बचना चाहिए एक सही रूटीन मल्ला फॉलो करना चाहिए
3: और सोशल मीडिया के माध्यम ने लोगन जानकारी तो देख लेते हैं। अब देखे के बाद कई ठन ऐसे नुस्खा रहे थे जिन हमारे स्वास्थ्य पर सही नहीं रहे।
4: हाँ हाँ।
3: तो वो चीज ला लेके का जागरूकता हमला करना चाहिए पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए का ये बारे में आप मल्ला थोड़ा सा।
4: हाँ डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी लेवा थे वो एकदम सही है ऐसे करके मानना एकदम
3: सही नहीं है।
4: तो आप मन कोई डॉक्टर के पास मिलके जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो अगर से मिलके आप मन जानकारी ले लो का घरेलू नुस्खा और आयुर्वेद बहुत अलग चीज है। घरेलू नुस्खा बोल के हम कुछ भी चीज नहीं कर सकते। ठीक है जब वो चीज अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एकदम उदाहरण के तौर पर मैं आप मतलब बताना चाहूं जैसे और हमारे सियान मन बताइस कि ही और शहर ला नहीं खाना है करके तो कोई ना कोई खाक देखी सोही वो जमाना में खाई सोही तब वो मतलब जो है नुकसान हो सोही तब वो मन बताइस कि नहीं खाना है इसे है लेकिन आयुर्वेद जो है ना पूरा बहुत सारे वेद वेदांत से लिए गए चीजें जो कई हजारों सालों से चले आते तेकर ऊपर होके

0: तब आयुर्वेद हमन ला मिले हैं और आयुर्वेद ला जो है जीवन जिए के कला है हमार मन के यहाँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ है, वो आयुर्वेदिक दवाई नहीं है। ये हमन ला सिखाते कि हमन ला जीवन कैसे जीना है और जीन ला अपन जीवन जीवन आगे ओला आयुर्वेद आगे ऐसे है।
1: तो डॉक्टर साहब, जिसे हम अभी घरेलू नुस्खा के बातचीत कर रहे हो आप मन, तो पहली के खान पान हमार बहुत सरल रही से और आज तो आनी बानी के खाए पी के घलो जिनिस आगे हवे, तो पारंपरिक जीवन स्वास्थ्य पर कतिक जरूरी है।
0: जो पारंपरिक जीवन है ते ओकरे से आप जो है अच्छा वाला मतलब जिंदगी जी सकते हो, ओकर बिना आप जिंदगी जी ही नहीं सको। अच्छा वाला आप ला सादा चावल के जो बोले गए है वो आप ला खाना है, दाल रोटी सब्जी यही चीज आप ला खाना है और घी भी खाना है आप मतलब अपन शरीर ला अच्छा रखे बार। जब आप मन घी से हट के चीज बर्गर में जाऊ ना तो आपके शरीर हाँ उतना अच्छा नहीं रहा है, तो आप मतलब जो है वो सब चीज ला माने लगी जो आप मन के दैव भवन सिखा है तेला। वो कहते ना कि बाबा सिखा है कोदो कुल्थी, नाती खाते पिज्जा बर्गर, तो कहाँ चल ही जांगर, ऐसे वाला बात है। तो फिर आप ला वो पुराना चीज ला मानल पड़ी।
2: तो यही में एक सवाल और देखे जाते है कि आयुर्वेद जो है तो प्राकृतिक से जुड़े हुए हवे, तो जो आज के फसल हवे खेती जो होते तेमा देखे जाते है कि ज्यादा खास करके जो केमिकल वाला जो खाद हवे तेकर मन के प्रयोग होते, तो वो जो फसल होते ओकर का हमर मन की खान पान करे से कुछ असर पड़ते हमर स्वास्थ्य में?
0: ओकर असर तो पूरा पड़ते हमर खान पान में करके हमन वो पूरा लेवा थन पूरा शरीर में लेवा थन। तो अभी के जनरेशन में अगर अभी के जो दौर चलते ओकर हिसाब से देखा जाए तो हमला जागरूकता लाना चाहिए एक बार कि मिट्टी कैसे बचाया जाए, पानी कैसे बचाया जाए एक ऊपर। और ये युवा मल्ला ही करे लगी, युवा मल्ला फिर से वो दौर मतलब जाने लगी कि हमारे दैव भवन का करत रही तेला का है। ज्यादा पेस्टिसाइड से तो जो रिसर्च हो कहा थे हमें पता चलते कि कैंसर वैंसर हार्ट की बीमारी होते इसे करके, तो किसी भी तरीके से हम सही नहीं ठहरा सकन और जितना हो सके हम अन्हा नेचुरल चीज लेन एक ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमला जो है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे पारंपरिक जो हमारे फसल हुआ थे जैसे कोदो है, कुटकी, रागी, जिला मड़िया की थन, तो ओमन जैसे बहुत अकन बीमारी पर बहुत उपयोगी हावे ऐसे कहे जाते कि बीमारी ला दूर करते कि ओकर बार आप मन का कहना चाहो का?
0: ये मैं आप मतलब पहली लाइन बोले रहे हूँ कि आयुर्वेद जीवन जिए के कला है, तो हमारे जो सियान है तेमन सिखाए हमला। मैं आजकल के युवा मतलब बोलूं कि अपन दैव मन कर बैठे करो, उगर मन से सीखो कि जब अभी जो आए है कि कोदो कोदो सुगर वाला मन और बहुत अच्छा है ठीक है, उसने कुल्थी भी जो है ना कुल्थी मोटापा घटाए में और जो मतलब पथरी होती तेकर पर अच्छा है। अगर मतलब मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं तो जो कब बढ़े रहते ना आप मन के शरीर में मोटापे के कारण, ओकर बाद जो वात वगैरह जो है ऊपर नीचे हो के जो आपके शरीर में जो है पथरी बनाते तेला कुल्थी है दूर करते। तो इस तरीके से आप मन जो है अपन जो पुराना खान पान है तेला देख देख के सीखो कि ओमन का खातरी से का नहीं खातरी से। उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि अगर कोई देह सोची सोही कि हमला गाय के दूध पीना है, ओकर पहले कई जानवर के दूध पी सोही, कई जानवर के दूध पी के आदमी मरी सोही, तब कहीं जाके हमला मिलिस कि गाय के दूध पीना है ये अच्छा है, भैंस के दूध पीना है ये अच्छा है। यही सब चीज ला जानकारी लेके हमारे पुरखा मन हमला बताए, अब हम ओकर से अलग करबो ना तो ओकर नुकसान हमला झेले लगी ऐसे।
2: डॉक्टर साहब, आप मन जो गहराई ले बताए हो यही ला आगु बढ़ावत एक ठन जो सामान्य सवाल है कि त्रिदोष वात पित्त कफ ये का होते?
0: त्रिदोष ला जो है मैं एकदम सामान्य तरीके से समझाऊं और मोर कोशिश रहते है कि ये ला ना हर जन मानस समझे। वात जो है हवा है, आप बोला हवा के तौर पे लो। पित्त आगी है, कफ है ठंडा चीज है, मतलब एक छत्तीसगढ़ी में बोला जाए लद्दी टाइप की चीज है। तो जे आदमी वात रही वो आदमी पतला दुबला असन रहते वहा ठीक है, पतला दुबला मतलब जो हेल्दी वाला पतला दुबला नहीं, ओकर हड्डी वड्डी एकदम दिखत रही, बात वात चपर चपर करता रही वो एकदम, जैसे वो एक जगह बैठे नहीं, बैठी तो इतनी होती हालत डोलत रही वहा, मुड़ी कान हिलात रही वहा, इस टाइप से वात वाला आदमी रहते। पित्त वाला आदमी कहा होते कि ओकर पेट वेट ज्यादा खराब रही, ओला चर्म रोग से ज्यादा समस्या देखे बर जही वाला, जल्दी गुस्सा हो जाते हुआ चिड़चिड़ा ही हुआ। कफ वाला जो है वो ठंडा टाइप के आदमी रहे, आलसी भारी आलसी रहते, वो दिन में सुतैया आदमी रहते, वो एक और बैठ गए बैठ गया वहां उठना नहीं चाहे वहां, ऐसे टाइप के आदमी है। और ये तीनों अगर बिगड़ गए तो आदमी के शरीर जो है मतलब बीमारी आती, और ये अगर सामान्य तरीके से है समानतम है तो आदमी का शरीर अच्छा रहते बोले बीमारी नहीं हो। और प्रकृति आजकल का है ना, पिछले साल जो है सरकार भारत सरकार आयुष मंत्रालय है नवंबर में शुरू कर रही से 29 अक्टूबर के जो है ना धनवंतरी दिवस के दिन जो है उन्होंने ऐलान करीस कि हमन जो है प्रकृति परीक्षण करबो लोगन के करके, तो 1 करोड़ से ज्यादा पूरे भारत भर में प्रकृति परीक्षण हुए है कि जेकर माध्यम से भारत सरकार जानीस कि कौन आदमी कौन से प्रकृति के, तो हर महीना अपडेट आते कि ये प्रकृति का आदमी वात पित्त वाला, तो ये महीना तो खान पान ऐसे होना चाहिए ऐसे करके। तो भारत सरकार भी आजकल

0: ज्यादा रुझान ले थे, आयुष मंत्रालय बने हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और दो प्रकृति भी होते ना, एक आदमी में वात पित्त हो, एक आदमी में पित्त कब भी हो वहाँ, तो इस तरीके से दो प्रकृति वाले भी आदमी होते।
1: तो डॉक्टर साहब, आप मान ले ये जानना चाहो कि जिसे आप मन वात पित्त कफ के बारे में जो बताया हो, और ये तीनों के असंतुलन से ही जो बीमारी है वे तेना हम अल्लाह होते, तो ये मतलब हम अल्लाह संतुलित रखे बर कैसन आहार हम अल्लाह लेना चाहिए?
0: इला संतुलित रखे बर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ की इला हम एकदम पढ़ लिख के ऐसे नहीं। मैं और शुरू से हमेशा मोर कोशिश रहती, दही बबल देखो अपन, बस दही बबल देखो, उमन जो बचपन में करीस, उमन कहा करते कि सुबह नहाते हो मन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सुमन, ठीक है, नहा के आते मन जब अपन घर में ना, तो अमन तेल फूल अपन पूरा शरीर भर में ओंग देते मन, पूरा लगाते। अब बैठते कते कर अपन द्वार में, या तो बैठते हो चूल्हा कर बैठते, और चूल्हा कर बैठ के वो खाना खाई हो। ये जो साइंस है ना, ये आप मतलब देखे एकदम नॉर्मल लगते, लेकिन जब आयुर्वेद की पढ़ाई करवे ना, तो यही बहुत बड़ी चीज है। और नहा गईस तो अपन पूरे शरीर भर में तेल लगाईस, ये आयुर्वेद में हो जाते स्नेहन, ये है हमारे पंचकर्म के पूर्व कर्म है। अब बैठी तो घाम में या आगे कर, तो वो हो गए स्वेदन सेकाई, तो अगर वो हाथ गोर के दर्द भी हो ना, तो वो नहीं हो, कारण हर दिनों का इलाज चला थे, हर दिनों का डेली रूटीन में हो स्नेहन और स्वेदन करते हो हर दिन, तो ऐसे वो मन अपन इलाज करे। ओकर बाद सुबह खा लेते हो मन 9-10 बजे तक खा ले, ओकर बाद खेत वेत कमाए पर चल दे, तो ओकर शरीर में अब कब बनना चाहिए वो नहीं बने, कफ नहीं बने तो आलसीपना नहीं आया, मोटापा नहीं आया मल्ला। अब वही जगह अपच होती, अपच भी नहीं होता होला, तो डाइजेशन भी होकर सही है, तो ओकर कारण ओकर जो है वात पित्त जो कफ है ना, वो सब चीज सही रहा है, और शाम के घर आके चुपचाप खावा पी के सो जाओ मना एक टाइम में। तो इस तरीके से मन अपन जीवन ला जिए, तो अभी दौर के लड़का मन पर एकदम एकाएक तो अप्लाई नहीं हो, लेकिन वो मन इतना तो कर सकते कि नहाए या नहाए पहली तेल लगाए अपन शरीर में, ठीक है, वो मन प्रॉपर धूप ले, ठीक है, हमन क्या करते घर में एसी वाला कमरा बंद हो गए, ओकर बाद निकलना ही नहीं चाह, निकला था तो कार में निकला था, हमन तो सूर्य के संपर्क में ही नहीं आसन ना, तो हमारा जो विटामिन डी चाहिए ये सब चाहिए नहीं मिले, तन वो जांच करा था तो वो सबके कमी आते, B12 के कमी आते, सबसे ज्यादा B12 के कमी देखे जाते अभी के जमाना में, जेकर होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल सलाद वाला खाऊ तो आप मन की पूर्ति हो जाती, तो वो चीज आप लेवत नहीं हो,
1: मतलब जतका हमन देखा था वन के हमन जतका प्रकृति ले दूर भागा जावत हन, उतके हमन जो नवा नवा बीमारी है ओकर करीब मावा जावत,
2: माने कि अगर हम नवा नवा बीमारी है जन्म ले लेते,
0: जन्म ले थे ऐसे।
2: तो डॉक्टर साहब, जिसे आप मन पंचकर्म थेरेपी के गोट करत रहे हो, पंचकर्म थेरेपी का हरे
0: पंचकर्म ला, पंचकर्म पांच लिखा है, कर्म कार्य ये में होते वमन विरेचन रक्त मोक्षण बस्ती और नस्य करके है। यह वमन ऐसे है कि मुंह के द्वारा उल्टी करा के होकर दोष ला निकालते, दोष कौन है वात पित्त कफ हरे उल त्रिदोष का था ना मना, ओला निकालता ना मना, ते में जो है ना कफ ला निकालता ना मना, और विरेचन में हम क्या करते हैं पित्त वाला जो भी है तेला हम निकालता मल द्वार से। अब नस्य का है जो सिर वाला जो बीमारी है, तो क्या बोलेगी है नाक जो है सिर के द्वार है इसे करके, तो जो मतलब साइनस वाइनस वाला जो बीमारी है या सिर से संबंधित है वो मतलब नस्य के माध्यम से हमन ठीक करते हैं। अब आ जाते रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण का है कोई भी यह सीरा वीरा ला प्रिक करके वो जगह जो को चिपका के या सुई लगा के खुनला बाहर निकाले वाला खराब खुनला, ये आयुर्वेद में बताया गया है कि जब जोंक ला चिपकाऊ तो खराबे खून ला पीते ऐसे करके। अच्छा। आप मन जानत भी हो गांव में तरिया वरी हम नहा कर जा रहे हो तो देखे हो,
2: जैसे खेत खार के दिन रहते डॉक्टर साहब, तो वो मन तो पैर वैर में लटक जाते अक्सर कहे जाते
0: अक्सर कहे जाते, तो यही सब हरे, तो ये सब जो है ना चिकित्सा के माध्यम रहे पहले, तो इस तरीके से चिकित्सा करे। बस्ती ऐसे हरे कि आप मन सुने हो एनिमा करके, तो वो एनिमा अलग चीज हो जाती है, जे मल द्वार से देते दवाई, तो हम दवाई देते हैं मल द्वार से, जेमे ओला बताया गया आयुर्वेद में पूरा आधा चिकित्सा है वहाँ। अब दवाई खाओ तेगर से भी ज्यादा बड़ी चिकित्सा वही हरे, आप लोग वात की बीमारी है तो आप लोग बस्ती करा चल लगी, इस तरीके से अगर चिकित्सा जो है होते, तब पंचकर्म इस तरह पांच तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मैं आप मतलब बताया खान पान से रिलेटेड ना जो घाम वाम में बैठे वाला यही सब चीज हरे, तो इस तरीके से आप पंचकर्म समझो।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे आजकल के युवा मन हा हमन हा अपन आगे के उज्जवल भविष्य ला लेके बड़ चिंता में रहते हैं, अब ऐसे चिंता में घलो हमन हा बहुत से ऐसे बीमारी है जे मन ला निमंत्रण दे एक बारे में आप मन थोड़ा सा ज्ञान देवो।
0: ये में कहा होते है कि जब हम चिंता कर रहे तो हमारे शरीर है जो है ना जो सामान्य क्रिया करना चाहिए वो चीज नहीं कर रहे वहाँ, तो ज्यादा चिंता करे से शरीर में बहुत अगर हार्मोन वार्मोन निकलते, आयुर्वेद में हार्मोन के बारे में नहीं बात हुए लेकिन अभी जो दौर में बात होते स्ट्रेस वाला जो हार्मोन आते ते का कारण जो है शरीर में मतलब जबरदस्ती के आपके शरीर में जो है ग्लूकोज भी बना थे, ठीक है, मतलब स्ट्रेस ला कम करे बार,

0: फिर ओला कम करे बार इंसुलिन इंसुलिन निकला थे तो इस तरीके से एक्सेसिव होते सब चीजें इतनी तेती हो के ना एक्सेसिव होते तब फिर आप लोग शुगर हो जाते फिर बीपी हो जाते कार्टिसोल ये सब जो निकला था दुनियादारी का कारण ठीक एक बार लंबा चीज चर्चा करे लगी मैं आप मतलब सामान्य तरीके से बताता हूँ तो आप स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं कर सको लेकिन आजकल जमाना भी स्ट्रेस लेके ओकर बिना आप नहीं जी सको ठीक तो एक बार आप मतलब कुछ नहीं करना है दिन भर आप स्ट्रेस भी लो कोई बात नहीं लेकिन आप मतलब सुबह उठना है टाइम टू टाइम सो जाना है योगा करना है आप मतलब आजकल के युवा मल्ला अपन जो है ना दिनचर्या में जो है ना योगा लायल पढ़ी मेडिटेशन लायल पढ़ी तो इस तरीके से आप जो है वो स्ट्रेस से आप बच सकते हो और आपके खान पान जो है ना अच्छा हेल्दी वाला खान पान करना है भले आप दाल रोटी सब्जी खाओ लेकिन आप लोग अच्छा खाना है आप लोग तेल फुलहम नहीं जाना है ज्यादा तेल फूल वाला चीज नहीं खाना है और घर की चीज खाओ आप और अपन परिवार संग बैठ के जरूर बात करना है आप लोग मोबाइल में ही नहीं घुसे रहने हैं परिवार से बैठ के बात करू ना तो आपके कतनों भी टेंशन रही वो सब खत्म हो जाती तो आपके परिवार के बीच आप लोग रहना है मतलब रहना है।
1: डॉक्टर साहब अब हमन ये जानना चाहबो एकदम साधारण से जवाब अपन के हमन ये चाहबो कि सुबह जब हमन उठथन वहां से लेके जब हमन रात के निद्रा अवस्था में जब जाथन तो ये बीच में हमन एकदम सामान्य कौन कौन से दिनचर्या होना चाहिए कि हमन लग का करना चाहिए एकदम छोटे से जवाब में।
0: ये बीच में जो है हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जान उठन ओकर बाद नित्य कर्म जो है वो करन ओकर बाद ब्रश व्रश करके थोड़ा देर बैठ के हमन एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम भी करन ओकर बाद थोड़ा देर बाद हमन खान पान करन खान पान करे के बाद नहा वहा के ना सब नहा वहा के खान पान करे के बाद आप जो है आपके जो डेली रूटीन है आपके जो काम धाम है वो करो शाम हो तक आप मतलब बहुत कम खाना है बीच में आप मतलब खाना है दोपहर में खाना है ज्यादा लंबा भूखा नहीं रहना आप ज्यादा भूखा रहो गैस वैस बने की ज्यादा समस्या रहती तो ओकर बाद शाम के 7 बजे तक आप लोग पूरा पूरा भोजन कर लेना है 10 बजे से पहले आप लोग सो जाना है इस तरीके से आप करत हो तो आपके दिनचर्या और जीवनचर्या बहुत अच्छा रही।
2: तो डॉक्टर साहब आजकल युवा संगवारी मन ज्यादा स्ट्रेस जो आप मन अभी बात करे तो कौन सी बीमारी के खतरा ज्यादा देखे जाते हैं
0: आजकल जो है बीमारी के पूरा लाइन है थायराइड है शुगर है हार्ट वाला है तो ये सब पूरा बीमारी है तो एक चीज नहीं है विटामिन डी B12 ये सब चीज है मोटापा भी है तो ये सब चीज जो है देखे जाए वो एक चीज के कारण होती वो चिंता के कारण जो है पूरा पूरा बीमारी की श्रृंखला आ जाए तो ये सब चीज से आप मतलब बचना है। युवा मतलब मैं यही आग्रह करूं कि परिवार के साथ रहो सब जन से बात करो अच्छा से हंसी खुशी से रहो और वो जो आप दिनचर्या है वो फॉलो करो बस।
2: तो आजकल आधुनिक जीवन शैली में कई प्रकार के चिकित्सा पद्धति अपनावत है आयुर्वेद कति काम करत है उपयोगी कति के तेला छोटे से बता दो
0: आयुर्वेद पूरा काम करत है आप जो है अभी खाना खाक भी आए हो अपन घर से वो आयुर्वेद जे आदमी अपन शरीर ला जान दरिस वो आयुर्वेद ला जान दरिस ऐसे बात है तो आप मतलब ये जीवन शैली ला जीना है तो वही है जो मैं शुरू से बोले आता हूँ कि आपके जो डेली रूटीन है तेला फॉलो करने है और जो चीज सीखे हो पुराना जमाना से वही चीज ला आप ये करना है क्योंकि बहुत रिसर्च हो मिले है ना आप ला इसने नहीं बता दे आपके देव भगवान है तो आप ला मानना है और आयुर्वेदिक भाषा में बोला जाए तो 10 दवाई बता दू मैं कि जेकर से आप मोटापा कम कर लो अपन स्ट्रेस कम कर लो लेकिन मैं चाहूं कि लोगन जो है अपन घर से ही ठीक हो घर से अपन खान पान से ठीक हो करके खान पान ही मेन चीज है और जेकर बार आजकल बड़े बड़े हेल्थ कोच भी बन गए लेकिन आपके घर से आपके परिवार वाला से और आपके पुरखा मन से बड़े हेल्थ कोच कोई नहीं हुआ जो आपके जो मौसम है आपके यहाँ के आपके गांव के आपके शहर के आपके राज्य के वो हर मौसम के हिसाब से अलग अलग खान पान है और मैं एक चीज आग्रह करूं कि आप अपन तिहार मतलब देखो और तिहार मन में जो खान पान हो है तेकर से जानो करके गोवर्धन पूजा जो हो है वो प्रकृति के पूजा हो है वो कोई भगवान से रिलेट नहीं है मतलब भगवान तो कृष्ण भगवान हरे लेकिन वहां पे साक्षात बोल देगी है कि गोबर ल रख के धान ल रख के ऐसे पूजा करे है मतलब पहाड़ में सब चीज है वही प्रकृति है और प्रकृति है सब कुछ तो आयुर्वेद इस तरीके से मानो आप मन और इस तरीके से अपन जीवन जियो।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के नाम ले जाने जाते हैं यहाँ अनेक प्रकार के जड़ी बूटी दवाई घलो मिलते फिर अपन आप से कोनो भी जड़ी बूटी जो दवाई बनते ओकर उपयोग नहीं करना चाहिए तो मतलब एक डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है तो एक बार आप का कहना चाहो।
0: हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये बिना डॉक्टर के सलाह के आप मन कुछ मत करो कारण कि अति जो है ना मतलब वो मतलब वर्ज्यते बोलते हैं ना तो आप हो सकते हैं कोई भी चीज खाने है करके ज्यादा खा दो जैसे अभी बीच में चली बेल पान वाला ट्रेंड चल रही थी ठीक है कई जन के स्वाद चल देते रही सोकर से ठीक है आस्था अलग चीज है लेकिन आप अति नहीं करना है
2: बिल्कुल
0: वो बहुत अच्छा चीज हुई लेकिन आप जो है ना ज्यादा खा दो भक्तिभाव में जो भी है तो वो चीज नहीं करना है आप

0: डॉक्टर की सलाह से पूछ के ही करना है। सब चीज अच्छा है, आप ज्यादा खा भी दोहू अपच हो ही तो बीमारी, तो खान पान में भी बीमारी हो सकती है। तो आप मतलब हर चीज एक संतुलित और संयम मात्रा में करना है तो सब चीज अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब मन हमारे युवाणी कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू श्रोता संगवारी मन से जुड़े हो,
0: हाँ।
1: तो हमारे युवा संगवारी मन का संदेश देना चाहो?
0: मैं अपन युवा संगवारी मतलब बोलूँ कि आप मन के जो पारंपरिक खेल है चलो आप खेलो, बिल्ला से फुगड़ी है ये सब करो। और मैं माता मतलब भी बोलूँ कि जो आप मन है जाके दूसरा जगह काम करा तो घर में ही अगर वो जो नॉर्मल काम है जिल्ला जैसे है जाता पीसे वाला काम जिल्ला आप मन है गार्डन में बैठ के करा रहा था, हाँ वो चीज अगर आप घर में भी करू तो वहू है मतलब फायदेमंद रही। और लड़का मतलब मैं बोलूँ कि आप मन खेलो यार, जितना हो सके वो खेलो, जो डंडा पचरंगा ये जो बोलते वो खेलो, पेड़ में चढ़ो सब करो, तौरो वौरो नदियाम नहाओ सब करो,
2: हाँ।
0: तो एकर से आपके शरीर अच्छा फुर्तीला रहे और सब चीज रहे, तो युवा वाला युवा टाइप के जीना है,
2: हाँ।
1: तो डॉक्टर साहब आज युवानी कार्यक्रम के माध्यम ले आज हमारे संग में जुड़े हो, अतिक बढ़िया जानकारी दे अपन कीमती बेरा निकाल के हमारे स्टूडियो में आज आये, तेकर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद और युवानी के पूरा पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संगवारी हो आज के क्रम पहुना जोहार मा हमारे विषय रहिस हवे आधुनिक जीवन शैली के युवा स्वास्थ्य ऊपर प्रभाव, जिखर बर हमर संग में जुड़े रहिस हवे डॉक्टर गुलशन सिन्हा जी, जेन मन हा आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा ऊपर बढ़िया जानकारी दिन हवे। तो एकरे संग क्रम पौना जोहार इहे तक और एकरे संग हमर जम्मो झनला देवाओ विदा, नमस्कार।
0: नमस्कार
3: संगवारी हो क्रम पहुना जोहार में अभी आप मन सुने आयुर्वेदिक डॉक्टर गुलशन सिन्हा ले नीलेश साहू और थनेश्वरी बघेल के गोड़ बात।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
5: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा,
4: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ,
5: आज ही ऑपरेशन आज ही छुट्टी,
4: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेलीबांधा रायपुर।
6: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in। जी
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
8: क्यों लेकिन मैं
7: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
8: डिजिटल अरेस्ट?
7: 1 लाख दो बन जाओगे।
8: इतने पैसे?
7: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
8: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
9: हेलो मम्मा,
10: आरबीआई कहता है
11: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: संगवारी हो गोड बात तो आगो करबो, फिर चलो सुनथन ये सुग्घर माटी के गीतला।

0: बेल तरी बेलन संगवारी हो ये सुघर माटी के गीत ला अपन सुर सजारी ने विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार मन
1: और सुने पर चेहरीन हमने संगवारी मन शीतला नगर दुर्ग ले शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस रिहान मन डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये मन पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मन मेघापारा चिल्फी ले शुभम पटेल दिव्या दीपांजलि दीपक संतोषी रामकुशल दीपांशु पटेल मन
0: संगवारी हो जब गांव के गोठ आते गांव के जम्मो जिनिस आँखी में झूले लग जाते जम्मो सुरता हा संहत दिखे लग जाते और ऐसने ही हमर करा चिट्ठी पाती के माध्यम ले अपन गांव के जम्मो जिनिस ला हमर करा भेज दिहावे भाई।

0: हमर संगवारी मन ह हमर खास क्रम आज के हमर खास क्रम हमर गांव के माध्यम ले त देरी नहीं करन और झटकुन शुरू करथन आज के खास क्रम क्रम हमर गांव। त वर्षा मोर हाथ में पहले यह पाती आ है।
1: हाँ।
0: पाती हावे पार्वती सिन्हा के संगवारी मन हावे ग्राम पोस्ट कनसिंघी तहसील छुरा जिला गरियाबंद ले और संगवारी मन का लिखे जानथस संगवारी मन अतका सुघर सजा के भेजे हावे कि हमर पैतृक गांव ग्राम नरतोरा जेहा मोर ससुराल हरे इहां मोर लइका मन हा बड़े होए हावे खेले कूदे हावे हमर सास ससुर के गांव हरे लेकिन अभी घला हमन हा ग्राम अभी हमन हा ग्राम कनसिंघी में रथन जेहा तहसील छुरा गरियाबंद जिला मा हावे हमर गांव हा छुरा ले पूर्व दिशा मा 13 किलोमीटर की दूरी मा बसे हावे कहा थे। और संगवारी मन आगू लिखते हमर गांव मा 12वीं तक ले स्कूल हावे आगू कॉलेज के पढ़ाई बर छुरा गरियाबंद या फिर रायपुर जाए बर लगते हमर गाँव के मनखे मन मा नोनी शिक्षा ला बड़ महत्व देते सियान बाबा मन हा सियान बाबा मन के कहना हावे कि एक नोनी हा पढ़ी त घर भर हा शिक्षित होही हमर गांव मा जम्मो तीज तिहार ला मिलजुल के एक संग्रह मनाथन हमर गांव के पहुंचती मा बड़े जान पहाड़ दिखते जेहा जातिया तोरा मा हे जिहा जतमई माता बिराजे हे हमर गांव के प्रवेश द्वार ले हमर गांव के शीतला माता के मंदिर दिखते हमर घर करा बड़ अकन सरई पेड़ हे ओकर आघू मा नर्सरी हे जिहा नींबू और करौंदा मिलथे हमर गांव जंगल बीच में है और हमर गांव के बुढ़ती तनी बांध है जी हाँ 12 महीना पानी रथे इसे कहा थे हमर गांव में नवरात्रि तिहार हा बढ़िया मनाथन इसे कहा थे। और आगू लिखते संगवारी मन हमर गांव में सिद्ध बाबा है जे हा हमर गांव के पहुंचती में है हमर गांव में सब सीधा साधा लोगन है मैं हाँ आपन के आकाशवाणी के कार्यक्रम जम्मो कार्यक्रम ला सुनता हूँ नानपन ले कभू देखे के शौक रही से कि कैसे बोलते तेकर आवाज है बढ़िया रहते इसे कि के महू ला गाना गाए के शौक हावे लेकिन जिंदगी और घर परिवार की जिम्मेदारी के कारण ये पूरा नहीं कर पाया हूँ जस गीत गाथा गांव में ऐसे कहा थे संगवारी
1: थनेश्वरी मोरो हाथ में पाती हवा संगवारी मन के और ये संगवारी हमर हवा प्रतापगढ़ सलिया ले और संगवारी हमें हवा हमर शिव शोभन सिंह ठाकुर नीलेशी ठाकुर मन
0: का लिखे संगवारी मन
1: लिखे है हमर गांव प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत सलीहा के आश्रित गांव हरे जेन हा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में हवे हमर गांव हा बिलाईगढ़ ले दक्षिण दिशा में 16 किलोमीटर के दूरी में बसे हवे हमर गांव में 5वीं तक ले स्कूल हवे और आगू के पढ़ाई भर सलीहा जाए बर लगते और कॉलेज के पढ़ाई भर बिलाईगढ़ जाए बर लगते हमर गांव के मनखे मन नोनी शिक्षा ला बड़ महत्व देते सियान बाबा मन के कहना है कि नोनी पढ़ी तक घर भर शिक्षित होही हमर गांव में जम्मो तीज तिहार ला मिलजुल के एक संग्रह मनाथन और हमर गांव के बेरुत्ती माँ ठाकुर देव बिराजे है जेन हा सबके मनोकामना ला पूरा करते हमर गांव के बेरबुर्ती माँ बहुत बड़का जंगल हवे जी हाँ मऊहा तेंदू चार चिरंजी हर्रा बहेरा मिलते सरई पान के दोना पत्तल बनाथन और जंगल के चिड़ई चुरगुन के चहचहाई ला सुनबे ता हृदय ला गजब के शांति के अनुभूति होते और हमर गाँव के जंगल तीर माँ एक मुनि चुआ हवे जी हाँ हर बछर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिन के मेला भर आते जेला देखे बर बिकट दूर दूर के मनखे मन आते तसंगी हो बेरा निकाल के हमर गांव के मुनि चुआ मेला देखे बर खच्चीता हो आउ मोर हाथ में पाती हवे बिरनपुर खुर्द गंडई ले अजित कुमार जंघेल कुंज बिहारी जंघेल मनीष ओशिका और नैना जंघेल मन के
0: का लिखे भाई संगवारी मन
1: लिखे है हमर गाँव बिशनपुर खुर्द गंडई ले उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दूरिया मा नानचुन गांव हरे जेन सुरही नदी के तीर में बसे हवे नानचुन गांव के सेती ज्यादा सुविधा नहीं है एक ठन आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल हवे जहाँ और ज्यादा सुविधा भर हाट बाजार भर हमला गंडई जाए पड़ते संगीत संगवारी मल्ला और बता दे थन जे आप मन रेडियो में द्वारिका यादव के गीत सुनते हो जेन गुरु जी हा हमर गाँव के प्राइमरी स्कूल मा यहाँ के लयिका मल्ला शुरू ले पढ़ाते पढ़ाए लिखाए हवे ऐसन हवे हमर गांव बिशनपुर खुर्द हा
0: भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है संगवारी ये तो आप मन हा बहुत बढ़िया अपन गांव के बारे में सुखर अकन जम्मो सुख सुविधा ला हमर तीर पठोए हवा संगवारी हो गांव के नाम ही अपन आप में बड़ा सुकून देते भाई ता सोचा ना वहाँ रवैया मनखे मन हा कतिक सुकून ले भरी जिंदगी जीवत हुई है नहीं बितावत हुई कैसे वर्षा
1: हाँ
0: सुकून की जिंदगी मतलब ये नहीं कि तान देके खटिया माँ आराम से सुते हुई जबर के मेहनत

घलो पसीना म दिखथे संगवारी हो। सूत उठ के बड़े फजर खेत डहार एक चक्कर घूम के रोज आते, चाहे कोनो फसल बोए या फिर झन बोए। गांव की जिंदगी सुने म बड़ सरल हेवय, फिर रहिबे त जनाथे कि अभाव के जिंदगी म घलो सुकून हावे, मेहनत हावे। प्रकृति के बीच रहे के लाभ तो सब ल मिलथे, फिर ज्यादा लाभ गंवई के मन उठाथे। प्रकृति के दान करे फल फूल पान पत्ता लकड़ी सबो उपयोगी जिनिस मन के मुफ्त में लाभ उठाथे। ओमन ह सबो लाभ मिलथे, जेखर ले आर्थिक सहायता घलो मिल जाथे। औ ते औ संगी हो, जंगल तीर गांव रहे ले चिरई चिरगुन के मीठ गुरतुर बोली और रुख राई के जूर छैहा ले अंतसा जुड़ा जाथे। संगे संग उत्ती बुढ़ती सूरज के किरण संग चाह के स्वाद के अलगे आनंद। डोंगरी पहाड़ के बीच मा सूरज के किरण कल कल कर रव करत झरना लागथे, मानो कोनो गीत गुनगुनावत हावे। हवा के हिलोर मारत रुख राई है ऐसे लागथे जैसे झूमे नाचे लागत है। प्रकृति के ऐसन अद्भुत दृश्य गांव के गोदी में बसे लोगन ही पाथे। भले सुख सुविधा के

0: बुढ़ती सूरज के किरण संग चाहा के स्वाद के अलगे आनंद। डोंगरी पहाड़ के बीच मा सूरज के किरण कल कल कर रव करत झरना लागथे, मानो कोनो गीत ह गुनगुनावत हवे। हवा के हिलोर मारत रुख राई ह ऐसे लागथे जैसे झूमे नाचे लागत हे। प्रकृति के ऐसन अद्भुत दृश्य गाँव के गोदी में बसे लोगन ही पाथे। भले सुख सुविधा के अभाव रहते फिर सबो रद्दा रेंगैया संग हाल चाल की दुभाखा, पड़ोसी संग दुभाखा ले मन हा मार जाते। बिहनिया के काम बूता ले बिहान होते और उही बूता ले सांझ घलो ढर जाते और इही रोज दिन के दिनचर्या ले जिंदगी हा पहावत रहते। अतका सुग्घर अपन गांव के बारे में वर्णन करे हा आप जम्मो श्रोता संगवारी मन हा, तेखर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगो घला नवा विचार के संग आपके पाती के हमला अकुर रही आस लगाए रहो, जरूर पठो हो ता आगो दरी हमर कर ज्यादा ले ज्यादा पाती पठो हो। तेकर बर हमर पता लिखाओ आप मन हा, हमर पाती के माध्यम ले अपन गांव के बारे में लिखू। तेकर बर हमर पता हवे, हमर पता हवे
1: क्रम हमर गांव युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ और पिनकोड हवे 492001
0: और ईमेल के माध्यम ले हमारे तीर अपन गांव के बारे में भेजू। तेकर पर हमारे पता हवे AIRYOUTH9@gmail.com और हमर गांव के कोड हवे Y11। तो आज के क्रम हमर गांव इहे तक।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
0: वर्षा तै हाँ, जब ले आए हस तब ले कहत रहस कि घाम अब्बड़ लागत है, यहाँ हाथ पैर हा तीब गए है, हा दे अब अति गर्मी हावे, ऐसे वैसे के मार झरावत रहस भाई।
5: हाँ थानेश्वरी, 2 मिनट पंखल बंद कर दो ना तो हालत हा खराब हो जाते। बिना पंखा कूलर और AC के तो आजकल कोनो नहीं रह सका है।
0: हाँ भाई, वो तो बात हावे संगवारी। फिर वर्षा, ये AC पंखा कूलर है ना, पेड़ के छैया के आगे कुछ नहीं है भाई। पेड़ के खाले माँ छैया माँ जब बैठबे ना तो जो सुकून मिलते ओला शब्द में बयां करना बड़ा मुश्किल हावे।
5: सिरतुन में और ऐसे सुकून बरना ज्यादा ले ज्यादा पौधा लगाना चाहिए।
0: तभी तो जुड़ छैया मिली।
5: हाँ।
0: और मनखे हा बने सुस्ता ही, चिरई चिरगुन सुस्ता ही।
5: हाँ।
0: सिरतुन में आज पौधा लगाबो ना तभी तो कुछ साल बाद में वो हा पेड़ बनी।
5: हाँ।
0: और ठंडा छाव मिली हमला।
5: हाँ संगवारी हो, ज्यादा ले ज्यादा पौधा लगावा और जीव प्राणी और धरती दाई संग अपन ल घलो जुड़ छैया ले शीतल करावा।
0: वर्षा, ते एक ठन बात जानथस
5: का
0: कि पेड़ पौधा ज्यादा रही तो का है, पौधा हा माटी ला बांध के रखते, पौधा हाँ। के जरी हा जेखर ले माटी के कटाव ज्यादा अपरदन घलो नहीं होवे, माटी हा कटाव होए ले बांध जाते और पानी के जो बहाव होते ओखर ले माटी हा काटे ले बांध जाते। ता संगवारी हो, गुड बात तो हमर ही करा सिराल लगी भाई।
5: हाँ।
0: काबर की जाए के बिरा हुआ थे।
5: हाँ।
0: ता जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम ला। संगवारी हो, काली के कार्यक्रम युवाणी सजी हिंदी में जेमे आप मन सुनो जश्न ए आवाज औ कवाली और यही गुड बात संग आज के युवाणी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
5: और वर्षा गोस्वामी ले देवा विदा।
0: नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बज रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में

0: सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करीन मुलाकात। बतेन के बस्तर मा पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप मा विकसित करे जावत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा कहीन कि छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर बर प्रेरणादायी है। औ आकाशवाणी के 90 पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली बिहनिया वाकाथन के आयोजन करही। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात करीन। ए मौका मा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र मा होवत सकारात्मक बदलाव, जन कल्याणकारी पहलू और विकास काम ला लेके गोट बात करीन। मुख्यमंत्री हा श्री साय ला बताइन कि बस्तर क्षेत्र मा पुराना सुरक्षा शिविर मनला अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप मा विकसित करे जावत है, जिहां गांव के मनखे मनला स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और आने आने शासकीय योजना ले जुड़े सुविधा एक ही जगह मा उपलब्ध होवत है। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय गृह मंत्री ला बस्तर क्षेत्र मा चलाए जात मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे मा घलो जानकारी दीन। ए मौका मा राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो मौजूद रहीन। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरिया दिन आज रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर के दौरा करीन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित एक केंद्र मा उमन हा महिला स्व सहायता समूह डाहर ले करे जात नवाचार और आजीविका गतिविधि के निरीक्षण करीन। ए दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हा विशेष रूप ले माइलोगन मंडाहर ले संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और अच्छा बाजार लिंकेज के तारीफ करत हुए एला देश भर बर एक अनुकरणीय मॉडल बताइन। केंद्रीय राज्य मंत्री हा छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल ला आने राज्य मन बर प्रेरणा स्रोत बतात हुए अधिकारी मन ला ए योजना के और ज्यादा विस्तार ऊपर जोर देबर कहिन। ए बेरा मा श्री पासवान हा नवा रायपुर मा संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी के घलो सराहना करीन। एकर पहली केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान हा राज्यपाल रमन डेका ले लोकभवन मा सौजन्य भेंट करीन। ए बेरा मा राज्यपाल हा शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उखर स्वागत और सम्मान करीन। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हा आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा मंत्रालय ले बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करीन। हाई स्कूल के परीक्षा ए बच्छर 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 71% विद्यार्थी पास हुए है। केंद्र सरकार हा कहीन है कि पूरा देश मा पर्याप्त मात्रा मा कच्चा तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस के उपलब्धता सुनिश्चित करे बर प्रभावी कदम उठाए गए है। आज नई दिल्ली मा पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम ऊपर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग ला संबोधित करत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हा कहीन कि पूरा देश मा घरेलू एलपीजी के आपूर्ति सुचारू रूप ले चलत है और कोनो ला भी डिस्ट्रीब्यूशन शिप मा स्टॉक खत्म होए के कोई सूचना नहीं मिले है। चिकित्सा शिक्षा विभाग हा प्रदेश के सिकल सेल संस्थान मनला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप मा विकसित करे बर लगभग 85 रुपया के राशि स्वीकृत करे है। एकर तहत सिकल सेल संस्थान मा उच्च स्तरीय आधुनिक लैब के निर्माण करे जाही, जेखर ले मरीज मनला तुरते ही सही जांच रिपोर्ट मिल सकी और समय मा उखर इलाज शुरू हो सकी। एकर अलावा विशेषज्ञ डॉक्टर के उपलब्धता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा और जेनेटिक काउंसलिंग जैसन सेवा घलो एके छत के नीचे मिल सकी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कहिन है कि ए संस्थान इलाज के संग रोकथाम और जागरूकता के दिशा में घलो मील के पत्थर साबित होही। नवजात शिशु मन के स्क्रीनिंग ले लेके वाहक दंपत्ति के काउंसलिंग तक एक केंद्र छत्तीसगढ़ में सिकल सेल उन्मूलन अभियान ला नवा गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा घलो अपन सुरक्षा में लगे फॉलो अप और काफिला में शामिल गाड़ी मन के संख्या ला कम करे के निर्देश दे है। उमन कहिन है कि वर्तमान वैश्विक संकट और ऊर्जा संरक्षण के आवश्यकता ला देखत हुए संसाधन के संतुलित उपयोग समय के मांग

0: थे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह काली 15 मई के आयोजित करे जाही। समारोह के अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका कर ही उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होही। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थी मल्ला उपाधि दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़बो बाचे समाचार कोती। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली 15 मई के वाकाथॉन के आयोजन करही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर हा बताइन कि ए वाकाथॉन मा आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकाथॉन के शुरुआत बिहनिया 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स ले हुई। ए वाकाथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और OCM चौक होवत वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुई। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के याद में करे जाते। राजनाथ गांव के वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव हा सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करत हुए 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते हे। ज्ञानेश्वरी हा स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठा के अच्छा प्रदर्शन करी। ए उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा ज्ञानेश्वरी ला बधाई और शुभकामना दीन। उमन कहिन कि ज्ञानेश्वरी यादव के सफलता पूरा प्रदेश के युवा विशेषकर बेटी मन पर प्रेरणादायक है। जांजगीर चांपा जिला के भवरतरा गांव में एके परिवार के 4 लोगन मन के हत्या करे के मामला आगू आए है। ए मामला में पुलिस हा 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जानबा के मुताबिक शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलत पिता बेटा मिलके अपने परिवार के 4 लोगन मन ऊपर सोवत समय टंगियाले हमला करके उखर हत्या कर दिन। घटना के जानकारी मिलत ही पुलिस के आला अधिकारी मौका में पहुंच के जांच शुरू करीन। बताए जात है कि मुख्य आरोपी हा 15 बच्छर पहली अपन छोटे भाई के हत्या करे रहीस और 1.5 बच्छर पहली जेल ले रिहा हो रहीस। उन्हें गौरेला पेंडा मरवाही जिला के ग्राम दौंजरा के बिझरवार मा घलो जमीन के लड़ाई झगड़ा के चलत एके परिवार की 2 पक्ष मा होई विवाद मा 7 लोगन घायल हो गए है। घायल मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है। पुलिस मामला के जांच करत है। दुर्ग पुलिस साइबर ठगी के मामला में कार्रवाई करत हुए जिला में 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारक मन के खिलाफ FIR दर्ज करे है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल ले मिले जानबा के आधार में करे गए है। जांच में सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आने आने बैंक मन के खाता में साइबर ठगी के रकम के लेन देन के सबूत मिले है। पुलिस आ बताइन कि एक खाता के इस्तेमाल ठगी के रकम ला छिपाए और ट्रांसफर करे मा करे गए है। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में आने आने डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आवेदन के अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित करे गए। सिपेट रायपुर के प्रमुख डॉक्टर आलोक साहू हा बताइन कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर 7 जून के देश भर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौ फिर। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करीन मुलाकात। बताइन कि बस्तर में पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप में विकसित करे जावा थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा कहिन कि छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर पर प्रेरणादायी है और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के मौका में आकाशवाणी रायपुर काली बिहनिया वाकाथॉन के आयोजन करही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर

पूर्व केंद्र हैं, 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: ये भारत यूएई देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जते स्तः। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन वर्यः केरलम राज्यस्य मुख्यमंत्री भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं अमर श्रीवास और साथी।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर। सुना

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोट स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे।

0: लोक संगीत आप सुन रहे थे, कलाकार थे अमर श्रीवास और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं, अगला प्रसारण थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों, जनकल्याणकारी पहलों और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को बताया कि बस्तर क्षेत्र में पुराने सुरक्षा शिविरों को अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास

0: दूसरे दिन आज रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं के और अधिक विस्तार पर जोर देने को कहा। इस मौके पर श्री पासवान ने नवा रायपुर में संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी की भी सराहना की। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने राज्यपाल रमेश डेका से लोकभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कल 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के MSP में प्रति क्विंटल 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय से बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। हाई स्कूल की परीक्षा में इस वर्ष 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी अपनी सुरक्षा में लगे फॉलोअप और काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकटों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की मांग है। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कुछ जनप्रतिनिधियों ने आगामी कुछ समय तक बड़े वाहनों के बजाय ई रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अनुशंसाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली और अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने डेटा आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1,880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकथन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकथन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वॉकथन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और OCM चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजनांदगांव की वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जांजगीर चांपा जिले के भवंतरा

में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पिता पुत्र ने मिलकर अपने ही परिवार के चार सदस्यों पर सोते समय टंगिया से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के ग्राम दौंजरा के बिरझरवार में भी जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में सात लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

0: मारवाही जिले के ग्राम दोंजरा के बिरझरवार में भी जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका भी विस्तारित है। इसके असर से कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से 3 और गुरुग्राम तथा नासिक से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोंडागांव में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय भवन का भूमि पूजन किया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित GD कांस्टेबल और GD राइफलमैन की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर के बंगोली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने आज पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई है। चांपा रेलवे स्टेशन पर चौथी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। नारायणपुर पुलिस ने माण मैत्री चौपाल कार्यक्रम के तहत तेरदुल, बिंजली, सोनपुर और कुड़मेल गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवाओं को माण मित्र के रूप में नामित किया गया। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे थे। दुर्ग पुलिस ने सुने मकान में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 13 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की गई है। और संस्कार भारती द्वारा कल से राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए नितिन मुकेश और अनुराधा पौंडवाल की आवाजों में रविंद्र रावल का लिखा गीत। संगीत है बाबुल बोस का,

गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ, यह फिल्म का नाम। आवाज है उदित नारायण की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत उत्तम सिंह का। लीजिए सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है हीना।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं, लीजिए सुनिए चौपाल।

0: मोनिका दीदी राम राम।
1: राम राम रोशन भाई और संगे संग कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: रोशन भाई
0: हाँ?
1: देख हमर किसान संगवारी मन बड़ मेहनत करते भाई, फसल उत्पादन करबो चाहे फिर वो खरीफ के फसल होए, रवि फसल होए, दलहनी फसल होए, तिलहनी फसल होए, सब वरना बहुत मेहनत लगते। और ये रहते भाई कि हमर किसान संगवारी मन हर छोटे बड़े बात के ध्यान रखत, सारी सावधानी जानकारी ला अपनावत, खेती किसानी के काम बुतला करते।
0: सही कहे मोनिका दीदी, देख थारी में जब आहार आते ना तो वही हार हमार स्वास्थ्य और स्वाद दोनों हमार बर लाभ के होते। फिर सियान मन एक बात कहे कि जतका अनाज ला पकाए में समय लागते, रांधे बनाए में समय लागते, ओकर ले कई गुना समय अनाज ला उत्पादन करे में पैदावारी करे में लागते, अन्न उत्पादन करे बर जन धन सबोला लगाए ला लागते।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: रोशन भाई,
4: हाँ?
3: ते अभी जन धन सबके बात करत रहे ना, तो सिरतोन बताए हमार किसान संगवारी मन धन गला लगाते,
4: हाँ?
3: मेहनत गला करते,
4: बिल्कुल।
3: और जब जरूरत पड़ते तो सबो जन सकला के घलोक मेहनत करते,
4: हाँ?
3: नवा तकनीक ला अपनाते, जितना हो सकते उतना सावधानी रखते, जानकारी बटोरते। मैंने देखे जाए तो खेती किसानी में मतलब माटी के परीक्षण ले लेके,
4: हाँ?
3: भंडारण तक के काम बुतला हमारे संगवारी मन बड़ जतन ले करते।
4: सही कहे दीदी। अब भंडारण के बात करें ना तो देख, भंडारण अरे सुरक्षित रखना है ना, चाहे वह दलहनी फसल हो, तिलहनी हो।

0: हुआ है ना भाई। अब खास करके रबी फसल के भंडारण, जैसे गेहूं है, चना है, मसूर, मूंग, अरहर, ये सब वो अनाज के भंडारण सुरक्षित स्थान में करना बहुत जरूरी है। काबर की रबी के फसल की पूर्ति साल भर करे लगते है ना भाई। जैसे देख, दाल के रूप में हम साल भर ओकर उपयोग करथन, फिर जो उत्पादन है ओला हम एक रबी सीजन में ही ले सकते हैं।
1: अच्छा रशन भाई, कभी कभी विचारता हूँ, जैसे अभी गर्मी के बेरा है ना, हम माई लोग इन मना अभी अपन घर पर कतकोन जिनिस ला भंडारित करते हैं।
0: हाँ।
1: भाई जैसे अच्छा थान बनाथन तो वो हमारे मतलब मुंह के स्वाद ला तो बढ़ावे करते, स्वास्थ्य पर घलोक लाभ के होते, संगे संग कतकोन झन मना गेहूं धोके बने सुखा के वहां नमी झन रहा है इसे बने जगह में रखते। फिर जब हमारे किसान संगवारी मन अनाज ला भंडारित करते तो मन ला कतकोन बात के ध्यान रखे पड़ते। देख सबले पहली तो ये बात के ध्यान रखना होती है कि भाई इतना अकन अनाज है तोला जब भंडारित करत हैं तो नमी वाले जगह झन हुए। फिर कीड़ा बीमारी ले बचाल पड़ते, चूहा मन ले बचाल पड़ते। मैंने देख छोटे छोटे बात के जानकारी लेके, मैं कहती हूँ ना जानकारी और सावधानी जिन है ना एक दूसरे के संगे संग चलैया जिने से,
0: बिल्कुल
1: एक माँ उमन सावधानी भी रखते, जानकारी लेके वो काम बतला करते।
0: सही कहे दीदी। और देख जैसे कहे ना कि गर्मी के दिन माँ बहुत अकान ला हम हाँ मतलब
1: भंडारित
0: करके रखते हैं। अब छोटे छोटे खाए पिए चीज जैसे आमा खुला है ना, आमा के दिन चला थे।
1: हाँ।
0: और आमा कोई खोइला ला घला हा ओला भंडारित करके रखते, जे हा वो दिन में बड़ा स्वाद आते है ना,
1: साल भर चल जाते।
0: हाँ, साल भर चलते।
1: गेहूं ला मन करथन, चाउर मन ला इसने भंडारित करके रखते। भाई ये हमारे देश के महिला मन के ना बहुत बने सुघर आदत है कि कतकोन जिनिस ला उमन ना साल साल भर भर इकट्ठा करके।
0: हाँ, इकट्ठा करके रखते। और सबले बड़े बात ये है दीदी के भंडारण जब हम नहीं करबो तो आगू हम ओकर उपयोग कहाँ कर पाबो है ना भाई। आ भंडारण करे ले जो हमारे मार्केट है, बाजार है, ओ मन मा बारो महीना वो जिनिस मिले जेकर ले हमला जरूरत हो में हाँ फट ले खरीद लेवन है ना भाई।
1: अब जैसे हमन घरेच में भंडारित करथन में बताता हूँ तो हमन का करथन नमी झन रहा है, कीड़ा बीमारी झन हुआ है।
0: हाँ।
1: उमा फफूंद झन लगा है तो मन ना उमा कुछ कुछ गोली दवाई वगैरह डाल के रखते। हाँ। और बीच बीच में जब भी ओला उपयोग करना तो सफाई करत रही थन। अब ये सब बात ला हमारे किसान संगवारी मन घलोक जानते, भाई ओमन ला तो बाजार में बेचे बर चाहिए।
0: हाँ।
1: वो हिसाब ले ओमन भंडारित करते। और एक चीज और मन ध्यान देते कि जहाँ जगह में हमन भंडारित करत हन वहां से ना मने बाजार तक जाए के रद्दा आसान हुआ है।
0: हाँ।
1: ये बात के ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाते।
0: और देख जैसे कि है ना छोटे छोटे जिनिस मन के भंडारण करना तो घर में घला पारंपरिक रूप ले जो उन्हें तो पहले छोटे ले कोठी बनाए है ना भाई। वो कोठी में अनाज मतलब भर दे, ओकर ऊपर माटी और गोबर ले लेप लगा दे, जेकर ले फफूंद कीड़ा बीमारी में एमन हा नहीं लगा। संग माँ गेहूं माँ जैसे सुरक्षित रखना है तो माँ कीट उट झन लगे, एक बार सूखा नीम के पत्ती उमा डाल दें जेकर ले उमा कीट मन है नहीं लगे है ना। आओ कई ठक आओ ढंग होते जैसे कि कड़वा तेल सरसों के तेल है ना, उड़ा लेप डाल के और ये कर दन ओकर ले घला जो उन्हें मने सुरक्षित रहते।
1: कतकोन जगह ऐसे होते ना कि कतकोन साग मल हमन सुखा के बने रख देते हैं।
0: हाँ, खोइला बना के।
1: हाँ, खोइला बना के जैसे अभी तो बता रहे थे जैसे जिमी कांदा है ओला भी हमन बने उबाल के सुखा के धर देते ना, कभी बन करते तो बने बना के खाथन भी और खवाथन भी। फिर इसने ही कहा है कि जिन किसान संगवारी मन है ओला भंडारित करे के एक और कारण होते कि वो ना अनाज के थोड़ बहुत हिस्सा ला बीजा वर्ग लोग रख लेते।
0: बिल्कुल सही, तभी तो आगु जो उन्हें खेती है बाढ़ी उत्पादन है हो ही है ना। कतको किसान संगवारी मन है चूहा कीट ले बचाए बर जो उन्हें बीज ला नहीं धुआं जगह में रखते है ना, जेकर ले ओकर धुआं पर ले जो उन्हें तो कीट मुसवा उसवा मन है ओला नुकसान नहीं पहुंचावे।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुंदर किसान वाणी प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: उसमें एक तो है कि सीधे संपर्क में पशुओं के आने से हुआ, जैसे कि कुत्ते के काटने से, बीमार कुत्ते के रेबीज। दूसरा, कई बार अगर हम गाय का दूध अगर पी रहे हैं और गाय में कुछ बीमारी ऐसी है, जैसे उदाहरण के लिए ब्रुसेल्ला, तो उसके दूध पीने से भी, कच्चे दूध के सेवन से जो कि पॉस्चराइज नहीं है, उसके पीने से भी हो सकता है। और कई बार सावधानी नहीं बरतने से और उसके मल मूत्र के संपर्क में जो बीमार पशु हैं या उनके किसी भी स्राव के संपर्क में आने से भी रोग हो सकता है। तो ये रोगों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका फैलाव कैसे होगा।
1: कभी कभी लोगन मन जानते होकर बाद भी ये मान के चलते कि कुछ नहीं होए, हमन तो रोज एकरसन रथन, एकरसन बैठन उठन, है ना, लड़का मन भी छूते, मतलब देख के भी अनदेखा करे जाते। तो ऐसे कौन कौन से समूह हैं व्यक्ति मन के, जैसे लड़का है, सियान है, जवान है, इनमें कौन से समूह ज्यादा प्रभावित करते रोग मन हा, और ये बीमारी मन कितना गंभीर है पशुजन्य बीमारी?
0: समूह जो सबसे ज्यादा रिस्क में रहता है वो है जो बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, या जो सियान आदमी है जो 65 साल से ऊपर के, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी कारणवश उनमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है, जैसे किसी को थेरेपी लेते हुए, तो वो उसमें उस वजह से उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण उनमें भी इस तरह के रोग जो असामान्य रोग हैं, जो ऐसे किसी स्वस्थ इंसान में होने की संभावना होगी उसमें भी, लेकिन कम है, इनमें होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इस तरह के लोग हैं जो रिस्क में रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो किसान हैं जो लगातार पशुओं के संपर्क में रहते हैं, या डेयरी या पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले जो समूह है, कामगार हैं, और पशु चिकित्सक भी, और पशु चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए और भी लोग, इनमें भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये लगातार बार बार संपर्क में आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पशुजन्य रोग की बात करें तो हमारे देश में मुख्य तौर पे कौन कौन से रोग प्रमुखता से पाए जाते हैं जिन्हें पशु सीधा सीधा मनुष्य में आते हैं?
0: अगर जैसे जीवाणु जनित रोग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हम सुनते भी हैं नाम, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया से होता है, बहुत ही तीव्र बीमारी है, छड़ रोग भी बोलते हैं इसको।
1: जी जी,
0: जो बीमारी होने के वो कुछ ही समय के 4-6 घंटे 10 घंटे के अंदर पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उसके मुंह से खून निकलता है, गुदाद्वार से भी खून निकलता है। तो ये रोग की संभावना रहती है कि अगर एंथ्रेक्स से हुआ है तो ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है जूनोटिक है। दूसरा ब्रुसेल्ला रोग है, ब्रुसेल्ला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके चलते किसानों को बहुत क्षति उठानी पड़ती है, और आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ में ये स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरा है, और स्वास्थ्य प्रशासन को भी एक बहुत चिंता का सामना करना पड़ता है। ग्लैंडर्स है, ग्लैंडर्स घोड़ों में होता है, तो ये भी एक बहुत ही घातक जूनोटिक रोग है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, इसके पहले ये माना जाता था कि जो जानवरों में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, वो इंसानों में नहीं होता, लेकिन समय के साथ में जलवायु परिवर्तन और बहुत सारे कारकों की वजह से अब ये पाया जाने लगा है कि जो पशुओं की जो का टीबी है वो भी इंसानों में प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा लेप्टोस्पायरा है, प्रभावित पशु के, बीमार पशुओं के मूत्र और मल या दूसरे साव के संपर्क में आने से भी हो सकता है। और ईकोलाई, ये भी अगर दूषित खाद्य है तो उसके वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये एक मुख्य मुख्य ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, और ऐसे तो रोगों की संख्या बहुत है, जैसे कि अभी आपने हाल में सुना होगा कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा, जिस बर्ड फ्लू भी कहते हैं जिसको,
1: जी जी जी।
0: तो ये मुर्गियों से कई बार प्रवासी पक्षियों के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर कई बार पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से उसमें आए, और फिर वो रोग होने के बाद में जो पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोग हैं और जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग हैं वो भी खतरे में रहते हैं। तो ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जूनोटिक रोग है, जो कि जिसमें की क्षमता है कि एक पैंडेमिक का भी एक खतरा पैदा कर सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी आपन थोड़ा देर पहले कहे हो कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हर जानवर से मनुष्य में घुलवात है करके, तो ऐसे और कौन कौन से कारण हैं जिसका कारण आजकल पशु धन से मनुष्य में ओकर बीमारी मन बहुत ज्यादा

0: मात्रा में आय के शुरू हुआ है।
1: देखिए, कारण तो यह है कि जनसंख्या के बढ़ने से, बढ़ते शहरीकरण की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से, और आवागमन के तेज साधन भी हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यात्रा है, पर्यटन है, ये सब इस खतरे को और बढ़ाए हैं। और साथ में जंगल के कटने से बहुत सारे ऐसे जो जंगली क्षेत्र हैं जो जहाँ पे की विकास परियोजनाएं चालू हुई, तो उसके चलते कई सारे रोग जो हैं वो इंसानों के बीमारी पैदा करने का खतरा बढ़ रहा है। और अवैध जो व्यापार है, अवैध वन्य जीवों का अवैध व्यापार है, ये भी एक बड़ा कारण है कि नई नई बीमारियां, नए नए जो रोग हैं
0: जी,
1: वो दिखाई पड़ने लगे हैं। और कहा भी जाता है कि हर 10 संक्रामक रोग में 6 की प्रकृति जूनोटिक है, मतलब हर 10 संक्रामक में 6 जो है पशुजन्य बीमारियां हैं, और हर 4 जो उभरते नए रोग हैं उसमें 3 जूनोटिक रोग हैं, ये एक कहा जाता है। तो इससे इसकी गंभीरता पता चलती है कि समय के साथ में और जलवायु परिवर्तन और दूसरे जो कारण हैं, जो मानव जनित जो कारण है, उसकी वजह से ये इसका खतरा बढ़ते जा रहा है।
0: डॉक्टर साहब, का कारण आप रोग बताए जिन सीधा सीधा पशुधन ले हमर मन के ऊपर आते, लेकिन मानव और पशुधन के गहरा संबंध है, ओला पालन करे बस छोड़ भी नहीं जा सके, ओकर संग रहना भी है, ओकर संग जीवन बिताते हुए अपन खेती किसानी घलो संवारना है। तो अब ये बताते हो अपन हाँ कि सब बीमारी के संगे संग कि वो बीमारी है पशुधन ले मनुष्य में झन आवे या मनुष्य की बीमारी पशुधन में झन जाए, कौन कौन से बात के सावधानी रख के हम पशुपालन करना चाहिए?
1: तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए कि जो पशुपालन के जो अच्छी तकनीक है, जिसको कि हम गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस भी बोलते हैं, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस जिसमें कि आप जैव सुरक्षा का ध्यान रखें, जिसमें पशुओं को, अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो इंसान भी स्वस्थ रहेंगे, तो पशुओं को समय पर टीकाकरण, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जूनोटिक जिनका कि अगर हम टीकाकरण कर दें तो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि पशु में वो रोग नहीं होगा तो इंसान में भी फैलने की संभावना कम हो जाएगी। जैसे कि ब्रुसेल्ला रोग है, ब्रुसेल्ला के लिए जो केंद्र सरकार है वो ब्रुसेल्ला कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, और इसमें राज्य शासन के सहयोग से चलाया जा रहा है, तो निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है इसमें। तो 4 से 8 महीने के बीच की बछिया, उसमें अगर ब्रुसेल्ला का टीकाकरण किया जाए तो ये धीरे धीरे ये ब्रुसेल्ला का उन्मूलन हो सकता है, संभव है। तो टीकाकरण हम करें, साथ में हम कभी भी अगर पशुओं के संपर्क में आते हैं और उसके बाद में फिर जब हम घर में आते हैं तो हम हाथों को अच्छे से धोएं, मतलब एक हाइजीन को बना के रखें हम
0: जी।
1: और बच्चों को भी ये सीख दें कि हाथ को बराबर धोएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो भी हम इन्फेक्शन या कोई भी हम संक्रमण होता है हमको, तो हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और उसकी वजह से होता है। और इसके अलावा हम अगर कोई बीमार पशु है, अगर जैसे उसमें गर्भपात हो गया है, उसको हम सही तरीके से उसका डिस्पोजल करें, उसको सही तरीके से निस्तारण करें, उसके संपर्क में आने की संभावना कम से कम रहे। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको कि हम पालन करके हम उसे हम बच सकते हैं
0: जी। ये तो हम सावधानी बरतबो, और सावधानी बरते के बाद ये सब रोग से हमन बांच सकते हैं जितका आपन बताए हो। लेकिन शासन भी अपन इस समय प्रयास करत है, आपके विभाग प्रयास करते, तो कौन कौन से प्रयास है जरा शासन हक करके हमार जो देश के लोगन है ओला इस बीमारी मन से बचाए के प्रयास करत है?
1: अभी जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि बर्ड फ्लू है, या फिर ये जो अभी मैंने ब्रुसेल्ला का नाम
0: लिया,
1: तो सरकार इसमें ये सर्विलेंस कार्यक्रम चलाती है, जिसमें कि जानवरों का स्क्रीनिंग करके उसमें जो बीमार पशु हैं उनका सीरो सर्विलेंस होता है, उसमें डिजीज का सर्विलेंस किया जाता है, जिससे कि जो बीमार पशु हैं उसको चिन्हित करके उसको हर्ड से अलग किया जाए, ताकि दूसरे और पशुओं को बीमार ना करें वो
0: जी।
1: और इसके अलावा बर्ड फ्लू में जैसे है कि बराबर समय समय पे पोल्ट्री फार्म से सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, और वो सैंपल का स्क्रीनिंग किया जाता है, ताकि अगर कहीं संभावना हो, कहीं अगर वो सैंपल पॉजिटिव मिले तो उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, साथ में कहीं गाँव में कभी भी बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर

0: तुरंत वहाँ पे जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो भ्रमण करती है और वहाँ पे रोग को इलाज करने की कार्रवाई करती है और जो किसान है उनको भी उचित सलाह देते हैं ताकि वो बीमारी से बच सकें।
1: तो डॉक्टर संजीव राय जी, आप हमारे बीच आए, पालतू पशु मन से मनुष्य में हो या बीमारी सावधानी और देखभाल के विषय में आप बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हो, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: संगवारी हो, क्रमाच की सलाह मा जानकारी के विषय ही से कि पालतू पशु मन मिले मनखे मन मा का बीमारी हो सकते और मक्खर खातिर का सावधानी रखन और देख रेख कौन ढंग ले करन, और ये विषय मा जानकारी देवतरीन विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव राय, अतिरिक्त उप संचालन जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर, और इखले गोड़ बात करें निर्मल साहू।
3: दीदी देख, बिहनिया थोरकन जुड़ लागे, बेरा चढ़े त बड़ घाम लागे, ये जेट के महीना है खूब भोमरा ला तपावे, बेरा बेरा में बड़ोरा है बड़ उड़ावे न भाई।
2: देख अभी की बात बोले हस।
3: हाँ, अब अभी के समय ऐसने चलत है, तो यही प्रकार ले सुंधन गाना जे लगावा थे सालिक राम बघेल और साथी मन।
2: हाँ।

0: भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
1: रोशन भाई, अब हमारे संगवारी मल्ला कृषक प्रश्न मंच क्रम में अवैया आज के प्रश्न बता देते हैं।
3: हाँ
1: भाई, ऐसे संगवारी हो कि हमारे कोनो भी क्रम ला अगर आप मन ध्यान से सुनता हो तो झटकुन ओखर जब जिन हमारे आज के प्रश्न रही थे ओखर जवाब लिख के भेज देता हूँ। तो पेन और पेपर लिख के लेके आज के प्रश्न ला लिखो। हमारा आज के प्रश्न है कि रेबीज रोग कौन पालतू जानवर के काटे ले होते। प्रश्न ला एक हम बता देते हैं कि रेबीज रोग कौन पालतू जानवर के काटे ले होते। और सही जवाब पर मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। इसने पांचों हफ्ता पूछे रहे कि औषधीय गुण के धान की प्रमुख रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन से हैं। तो एक सही जवाब है संजीवनी, गठवन और महाराजी। और सही जवाब भेजे है संगवारी मन के नाम बताइए रोशन भाई।
3: संगवारी हो, सही जवाब है संगवारी मन भेजे है लोरमी चचेड़ी लिहे कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, मदनपुर कवर्धा लिहे श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव लिहे बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजाल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू, आर्यनगर कोका भिलाई लिहे उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला अमित जंगेल, शकुन आरुषी, ओसीस ओसिका, आदित्य और अंजनी जंगेल, ग्राम पंचायत बैठेना पाटन जिला दुर्ग लिहे बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, मुरली और नीरा वर्मा, परसा टोला अंबागढ़ चौकी लिहे ओम प्रकाश मसिया, सिलोचुनी मसिया, तुषारणी और खुमेंद्र मसिया।
1: जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई सही जवाब पर। रोशन भाई, हमर कराना हाँ। क्रम हेलो चौपाल ने जुड़े एक सूचना है तेनला संगवारी मल्ला बता देते हैं। संगवारी हो, अवैया शुक्रवार 15 मई 2026 के प्रसारित हुआ हेलो चौपाल कार्यक्रम में इधरी के विषय हुई फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ। आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। और आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484।

0: 8484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 15 मई 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक हुई संगवारी हो और ये कार्यक्रम के प्रसारण वही दिन मने काली संझा बेरा 7:30 में हुई। तो फिर आप मन के फोन कॉल के अवरा रही और सूचना ही चे सिरावत
1: दीदी एक ठकाऊ गीत सुन ले थन जे लगावा थे कृष्ण कुमार पाटिल।

0: अभी सुनत रहें कि जिलगावत रहने कृष्ण कुमार पाटिल मन हैं। किसान वाणी के प्रायोजक रहने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: सोमवारी जाए के पहले बता देवन काली के कार्यक्रम काली संझा बेरा सुनू क्रम हलो चौपाल ए तरीके विषय है फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ। विशेषज्ञ हुई डॉक्टर एस एम अली हुमायूं कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बिहिया हुई 11:30 ले 12 बजे तक तो फोन जरूर लगाऊ अपन मन के समस्या ला जरूर पूछू और गीत संगीत की मधुरता दबा गर्वे कर ही तो देवा विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मोनिका
0: और रोशन के राम राम।

चौपाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आमिर मीनल की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है दीदारे यार।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं

0: पार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

लीजिए अब सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं जनक यादव और साथी।

छत्तीसगढ़ महिमा आप सुन रहे थे जनक यादव, पूनम सारथी और गोवर्धन सिन्हा के स्वरों में। लोक संगीत आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं जनक यादव और साथी। लीजिए अब सुनिए पूनम सारथी के स्वर में देवार गीत।

लोक संगीत आप सुन रहे थे कलाकार थे जनक यादव और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन पहले सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने आज दूसरी जीत के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्च को सिर्फ 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। इससे पहले सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को हराया था। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। दूसरी ओर सात्विक और चिराग ने ब्रायन जेरेमी गुनचिंग और मोहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराया। अब वे जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुंह पुत्रा एरवियन स्या और बगास मौलाना पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओपनिंग राउंड में श्रीकांत ने सिंगापुर के लोहकीन यू को हराया था। देविका ने जापान की एन निदाइरा को, जबकि बंसोड़ ने झांग वेन यू के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु बेहतरीन लय में नजर आ रही है। दो गेम में ही लगातार मुकाबले जीत रही है, और बीच में जो एक गैप सा हो गया था 1.5 साल का, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, गेम से बाहर भी रही थी, अब वही पुरानी पीवी सिंधु जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो हमें दिखाई नजर आ रही है खेलती हुई।
1: देखिए, अभी टूर्नामेंट अभी जो बोल रहे हैं कि अभी कॉम्पिटिशन और मजबूत और टफ होने वाले वाले
0: जी।
1: नेक्स्ट राउंड का मैच जो है क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची के साथ, वो काफी टक्कर का मैच

0: रहेगा, क्योंकि हालांकि सिंधु का पुराना फॉर्म जो आपने बोला दो बार मेडल जीत चुकी हैं, उसका उनका जो लीड है 15-12 का हेड टू हेड लीड है
1: जी,
0: मगर आंकड़े कुछ माने नहीं रखता, क्योंकि देखिए सिंधु का जैसे आपने कहा कि कम बैक फ्रॉम इंजरी, इंजरी से वापसी में ये अकन्या यामागुची अगर थर्ड सेट तक पहुंच गया, थर्ड गेम तक पहुंच गया, ये मैच बहुत टफ होगा। इसी से आपको एक्चुअल टेस्ट सिंधु को कल ही मिलेगा जब वो जापानीज के साथ खेलेंगे।
1: और सात्विक चिराज की भी बात करें तो अच्छा खेल किया, प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं इस टूर्नामेंट पे ऑलरेडी, और किसी भी टूर्नामेंट में जब ये जोड़ी जाती है तो उनसे उम्मीदें रहती ही हैं कि वो जीत के आएंगे।
0: और ये खास करके इस टूर्नामेंट वो टॉप सीड है
1: जी,
0: और देखिए वो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं हम और जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भारतीय की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और देखिए कल क्या होता है, मगर एवरी डे इज ए न्यू डे, और हर एक पेयर जो आता है कभी भी उलट फिर हो सकता है, मगर सात्विक और साची जो हम बोलते हैं साची के ऊपर हमारा काफी उम्मीदें हैं
1: जी, टॉप सीड है। और 2019 और 2024 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। चर्चा करते हैं अब बॉक्सिंग पर। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते, और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 15 गर्ल्स वर्ग ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 33 किलोग्राम वर्ग में अक्षिता ने रजत पदक जीता, 43 किलोग्राम में तन्वी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में यश कुमार और मोहम्मद यासर ने अब्दुल्ला स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का, और अंडर 15 अभी युवा खिलाड़ी हैं, आगे चल के उनको और भी मौके मिलेंगे और ये एक एक्सपोजर जो है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
0: हमेशा देखिए कोई भी जो हमारे सारे बॉक्सर्स जो हैं खास करके जूनियर डिवीजन में भारतवर्ष का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है, और रोहतक में जो हमारा बॉक्सिंग सेंटर है साई का उसमें इनका सारा इनका ट्रेनिंग होता है, ईयर राउंड ट्रेनिंग होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे जो बॉक्सर्स है जो खेलो इंडिया एथलीट भी हैं, खास करके उनको सपोर्ट मिलता है, और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो साई का तालमेल जो है ये देखने को मिलता है। अब अगर रोहतक सेंटर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, खास करके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारतवर्ष में होगा और ये 2036 लॉस एंजलिस 2036 ओलंपिक्स अगर इंडिया में अगर हो पाएगा तो ये हमारी इधर फ्यूचर जेनरेशन ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सब देखिएगा सब लोअर वेट कैटेगरी में है
1: जी,
0: और लोअर वेट कैटेगरी में हमेशा इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर
1: जी। बात कर लेते हैं भारोत्तोलन पर। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू री को मिला, जबकि चीन के जियान चेन ने रजत पदक हासिल किया। अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आज भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया उन्होंने, और गुजरात को जो मेजबानी मिली है उस तरह का प्रदर्शन करके भी खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
0: खास करके ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है गांधीनगर में, ये वेट लिफ्टिंग के ऊपर तो खास नजर सरकार का भी है, मगर ठीक है ये जो आपने जो अजीत का जो ब्रॉन्ज मेडल बोला है इसका प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है ये एशियन गेम्स में बरकरार रख पाते कि नहीं, क्योंकि खास करके आप देखिए अगर चाइनीज और कोरियन की जिसकी आपने जिक्र किया उनका जो वेट डिफरेंस है जब वो गोल्ड जीता वो काफी ज्यादा है, तो कम से कम 20 किलो का डिफरेंस है, 20 किलो वेट लिफ्टिंग में बहुत माने रखते हैं, मगर ठीक है आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि अजीत का जो प्रदर्शन है और भारतवर्ष में 71 किलोज में जो ये इस तरह से ब्रॉन्ज मेडल आया है ये काफी बेहतरीन है।
1: बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। सोएज भारतीय दिग्गज पीआर श्रीजेश की जगह लेंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था। खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं सोएज, और काफी लंबा करियर रहा है, 15 साल उन्होंने फुटबॉल हॉकी

0: खेला है, और 1995 से लेकर 2010 तक। और कोचिंग भी किया उन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में किया है, फिर रियो में किया है, पेरिस में किया, तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लेकर आ रहे हैं।
1: जरूर, आप देखिए हॉकी इंडिया जो भी सिलेक्शन करते हैं, जो कोचेज आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन कोचेज, हमने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज देखे हैं, ये जो ये फ्रेडरिक सोयस है
0: जी,
1: इनके एक्सपीरियंस का तो कोई सवाल ही, कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। हालांकि श्रीजेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 5 टूर्नामेंट में 5-5 मेडल मिला है, जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मिला है, मगर उसको शायद इमोशनली हम सोचे तो शायद श्रीजेश के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं, अरे श्रीजेश क्यों नहीं हुआ। मगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखिएगा तो हमें हमेशा देखिएगा कि जब भी हमारे पास फॉरेन कोचेज आए हैं, हमारी जूनियर टीम हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। और ये जो भी डिसीशंस हॉकी इंडिया लेता है साई के साथ, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा जाता है, खास करके जो 2036 ओलंपिक्स जो हमने बात की है, जैसे बॉक्सिंग में हमने आपको की है, हॉकी में भी सेम रूल और लॉजिक अप्लाई कर रहा है।
0: महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया है कि उन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ को बताया कि 31 जुलाई को नामांकन की तारीख खत्म होने से काफी पहले पद्म पुरस्कार 2027 के लिए भी एक नया प्रस्ताव भेजा गया। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और हेलसिंकी 1952 में, याद आता है हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था।
1: जी, इंडिपेंडेंट इंडिया का दे पहला मेडलिस्ट, इंडिविजुअल मेडलिस्ट दादा साहब खसबा जादेव
0: जी,
1: ये रहे हैं। और शायद एकमात्र जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। तो ये जो ये हमेशा जब भी गवर्नमेंट का अवार्ड आते रहता है, ये चर्चा में रहता है, मगर उनको कभी मिला नहीं। तो इस बार कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि सहायक सरकार इस बार सुन ले, क्योंकि कोई डिजर्विंग, वो तो पॉस्थ्यूमसली उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2000 साल में, मगर इतना देर तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था।
0: बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं कल हुए बारिश बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: रायपुर में कल टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता ने 48 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 19, वहीं फिन एलन ने 18 रन बनाए। अंगकृष्ण ने रिंकू सिंह के साथ 4थे विकेट के लिए 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रघुवंशी ने ताबड़तोड़ 71, वहीं रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोलकाता ने 4 विकेट पर 192 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हुए महज 20 पर 37 रन जुटाए। इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 2रे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और केवल 58 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु ने 5 गेंद शेष रहते 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट का ये खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है।
3: Cricket is absolutely something that I truly love and I just give my heart and soul out there on the field, whether I'm fielding or batting, because it's going to finish one day and I want to make the most of every day that I'm on the field and just enjoy myself and have a lot of fun and look forward to pressure situation, look forward to scenarios where I'm feeling a bit of heat and then I challenge myself to say, you know what, just go for it. And when you cross the line, it makes you a better player. So you build your character slowly and surely when you keep performing under pressure. And for me, even after all these years, and it's still the love for the game. I just love hitting the ball in the middle of the bat and that joy is still there and it's all God's grace and I'm very thankful and grateful.
2: इस मैच के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: 14,000 से ज्यादा रन, 9 आईपीएल सेंचुरीज और लगातार 2008 से जो खिलाड़ी खेलता आ रहा है आज तक वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी इनका प्रदर्शन ऐसा ही था, आज ट्रॉफी है, डिफेंडिंग चैंपियंस है तब भी वैसा ही प्रदर्शन, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में।
1: सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है, वो इतना शब्द यूज किया, कैरेक्टर
0: जी।
1: यहाँ विराट कोहली का कैरेक्टर का परिचय है। जो हम जो इनिंग्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम

0: नहीं बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि विराट कोहली 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाया, 11 चौका मारा, 3 छक्का मारा, हमने ये नहीं बोलता कि वो 8 डबल लिया
1: जी,
0: इनिंग्स को कैसे पेस किया
1: जी।
0: जो वो बहुत ज़रूरी है कि किसी को पकड़ के, एक ओपनिंग बैट्समैन को पकड़ के इनिंग्स को लेके जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ चौका छक्का तो हमको दिखता है, जो सिंगल्स और डबल्स में खेलता है वही खास बड़े प्लेयर के, जैसे कोहली जैसे प्लेयर को, पेडिग्री वाला जो प्लेयर का, इससे का नमूना है। और यही विराट कोहली दिखाया, खास करके लास्ट टू मैचेस में आपको याद होगा 0-0 में आउट हुए थे, उसके बाद यही कैरेक्टर का परिचय है।
1: इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमें अब जुड़ता दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन इंडिया ए के लिए जो श्रीलंका में होना है, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत कर, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया ए की टीम में। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, अंडर 19 विश्व कप हो, अंडर 17 हो, लगातार IPL में भी डोमिनेट करके खेल रहे हैं वैभव।
0: एकदम राइट सिलेक्शन है, और दिस इज द टाइम कि उसको ब्रेक दिया जाए, जितना भी ब्रेक मिलेगा, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, खास करके दो टीम के साथ जो खेलेंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और स्पिनिंग ट्रैक में अगर ये प्रदर्शन रन बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको देखिएगा इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और क्या जितना बोले उतनी ही कमी है, मगर फ्यूचर तो उनका बहुत ही ब्राइट है।
1: तो क्या हम कहें कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो होना है अभी श्रृंखला, उसके लिए वैभव तैयार है टीम में सेलेक्ट होने के लिए?
0: देखिए तैयार तो है, जब तक ना आप उसको एक्सपोज करिएगा वेरियस पिच और वेदर कंडीशंस में, तब तक आपको उसको उसका एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलेगा। मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट एक चीज़ है, रेड बॉल क्रिकेट है। तो टोटल आप, हमने कुछ क्षण पहले ही हमने विराट कोहली का बात किया है, कैरेक्टर तो वहीं से पता चलेगा।
1: और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले

0: चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इनके

0: फ्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि

0: ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today. Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place

0: फ़नकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गज़लें, सूफियाना चीज़ें खूब सीखीं।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, ये रात फिर ना आएगी। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, शब्द रचना SH बिहारी की, संगीत OP नैयर का। लीजिए सुनिए ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे SH बिहारी का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का था और फिल्म का नाम था ये रात फिर ना आएगी। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। संगीत है रोशन का और फिल्म है ताजमहल।

0: सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक लौट आई खुशियां। लेखक श्री महेश शर्मा, निर्देशक हैं श्री सुरेंद्र पाटिल।
1: ओहो, आज गैस भी शुरू नहीं हो रही, चाय कैसे बनाऊं? और एक तो ओहो, ये सिर में माइग्रेन का दर्द, और ऊपर से डॉक्टर भार्गव से अपॉइंटमेंट ले रखी है। ओहो हो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? खोलती हूँ, एक मिनट। आई। अरे मीनू,
2: तू
1: वो भी बिना बताए इतने दिनों के बाद। अरे
2: अरे भाई, वास्तु एक्सपर्ट साहिबा आशु जी, अंदर तो आने दीजिए। शुरू हो गई दरवाजे पर ही, यहीं से निपटा दोगी क्या?
1: नहीं नहीं, आओ आओ, अंदर आओ। अपनों को अंदर आने के लिए बोलना पड़ता है क्या पगली? आओ किचन में चलते हैं। चाय बना रही थी लेकिन न जाने क्यों लाइटर जल ही नहीं रहा।
2: चाय बना रही थी अभी 10 बजे? लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
1: हाँ मीनू, ये माइग्रेन का दर्द बिना पीछा ही नहीं छोड़ रहा, लगता है नासूर बन गया है। बिस्तर से तो अभी अभी उठी हूँ।
2: ओह, हिम्मत से काम लो डियर आशु, जिंदगी बहुत लंबी है और फिर इस दर्द का कारण भी तुम जानती हो, खुद ही तो जिद पाले बैठी हो।
1: ओहो, अब जाने भी तो पुरानी बातें, क्या किया जा सकता है। भाग्य में शायद ये ही लिखा था, अकेलापन और दर्द से छटपटाना। और अब तो आदत पड़ गई है।
2: सुनो, हर बात के लिए ना भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। तुम खुद एक वास्तु एक्सपर्ट हो, देखो एक छोटी सी गलतफहमी की कितनी बड़ी सजा भुगत रही हो। अपने क्लाइंट्स का तो दुख दर्द दूर करती हो और अपने लिए कोई इलाज नहीं, क्या फायदा ऐसे ज्ञान का। और फिर मैंने खुद बताया था कि वो घटना तुम्हारी गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं। कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ होता है।
1: ओहो, अब बस भी करो मीनू, मैं अतीत के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। क्या से क्या हो गया।
2: सुनो, अतीत के बारे में नहीं सोचने से समस्या हल नहीं हो जाती। बिल्ली अगर खतरे को देखकर आंखें बंद कर ले तो खतरा टल नहीं जाता। आशु जरा कल्पना करो, क्या तुम्हारी ये हालत देखकर मम्मी डैडी की आत्मा को कष्ट नहीं होता होगा? गजब हो तुम भी। कितने सुहाने थे वो दिन, पूरे 8 साल हो गए लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। काश काश वो हादसा ना हुआ होता।

0: क्या बात है मैडम, आज बहुत ही खुश लग रही हो। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है।
1: जैसे मैं लगती ही नहीं खुश, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। पेशेंट से आपको फुर्सत मिले तो घर के बारे में सोचोगे ना आप।
0: अरे भाई, मैं चाय की तारीफ कर रहा था और मैडम शुरू हो गई शिकायतें लेकर।
1: तभी तो कह रही थी, आज चाय मैंने नहीं बनाई जनाब, आशू ने बनाई है। और आज बर्थडे है उसका, याद है ना? कह रही थी ब्रेकफास्ट पर पापा को मैं सरप्राइज दूंगी। पापा को तो कुछ याद ही नहीं रहता।
0: सची तो कह रही थी वो। पेशेंट्स इतने होते हैं कि घर की बातों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। आशु बिटिया को अब सॉरी बोलना ही पड़ेगा।
1: सॉरी बोलना पड़ेगा? तुम्हारी सॉरी से कोई काम चलेगा? पर हमारी आशु बहुत समझदार है, वो बुरा नहीं मानेगी यदि आप भूल भी गए तो। लेकिन ये बताइए हुजूर कि आप कब समझदार बनेंगे?
0: मतलब
1: ये डॉक्टर साहब कि कभी आपने सोचा कि आशु की उम्र कितनी हो गई है? पूरे 21 साल की हो गई है वो इस साल। क्या जीवन भर यूं ही रहेगी?

0: फाइनल ईयर में पढ़ रही है जनाब, कुछ ही दिनों में उसके एग्जाम है, फिर उसके सेटल हो जाने के बाद शादी ब्याह की भी चिंता करनी।
1: ओ अच्छा हुआ जो यह बात तुमने निकाल दी। प्रोफेशन की आपाधापी में मैं तो लगभग भूल ही गया था कि हम एक बच्ची के माँ बाप भी हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: देखो ना, बेटियों को बड़ा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं तो आशु को अब तक अपनी नन्ही मुन्नी गुड़िया ही समझ रहा था, और वो
0: सब पिता होते हैं ना, उनको ऐसे ही लगता है। इतना सेंटिमेंटल मत होइए, हमें ना अब प्रैक्टिकली अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वैसे एक बात आपको बता दूं, पढ़ी लिखी बेटियां माँ को अपनी सच्ची सहेली समझती हैं, और आशु ने भी मुझे एक इशारा दे दिया है।
1: अच्छा, क्या इशारा किया उसने? कोई पसंद आ गया है क्या हमारी राजकुमारी को? कौन है वो भाग्यवान?
0: बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हालांकि संकोच के कारण उसने खुलकर तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आशु के हाव भाव, उसके चेहरे की रंगत और मयूर की तारीफ करने का अंदाज ऐसा था कि सब कुछ बयां कर दिया।
1: अच्छा, तो मयूर नाम है साहब का। बड़ा ही प्यारा नाम है भाई। और फिर जिस इंसान को हमारी बिटिया रानी ने पसंद किया है, वो भी तो बहुत ही प्यारा होगा। बाय द वे, क्या बताया उसने मयूर के बारे में? कहाँ के हैं? उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, वगैरह वगैरह?
0: आशु ने बताया कि मयूर के मम्मी डैडी एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए और अब इस दुनिया में नहीं है, यानी मयूर को माता पिताजी नहीं है।
1: ओह, वेरी सैड। और कौन कौन है उनके घर में?
0: मेरे अनुसार तो वो फैमिली में इकलौता बेटा ही है। एक्सीडेंट में पेरेंट्स की डेथ के बाद थोड़ा सा नर्वस हो गया था, फिर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया उसने। और ओरिजिनली वो भरतपुर के हैं, वहीं के रहने वाले हैं। पढ़ाई के लिए मयूर यहाँ किराए से रूम लेकर रहता है। आशु बता रही थी स्टडीज में टॉपर है, उसके कॉलेज के पास ही एक दूसरे कॉलेज में वो MBBS कर रहा है।
1: हमारी तो इच्छा थी कि आशु भी हमारे समान डॉक्टर बने, लेकिन न जाने क्या था उसके मन में।
0: बहरहाल हमें अब ये सोचना है कि दोनों का फाइनल ईयर चल रहा है, वो अपने घर के पास ही रहता है, दोनों कॉलेज के लिए साथ ही निकलते हैं।
1: ओ, ये तो अच्छी बात है। लगता है दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है।
0: वही तो मैं बता रही थी।
1: मैं आशु को अच्छे से जानता हूं। हमारी बिटिया किसी ऐरे गैरे को अपने पास फटकने भी नहीं देती। ऐसा करो, तुम आशु से बात करो, हम उन दोनों का परिणाम आने के बाद चट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे।
2: हाय मॉम एंड डैड, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आओ, तुम्हारी ही बात चल रही थी।
2: मेरी बात? कौन सी बात चल रही थी?
1: हैप्पी बर्थडे माय डियर डॉल।
2: थैंक यू सो मच डैड। अब आप बताइए ना।
1: हाँ, बात यह है कि हम दोनों आपके बारे में सोच रहे थे कि
2: क्या?
1: तुम्हें कब और कैसे इस घर से भगाया जाए।
2: मैंने क्या गलती की है?
0: तुमने ना आशु, तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है, और जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल कतई माफ नहीं किया जा सकता।
2: ओ ममा प्लीज, वो गलती भी बता दीजिए।
1: वो गलती ये है मेरी बच्ची कि तुम अब बड़ी हो गई हो, सयानी हो गई हो। संसार की रीति के अनुसार अब तुम्हें यह घर छोड़कर अपना नया घर बसाना होगा।
0: और हम दोनों इस सजा में तुम्हें पढ़ाई पूरी होने और तुम्हारा रिजल्ट जब आएगा ना, उसके आने के बाद की ही मोहलत दे सकते हैं, समझी?
2: ओ मम्मा, तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
0: जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही मेरी बन्नो।
1: तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बिटिया रानी। हर लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और फिर हम कौन से तुम्हारे बिना खुश रहेंगे? हर माँ बाप को

0: लड़की की विदाई का दुख सहना ही पड़ता है बेटा, न चाहते हुए भी।
1: अच्छा छोड़िए इन बातों को, अब ये बताओ कि हमारी गुड़िया को कोई पसंद आया है क्या? सच्ची सच्ची बताना।
0: हाँ बेटा, कोई है अच्छा सा लड़का जो हमारी बिटिया रानी को जीवन भर खुश रख सके
1: और जिसके साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार सको।
2: ओ मम्मा, क्या मॉम डैड, आप लोग भी।
0: बेटा हम लोग पूरी तरह से इस मामले में गंभीर हैं। अब वो दिन नहीं रहे कि पेरेंट्स अपनी मर्जी थोप दे।
1: सवाल जिंदगी भर का है ना।
0: साथ ही सवाल जिंदगी भर का है, हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। साथ ही बेटी की पसंद नापसंद इसका भी ध्यान रखना है।
1: ये तो लालच के मारे कुछ बताने से रही, देखिए ना कैसी शर्मा रही है। मैं ही खुलकर बोलती हूँ। बेटी आज सुबह तुम अपने किसी परिचित के बारे में मुझे बता रही थी ना?
2: हाँ मॉम, वो मयूर घर के ही पास रहता है।
1: अच्छा।
2: और हम दोनों का कॉलेज भले ही अलग अलग है लेकिन टाइम एक ही होने के कारण हम साथ साथ जाते हैं। लेकिन
0: क्या बेटी?
2: वो उससे शादी, मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा डैड।
1: कभी नहीं सोचा तो अब सोच लो आशुरानी। हो सकता है कि वो चुपके से तुम्हारे दिल के किसी कोने में आकर रहने लगा हो।
2: ओ ओ मॉम, आप भी ना।
0: तो ये बात है। अच्छा कभी घर पर बुलाओ ना मयूर को, हम भी तो मिल लें।
2: मैंने आज ही मयूर और अपनी सहेली मीनू को बुलाया है आप लोगों के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, आते ही होंगे दोनों। अरे लगता है वो आ गए। एक मिनट मॉम डैड, मैं उन्हें रिसीव करके आती हूँ।
0: भाई मान गए केतकी, तुम्हारी इस पैनी नजर को बातों बातों में परफेक्ट अंदाजा लगा लिया। उसका शर्माना रूठना वगैरह देखकर मुझे भी यकीन हो गया कि आशु को वो लड़का पसंद है। अब देखते हैं कैसा है।
2: मॉम डैड भी आप लोगों का इंतजार कर रहे। मॉम डैड, ये है मिस्टर मयूर।
1: अच्छा।
2: पास ही रहते हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मीनू को तो आप जानते ही है।
1: हाँ बिल्कुल।
3: नमस्ते अंकल जी, आंटी जी।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ बैठो।
4: गुड मॉर्निंग अंकल आंटी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग मीनू बेटी। और तुम इधर आओ मेरे पास बैठो।
2: और मुझसे बैठने के लिए कौन कहेगा, कहाँ बैठू मैं?
0: अब यहाँ एक ही तो चेयर खाली बची है, मयूर के पास वाली, वहीं पे बैठ जाओ।
2: ओ डैड, मैं तो भूल ही गई, चाय और ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। आप चाय लेंगे या कॉफी?
3: जो इजी लगे।
2: ओके अभी बनाकर लाती हूँ।
0: हाँ तो बेटा मयूर, पता चला कि आप MBBS फाइनल में हैं, आगे क्या करने का इरादा है?
3: फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है अंकल जी, लेकिन आप लोग भी इस शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, प्लीज गाइड मिया, आगे किस बीमारी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए आप ही बताइए।
1: इट विल बी फंटास्टिक। लेकिन एक बात सुन लो बेटा, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहती है ना?
3: हाँ
1: माय बॉय, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय पर निपटा देने चाहिए, सही कह रहे हो ना?
3: मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी।
0: कहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों से सीधी सीधी बात करनी चाहिए। मैं शादी के बारे में पूछ रहा था, टाइम पर अगर नहीं की तो आगे चलकर पछताना पड़े।
1: हाँ बेटा, हायर एजुकेशन तो शादी के बाद भी कंटिन्यू किया जा सकता है ना?
3: इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। दरअसल मम्मी डैडी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद से ही मैं नर्वस सा हो गया हूँ, अकेलापन महसूस होता है, घर में और कोई नहीं है।
1: इतना मायूस मत हो मयूर बेटे, आज के बाद तुम खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। हम दोनों हैं, मैं और आशु के पापा, और फिर मीनू और आशु भी है ना, तुम्हारे मम्मी डैडी के बारे

0: में आशु ने ही बताया था। सुनकर बहुत दुख तो हुआ, लेकिन कुछ हादसों को ईश्वर की मर्जी पर भुला देने में ही भलाई होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है मीनू बिटिया?
1: आपका कहना बिल्कुल सही है आंटी जी, लाइफ पर घुट घुट कर जीने में कोई समझदारी नहीं है।
2: बेटे मयूर
3: जी,
2: हमें जीवन एक ही बार मिलता है, इसे मुकम्मल तौर पर जीना जरूरी है। अब एक बात सोचो, आशु ने हमें तुम्हारे बारे में इतना क्यों बताया जबकि उसका नेचर ऐसा नहीं है?
0: सीधी सी बात है बेटा कि उसके मन में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती है और मैं उसकी माँ होने की वजह से समझ सकती हूँ।
2: अब मैं डायरेक्ट एक बात पूछ रहा हूँ बेटा, बिना किसी झिझक के उत्तर देना, हमारी आशु को लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगे?
3: ये क्या कह रहे हैं आप?
0: वही कह रहे हैं बेटा जो तुमने सुना, एवरीवन शुड बी ब्रॉड माइंडेड। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ना मयूर, संस्कार अपनी जगह हैं, उन्हें हम उतनी तवज्जो देते हैं और उसके साथ ही स्पष्ट बोलना और सुनना अपनी जगह अलग बात है, ताकि आगे चलकर किसी को कोई तकलीफ, कोई मुसीबत या किसी को कोई रंज ना हो।
1: यस मयूर, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम बहुत लकी हो, एक साथ ढेर सारा प्यार मिल रहा है।
3: मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड आएगा। मीनू, तुमने सच बोला है, मैं बहुत लकी हूं, मैंने तो खुद को मनहूस ही मान लिया था।
0: ऐसा नहीं बोलते मयूर, मनहूस शब्द बिल्कुल नहीं, डोंट बी पेसिमिस्टिक, कभी ना निराशावादी नहीं होना चाहिए मयूर।
3: आंटी जी वो सब तो ठीक है, मेरी तो लाइफ ही महक उठेगी, लेकिन एक बार आशु जी से भी तो पूछ लीजिए।
0: अरे मयूर, उसने इशारों ही इशारों में हाँ कर दी है, तभी तो हम इतना फ्रैंकली बात कर रहे हैं तुमसे, अब तुम्हारी भी लगभग हाँ ही है ना।
4: लीजिए सब लोग गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए।
2: अरे वाह, नाश्ता? नाश्ते के साथ मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई हो क्या बेटा?
4: वो किस खुशी में डैड?
2: अब तुम ही बता दो अपनी भोली वाली बच्ची को केत की।
0: वो इस खुशी में मेरी जान कि तुम्हारे डैड और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। तुम्हारे लिए हमने जेलर ढूंढ लिया है।
4: क्या?
2: तुम्हें हमेशा के लिए हथकड़ी लगाने वाला जेलर हमें मिल गया है, और वो है मयूर बेटा। जोरदार तालियां।
4: ओह डैड।
2: और अब सबकी भलाई इसमें है कि चुपचाप टेस्टी ब्रेकफास्ट का मजा लिया जाए और फिर मैं तुम्हारी मॉम दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही,
4: अभी कल ही तो गए थे आप लोग शॉपिंग करने।
2: अरे भाई अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम्हें विदा करने की तैयारियाँ अभी से शुरू करनी है ना, ठीक है ना कैद की?
0: जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप।
3: अब मैं भी लगभग आधे घंटे के लिए मार्केट जा रहा हूँ, कुछ खरीदारी करनी है।
0: अरे वाह, तुम्हें भी खरीदारी करनी है
3: जी?
0: ओके बेटा ओके, ठीक है। वैसे भी कुछ अरसे के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारी आशु लेने वाली है। ओके ऑल, तुम एंजॉय करो, कुछ ही देर में मयूर भी लौट आएगा, है ना आशु? और तुम और मीनू बैठकर बात करो, बस हम यूं गए और यूं आए।

0: और फिर कभी वे लौट कर नहीं आए। लौटी तो उन दोनों की भयानक एक्सीडेंट की मनहूस खबर। एक ही झटके में जैसे सब कुछ बिखर गया। कितना अजीब इत्तेफाक, दोनों के पेरेंट्स का एक्सीडेंट।
1: अब बस भी करो मीनू, मैं उस दर्द को याद भी नहीं करना चाहती।
0: वर्तमान में जीने के लिए कभी कभी अतीत को याद करना पड़ता है आशु, ताकि
1: नहीं नहीं मीनू, मैं सुन भी नहीं सकती। प्लीज

0: नहीं करो।
1: नहीं आशु, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे बोलने दो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। अरे पगली, याद करो वो मयूरी था
0: मीनू,
1: जिसने अंकल आंटी जी के एक्सीडेंट के बाद ना सिर्फ तुम्हें मेंटल सपोर्ट दिया, बल्कि एक अच्छे बेटे की तरह उनके अंतिम संस्कार का एक एक अनुष्ठान पूरा करवाया। वो मयूर ही था जिसने एक्सीडेंट करने वाले एक्यूज को पकड़वाने के लिए पुलिस की नाक में दम कर दिया था। वही शख्स एक छोटी सी भूल के कारण तुम्हारे लिए बेगाना हो गया, जबकि उसकी वो भूल भी नहीं थी। लगता है आज तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त आ गया है आशु।
0: मीनू, अब बताने को रह ही क्या गया है। मेरे नसीब में तन्हाई लिखी थी, जिसे भुगत रही हूं। बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, शायद तुम्हें मालूम भी नहीं, मेरा माइग्रेन अब खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है। किसी भी समय जान जा सकती है, इतना दर्द होता है। इसीलिए मैंने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लता भार्गव से आज अपॉइंटमेंट ले रखा है।
1: जानती हूं आशु, और तभी आई हूं।
0: क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता मीनू?
1: सुनो, बहुत बोल चुकी तुम, अब मेरी बात सुनो, सब जान जाओगी।
0: बोलो।
1: वे दिन बड़े हंसी खुशी में बीत रहे थे, मयूर और तुम दोनों अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को करीब करीब उस एक्सीडेंट से उबर रहे थे, संभल रहे थे तुम लोग।
0: हाँ,
1: लेकिन वो काला दिन आ गया। तुम एक दिन अचानक मयूर के घर पहुंची। वहां वो खूबसूरत सी लड़की वही खूबसूरत सी लड़की जिसे देखकर तुम अपना आपा खो बैठी, और तुम उसे बेवफा कहते हुए वहां से भाग निकली, उसे जी भर कर कोसा और मयूर से कभी ना बात करने की कसम खा ली। वो बेचारा तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाया और तुमने कुछ सुनना भी नहीं चाहा। लेकिन डियर आशु सुनो, तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और अपनी ही नहीं मयूर की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है।
0: नहीं मीनू,
1: वो बेचारा तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने शहर लौट गया।
0: क्या,
1: जानती हो कौन थी वो लड़की?
0: नहीं मीनू, नहीं, कौन थी?
1: अरे यार, वो मयूर की कजन थी यार, सगे चाचा की बेटी।
0: लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं?
1: तुमने उसको मौका कब दिया? हाँ, उन दिनों उसके चचेरी बहन मयूर की शादी की बात करने आई थी।
0: लेकिन ये सब तुमने कैसे जाना?
1: चलो आज बताती हूँ, सुनो। संयोग से मेरी शादी मयूर के ही शहर भरतपुर में हो गई। मैं तो इसे भगवान की मर्जी ही समझूंगी कि वही मेरी मुलाकात मयूर से हो गई। उसने गरीबों की सेवा के लिए एक क्लिनिक खोल लिया है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है।
0: हे भगवान, ये क्या हो गया? अनजाने में ही मुझसे बड़ा पाप हो गया।
1: भगवान को तो मानती हो ना तुम?
0: क्यों? हाँ मीनू।
1: तो मेरी बात पर यकीन करो कि भगवान है तो वे प्रायश्चित का भी अवसर देते हैं।
0: लेकिन अब क्या हो सकता है? मैं कुछ भी नहीं, 11:30 बजने वाली है, मेरा डॉक्टर भार्गव से अपॉइंटमेंट है। चलो
1: एक काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी डॉक्टर भार्गव से मिलना है।
0: तुम्हें भी? क्यों?
1: चलो तो वहीं चलकर बताऊंगी प्यारी सखी।

0: नमस्ते डॉक्टर साहिबा।
1: अरे मीनू, नमस्ते नमस्ते, आओ आओ। अच्छा, तो आशु को भी साथ लाई हो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते आशु, लगता है अब मेरी कोई जरूरत नहीं कहानी का क्लास।

0: क्लाइमैक्स सीन आ पहुंचा है।
1: क्लाइमैक्स सीन? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर।
0: अरे मीनू, तुमने कुछ बताया नहीं आशु को?
2: नहीं डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए।
0: ओके, हाँ, तो इस फिल्म की हीरोइन महोदया आशु जी, आपके माइग्रेन का इलाज बिना किसी दवा के मीनू ने खोज लिया है। मीनू माइग्रेन के ही एक और पेशेंट को अपने साथ लेकर आई है। अब मेरा कोई रोल नहीं है, उस पेशेंट से आपको अपना माइग्रेन सिर्फ एक्सचेंज करना है।

0: नू माइग्रेन के ही एक और पेशेंट को अपने साथ लेकर आई है। अब मेरा कोई रोल नहीं है, उस पेशेंट से आपको अपना माइग्रेन सिर्फ एक्सचेंज करना है।
1: मैं अब भी कुछ नहीं समझी डॉक्टर, प्लीज पहेलियां मत बुझाइए।
0: मीनू, मयूर को इस रूम में बुलाओ।
1: मयूर? मयूर और यहाँ?
2: मयूर यहाँ आइए, इस रूम में। देखिए तो कौन आया है मिलने।
3: अरे आप?
0: भाई दोनों शुक्रिया अदा करो मीनू का, जिसने हीरो हीरोइन की जोड़ी को फिर से मिला दिया।
2: जी हाँ।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप दोनों के लिए, आशु कभी कभी आंखों देखी बातें भी गलत साबित होती हैं। और हाँ हीरो साहब, आपको मेरी एक प्यारी सी सलाह, जिंदगी में इतने शरीफ भी मत बनिए कि कोई लड़की अगर आपका एक कान खींचे तो चुपचाप दूसरा भी आगे बढ़ा दिया जाए। अरे भाई प्यार में सीधा संवाद यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कोई चीज होती है या नहीं, वरना दोनों को जिंदगी भर रोना पड़ता है। याद रखना, हर एक की लाइफ में मीनू जैसी फ्रेंड नहीं होती। आप दोनों खुश नसीब हैं। अब मुंह क्या देख रहे हो, तो जल्दी से तगड़ी पार्टी का इंतजाम करो।
2: यस।
4: लौट आई खुशियां, ये नाटक आप सुन रहे थे। लेखक थे श्री महेश शर्मा, निर्देशक थे श्री सुरेंद्र पाटिल, प्रतिभागी कलाकार थे सर्वश्री श्रद्धा भारद्वाज, नैना दोसेवान, अर्चना सिंह, विनोद पुरोहित, निहास लोखंडे और मोनाली शेंडे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया 3 ताल में पेशकार कायदा रेला परन टुकड़े आदि। हारमोनियम लहरा संगति विजय कुमार कुर्म की हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सत्यरंजन गंगेले का तबले पर बजाया तीन ताल। हारमोनियम लहरा संगति विजय कुमार कुर्म की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में इंदीवर का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है समझौता। सुनना चाहते हैं हरदेव लालपारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें। हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी

0: होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
1: अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना है इंदीवर की, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है आखिर क्यों। पसंदगी आप सबकी है। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मर्रा कोना भाटापारा से लक्ष्मी नारायण यदु, वैभव यदु। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव। यहीं से कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव।
2: दुष्ट

अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म है शबनम। सुनना चाहते हैं बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कांबड़े।

0: लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाज़ों में शैली शैलेंद्र का लिखा गीत, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म है आपकी खातिर। सुनना चाहते हैं दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, यहीं से काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, वंदना नगर, इंदौर से गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे।
1: प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है जाने मन। सुनना चाहते हैं पहरा अहिवारा से पोषण बंछूर, चंद्र किरण प्रीति छाया बंछूर, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी, सुषमा सारथी, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर, बाजारपारा बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल, डोंडी लोहारा बालू से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, बनबघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी और उनके साथी।

0: अनुरोध गीत कार्यक्रम का आज का सफर यहीं तक। अब इस सफर से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त रेणुका काले को। अनुरोध गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक

0: एक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion